हर नाम तेरा लोक महला दूजा एक नियास की दूजे लगे जाए नानका संकांडी है सदी रे समय चंगे चंगा कर मने मंदे मंदा हो आस क्यों आखिए जे लिखे वरते सोए महला दूजा सलाम जवाब दो में करे मुंडे हो कुछा जाए नानक दोए पूरियां थाए।

दूजा एक नहीं दात आप दे जो पाई है नानक साकरमात साहिब दुठे जो मिले महला दूजा एक नहीं चाकरी जित पाओ खसम न जाए नानक सेवक का दिया जैसे ती कसम समय पड़े।

0: न जपनी हर पाखे परवार आकरे शक्ति फिर आकरे मार एक नीतार आप क्रह करे आप हो गए सुतरे पुकार नानक करना जिंदगिया ही करनी सार
1: हम पीखक पिकारी तेरे हम पीखक पिकारी तेरे तू निज पात है नाता तू निज पात

ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਨੰਦਾਲ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਰੰਗ ਰਤ ਕਰ ਕਿਰਪਾ।

0: ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੀਡੀਅਮ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, ਡੀਆਰਐਮ 864 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, ਐਫਐਮ ਬੈਂਡ 100.8 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ, ਐਫਐਮ ਬੈਂਡ 100.9 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ, ਐਫਐਮ ਬੈਂਡ 103.6 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਡੀਡੀਐਚ ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਏ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲ ਬਾਅਦ ਸੁਣੋਗੇ
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और उन्हें लागू करने के महत्व पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ मिला है।
2: The topic for the Governing Council meeting,
3: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
2: टू वर्किंग लाइफ टू ओल्ड एज।
1: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। यह समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि यह निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में चल रहे संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टुनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसीबेहे के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए ये चिंता व्यक्त की। डॉ जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति की अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने तेजी से अस्थिर होती दुनिया में जोखिम कम करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने, अधिक मजबूती और अतिरिक्त क्षमता विकसित करने के महत्व का भी उल्लेख किया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सट्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज किया। सरकार ने कहा है कि वह खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत परिवहन महानिदेशालय ने संघर्ष प्रभावित जल क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत

0: करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित एआई सलाहकार सेवा की शुरुआत की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुआई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे उनके मोबाइल फोन पर दी जाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड 103.6 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। हुण तुसी सुनोगे आराधना।

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस नमस्कार 870 किलोवाट से गुजरे तय खास समय तमा आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज ऑन योर मोबाइल ऐप एंड डिफरेंट डिस्टर्बेंस का प्रोग्राम शुरू थी चुका है। डिटेल्स कुछ नजर आए थोड़ी देर में तमा हमेशा बात कराम साहब जन जे मिठड़े आवाज में कलाम बुधना तय खा पोई तफसरों पोई प्रोग्राम नशर कयो वेंदो सजन तोखे खबर कड़ी खास खास खबरों प्रोग्राम जे आखिर में नशर कयो वेंदियो असाजे प्रोग्राम की तफसील तमा आकाशवाणी की सिंधी सर्विस उधर हिंसर अचो तो भगत कौराम साहब के बुदूँ।

रोहित करम साहब जिन जी सदाबहार आवाज में कलाम दे रहे हैं आकाशवाणी जी सिंधी सरसा हींअर पेश आहे तबसरो। नई दिल्ली में 10 जून 2026 ते नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए जी की गॾजाणी कोठाई वही तंहिं में एनडीए सरकार जे 12 साल पूरो करण जे जलसे खे मल्हायो। इन सां गॾोगॾु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जे लगातार लंबे अरसे ताईं चूंडियल भारतीय प्रधानमंत्री जो जलसो पिण मल्हायो वियो। 10 जून 2026 ते प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लगातार चूंडियल वज़ीर आज़म तौरु 4,399 ॾींहं पूरा कया। हिन मीटिंग में एनडीए जे सभिनी भाईवार पार्टियुनि हिसो वरितो। तंहिंखां अलावा भारतीय जनता पार्टी ऐं एनडीए मेंबरनि जे सूबनि ऐं मर्कज़ी इलाइक़नि जे वॾनि वज़ीरनि ऐं नायब वॾनि वज़ीरनि हिसो वरितो। इन मौके ते नई दिल्ली में भारत मंडपम में प्रधानमंत्री श्री मोदी पारां 12 साल हुकूमत में पूरा करण जे लाइ 4,399 ॾींहं ऑफिस में पूरा करण जे लाइ एनडीए 11 सुफ़नि जे अभिनंदन प्रस्ताव खे अख़्तियार कयो। प्रस्ताव खे आंध्र प्रदेश जे वॾे वज़ीर एन चंद्रबाबू नायडू पेश कयो ऐं हिनखे हिमायत ॾिनी नागालैंड जे वॾे वज़ीर नेफ्यू रियो। इन रेज़ोल्यूशन में सरकार जे हासिलातुनि खे रोशनी में आंदो वियो आहे त कीअं 5 करोड़ भारतवासियुनि खे ॿहुनि तरफ़ी गुरबत मां ॿाहिरि आंदो वियो आहे। तंहिं में नौजवाननि जे वाधारे लखपति दीदी कैंपेनिंग ऐं औरतुनि पारां लेजिस्लेशन खे पिण रोशनी में आंदो वियो। एनडीए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जे ॾाकनि खां बकाया पियल अदावती सुधारनि खे रोशनी में आंदो त कीअं न गुड्स एंड सर्विस टैक्स आंदी हुई। इन खां अलावा जदीद पुरज जा क़ाइदा ऐं आर्टिकल 370 खे ख़ारिज कयो वियो। एनडीए रोशनी में आंदो त दहशत अंगेज़ी लाइ सब्र बिल्कुलु बुड़ी रखियो वियो आहे। तंहिं में सर्जिकल स्ट्राइक्स पिण शुमार आहिनि। श्री मोदी चयो त अॼु पूरो आलम ॾिसी रहियो आहे भारत जी ताक़त ऑपरेशन सिंदूर ज़रिए। इन सां भारत जी आलमी समत ते इज़त वधी वई आहे ऐं सरकार 2047 ताईं विकसित भारत यानी कि तरक़ी याफ़्ता भारत जे वाइदे ते कॉलबद्ध आहे। वरी खे ख़िताब कंदे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इन रेज़ोल्यूशन खे एनडीए पार्टीज़ जे लगातार कोशिशुनि खे डेडिकेट कयो। श्री मोदी जाचियो त 4,399 ॾींहं लगातार हिकु चूंडियल वज़ीर आज़म तौरु कमु करण संदसि लाइ वॾी इज़त जी ॻाल्हि आहे। हुन चयो त मुल्क कंहिं बि सियासी पार्टी खां मथे आहे ऐं जॾहिं असां गॾिजी करे नेशन फर्स्ट जे उत्साह में कमु कंदा आहियूं त को बि कमु ॾुखियो न हूंदो आहे। हुन चयो त अॼु जे जदीद दौर ऐं 2014 में ज़मीन आसमान जो फ़र्क़ु आहे। हुन दौर में माण्हू वीचारा पंहिंजे सिस्टम डिलीवरीज़ लाइ इंतज़ारु कंदा पर अॼु खे तुर्त डिलीवरी मिली रही आहे। सभिनि कम जल्द थी रहिया आहिनि। प्रधानमंत्री ॿुधायो त एनडीए हुकूमत तहत 2014 में भारत में हवाई अॾा 74 जेके अॼु वधी करे 67 खां वधी आहिनि। शाहराहूं जिन जो मक़दार 1,000 किलोमीटर से वधी करे 6,700 किलोमीटर थी वियो आहे। बचाव औज़ारनि जी रवानगी 700 करोड़ मां वधी करे 23,000 करोड़ रुपया थी वई आहे। एनडीए सरकार जे पॉलिसियुनि 5 करोड़ माण्हुनि खे तमामु ई घणी गुरबत मां ॿाहिरि कढियो आहे। अॼु भारत डिजिटल ट्रांज़ेक्शन में आलमी सरबराह आहे। हुन चयो त 2014 में भारत पंहिंजे मोबाइल फोन्स जी आमद कंदो। अॼु भारत 330 मिलियन मोबाइल फोन्स ॾींहं तौर पैदा करे रहियो आहे। 2014 में असांजी शमसी बिजली जी कोत महज़ 2.5 गीगावाट ई जेका अॼु 150 गीगावाट खां बि वधीक वई आहे। 2014 में असांजी इथेनॉल ब्लेंडिंग महज़ 1.5% जेका अॼु वधी करे 20% खे पार करे वई आहे। हुन दौर में मुल्क खे को बि सेमी कंडक्टर कंपनी कोन्हे। अॼु 10 खां बि वधीक सेमी कंडक्टर्स अॾावत तहत आहिनि जंहिं सां भारत मोनिटरीडा वधी रहियो आहे। वैसे त हाणे मुल्क 500 गीगावाट वरी खां ख़तमु ईंदड़ तवानाई ॾांहुं वधी रहियो आहे। हुन शमसी तवानाई ते त कमु हूंदी रहियो पर इन खां अलावा असीं पंहिंजे न्यूक्लियर एनर्जी मक़सदनि ते पिण कमु करे रहिया आहियूं। पूरे आलम ॾिठो आहे त भारत कीअं न फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर्स टेक्नोलॉजी में अॻिते वधी रहियो आहे। हिन टेक्नोलॉजी सां असीं न्यूक्लियर तवानाई में पाण ते भाड़ींदड़ साबित थींदासीं।
અથવા ગ્રીન હાઇડ્રોજન એન્ડ ગ્રીન અમોનિયા પણ અત્યારે વધી રહ્યા. એમસ્કરમાં એ ટેકનોલોજીસ ભારત ખે આર્મી ગ્રીન એનર્જી મેપ ને આણ્યો. નજર તો ઓની પરે કાને આય જેને ભારતીય શહેરી મેડ ઇન ઇન્ડિયા શહેરી હવાઈ જહાજ મેં સફર કંદા. પ્રધાનમંત્રી ચો તો સરકાર વિચોલે તબકે જે અભિલાષણ એ જદોજહદ ના ધ્યાન દઈ રહી આહે તે કરે અસા ઇન્કમ ટેક્સ કે 12 લાખ તાઈ ટેક્સ ફ્રી કરી રખ્યા આહે. મુલ્ક મેં ટેક્સ જા કાનૂન સવલા આંદા બી આહિન. અને ખાન અલાવા ગુજરાત 12 સાલન દૌરાન મિડલ ક્લાસ યાની કે વિચોલે તબકે જે ॿारनि जे लाइ घणाई मज़ा आंदा विया आहिनि. सरकार विचोले तबके जे लाइ घर ख़रीद करण जे सपने खे पिण सवलो करे रही आहे. इन खां अलावा सरकार आयुष्मान भारत रेथा ऐं जीएसटी में सुधार आंदा आहिनि. तव्हां तबसरो ॿुधी रहिया हुआ.

0: हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्ज़ ते। तंहिंखां अलावा तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो।
1: पेश आहे प्रोग्राम सभिनि तोखे ख़बर कहिड़ी।

सभिनि तोखे ख़बर कहिड़ी सभिनी प्रोग्राम खणी करे अवां जी क़िस्मत में हिकु दफ़ो ॿीहर खां हाज़िर थियो सन एक्सप्रेस में दहशत ते हिकिड़ो एडिटोरियल छा थियो आहे पर असां पंहिंजे ॿुधंदड़ खां पुछंदासीं की छा पाकिस्तान में वाकई दहशतगर्दी जूं वाकिया थी रहिया आहिनि या वरी मासूम शहरनि जे बुनियादी हक़नि खे कुचले पियो वञे सन बिना वजह जे क़तल कया पिया वञनि ख़ासि करे जेको असां ताज़ो ई पाकिस्तान पारां बेक़ाइदे खयल ॼमू ऐं कश्मीर में ॾिठो आहे जेके शहरी पंहिंजे हक़नि जे लाइ प्रोटेस्ट करिया त उन्हनि बेगुनाहनि खे मासूम शहरनि खे गोलियुनि सां भुनियो वियो ॾिठो वञे त उते दहशत खे मुंझो ॾियण जे बदिरां उनखे हथी ॾिनी थी वञे अख़बार जे एडिटोरियल में पिण इहो लिखियल आहे कि दहशत सबबि आम माण्हुनि जी ज़िंदगी ख़राब आहे बलूचिस्तान में पिण तरक़ी जूं रिथाऊं अॻिते कोन वधी रहियूं आहिनि माण्हुनि जी ज़िंदगी जेका आहे सा स्ट्रगल वारी जदोजहद वारी थी वई आहे जंहिंमें नुक़सान ॿिन्ही जो थी रहियो आहे सरकार जो बि त आम माण्हुनि जो बि तंहिं करे दहशत अंगेज़ी खे बिल्कुलु मुंझो ॾियण जी सख़्तु घुर्ज आहे सिंध एक्सप्रेस में छा थियल एडिटोरियल ॿुधी रहिया दहशत अंगेज़ी जो नासूर।

सिंधवासी पाणी जे मामले ते न फकत सेंट्रल गवर्नमेंट जे बिहाई के मुड़ी रहे पर रोजमर्रा जे मुश्किलातन के पण मुड़ी रहे तैसा व्यवस्था सिंध एक्सप्रेस में एडिटोरियल शायद है जिन जो टाइटल है सिंध पाणी में कटौती जरई मईशत लाए वधनड़ खतरो जहला पाणी पाकिस्तान जे वफाकी एकन जे विच में हमेशा हसास ए अहम मामलो है पर अफसोस सिंध के पंजे से जो पाणी हासिल करण लाए अज भी जदोजहद थी करनी पए सिंध हर खेत्र में बार बार शिकायत थी अचे तो पानी की विर्छ सही कान्ह ए कानून जब्तन ते मुकम्मल कोने जैसे सूबे के पैं सिखा तमाम घट तो पानी मिले ए सीधो असर सिंध के जरई मईशत माहौलियात ए लखें आबादगारन के रोजगार ते तो पवे।

ऑफिशियल खास खास खबरों। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आदमी अगवान वटा भारतीय चूंडल प्रधानमंत्री तौर घणो अरसो पूरो करण लाइ सदन शुभकामनाउनि जा शुक्राना अदा कया। ताज़ो मलेशिया में वधंदड़ चिकताण मंझि अमरीकी फ़ौज ईरान में घणनि ई निशाननि ते हमिलो कयो आहे। वॾे मामले जे वज़ीर डॉ एस जयशंकर चयो आहे त भारत जा बल्गेरिया सां लाॻापा लंबे अरसे वारा ऐं बरक़रार रहंदड़ आहिनि ऐं आलम जी वॾे में वॾी फुटबॉल रांदि 2026 फीफा वर्ल्ड कप शुरू थी वई आहे।

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस 9870 किलोवाट से गुजरा है। हिंसर असाजे प्रोग्राम जो वक्त पूरा थी रहा है। वे असा मुलाकात थी सुबह सुबह जो यानी कि भारतीय वक्त मुताबिक साढ़े 10 बजे तीन दींदा। इजाजत सदाई गढ़।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट प्रणालियां अपनाने के महत्व पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कल नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लहड़ी ने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्रियों के सुझाव और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ है। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। यह समझौता नई दिल्ली में कल गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
1: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में जारी संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात के सहायक विदेश मंत्री लाना नुसीबे के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में ये बात कही। डॉ जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति का वातावरण बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेट्टीबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज किया है। सरकार ने कहा है कि खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरती जा रही है। पत्तन पुल परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी भारतीय नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। पत्तन पुल परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन की उत्तराखंड यात्रा पर जा रही हैं। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी के 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिगा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित एआई सलाहकार सेवा शुरू की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुवाई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे मोबाइल पर दी जाती है। आईसीसी महिला टी

जी आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुबह के ठीक 7:10 और 15 सेकंड हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम संगीतिका। इसमें आज आप सुनेंगे आलोक कुमार झा द्वारा गाए भजन। आपके साथ संगत कर रहे हैं बांसुरी पर प्रमोद प्रसन्ना, हारमोनियम पर जाकिर धौलपुरी, तबले पर प्रदीप्ता महाराणा और सितार पर अकील अहमद।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत के कार्यक्रम संगीतिका में आलोक कुमार झा द्वारा गाए भजन। इनके साथ संगत कर रहे थे बांसुरी पर प्रमोद प्रसन्ना, हारमोनियम पर जाकिर धौलपुरी, तबले पर प्रदीप्ता महाराणा और सितार पर अकील अहमद। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुबह के ठीक 7:34 और पूरे 10 सेकंड हो चुके हैं और साथ ही साथ वक्त हो चुका है हमारे और आपके सभी के पसंदीदा कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग का। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग और आज इस कार्यक्रम के साथ हाजिर हूँ मैं आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना गुप्ता।

जी हाँ, मौसम तो बेहद खूबसूरत हो रहा है और सुहावना भी हो रहा है, रोमांटिक भी हो रहा है और सुबह सुबह का मौसम है वैसे तो, और ढेर सारी क्या कहते हैं जो है ना बादल जो है हमारे यहाँ पे तो हो रखे हैं और बहुत बारिश भी हुई है। और आज जो इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे ना, वो भी बात करेंगे मौसम की। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उस जादू की जो बिना कुछ कहे दिल को छू जाता है, उस एहसास की जो कभी ठंडी हवाओं में मिलता है तो कभी बारिश की बूंदों में तो कभी सुनहरी धूप की नर्म गर्माहट में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मौसम और मोहब्बत की।

जी हाँ दोस्तों, जब सुहावना मौसम होता है ना, कोयल भी कूकती है, बादल भी बरसते हैं और मन में मीठी मीठी फुहारें है ना, वो भी उठती हैं, क्योंकि मौसम सिर्फ आसमान का हाल नहीं बताता, ये बताता है आपके दिल का हाल और बयां करता है कुछ गीतों के जरिए। जैसे हम यहाँ पर आते हैं आपके लिए ढेर सारे खूबसूरत गीत लेके इस खूबसूरत से कार्यक्रम में, गीतों भरी गुड मॉर्निंग में। तो कभी बादल छाए तो किसी की याद घिर आती है, जब कभी बादल छाए तो किसी की याद घिर आती है, कभी बारिश होने लगे तो किसी की मुस्कान भीगती हुई याद आ जाती है, और हाँ कभी ठंडी हवा चल जाए तो लगता है जैसे किसी ने प्यार से आपका नाम पुकार लिया हो।

एक खूबसूरत से गीत ने ना इस मौसम में और भी चार चांद लगा दिए है। सोचो जरा हल्की हल्की बारिश हो रही हो और पीछे से ये खूबसूरत सा गीत जो है ना बैकग्राउंड में बजाओ, क्या मजा आए। और वाकई में पैर अपने आप ही थिरकने लगते हैं। कुछ है हमारे ऐसे दोस्त जिनके मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वाकई में बहुत खूबसूरत से गीत जो है ना चल रहा है और बाहर बहुत प्यारा मौसम हो रहा है, बहुत प्लेजेंट मौसम हो रहा है और इस मौसम को इस गीत के साथ बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय भी कर रहे हैं हमारे दोस्त। अब इसी बात पे एक शेर भी हो जाए तो कितना मजा आ जाए ना, क्योंकि मौसम है बहुत ही खूबसूरत और शेर तो बनता है जनाब। हवा ने जब तेरा नाम कानों में कहा होगा, हवा ने जब तेरा नाम कानों में कहा होगा, मौसम ने भी उसी पल रंग नया लिया होगा। दोस्तों कहते हैं कि प्यार और मौसम दोनों का कोई भरोसा नहीं होता, कब बदल जाए किस तरफ मुड़ जाए कोई नहीं।

नहीं कह सकता, कोई नहीं जानता इवन, लेकिन जब दोनों एक साथ मेहरबान हो जाएं, तो जिंदगी किसी खूबसूरत गीत जैसे लगने लगती है। कल्पना कीजिए कि हल्की हल्की बारिश हो रही हो, हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई हो, पेड़ों की शाखें झूम रही हो और आपके साथ आपका कोई अपना हो, तब मौसम सिर्फ मौसम नहीं रहता, वो एक याद बन जाता है।

रही है बातें मौसम और मोहब्बत की, और साथ ही साथ ना वक्त की भी बात कर ले तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वक्त जो है ना 7:50 और पूरे 12 सेकंड हो चुके हैं, और बस मौसम के साथ हम भी थोड़ा इंजॉय कर रहे हैं गीतों को, मोहब्बत को और थोड़ी सी शेरो शायरी को।

जी बरसात की बूंदों में कुछ बात निराली थी, बरसात की बूंदों में कुछ बात निराली थी, दिल भीग रहा था और आंखों में खुशहाली थी। दोस्तों हर मौसम अपने साथ एक कहानी लेकर आता है, गर्मी हमें धैर्य सिखाती है और बरसात हमें एहसासों की भाषा सिखाती है। कई बार हम खिड़की के पास बैठकर बारिश को देखते हुए कुछ न कुछ सोचते हैं और अचानक कोई पुरानी याद दस्तक हमें दे जाती है। किसी की हंसी, किसी की बातें, किसी का साथ, सब कुछ जैसे बारिश की बूंदों ने वापस लौट आता है।

दोस्तों, क्या आप जानते हैं कुछ रिश्ते बारिश की तरह होते हैं जिनकी यादें कभी सूखती नहीं। दोस्तों, मौसम का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि हमें उम्मीद देना नहीं छोड़ता। कितनी भी लंबी गर्मी हो, एक दिन बारिश जरूर आती है। कितनी भी घनी रात हो, एक दिन सुबह जरूर आती है।

है, और यही बात प्यार पर भी लागू होती है दोस्तों। अगर दिल में सच्चाई हो, अगर रिश्ते में भरोसा हो, तो हर कठिन मौसम जो है वो चुटकियों में गुजर जाता है।

दोस्तों, मौसम बदले, हवाएं बदले, बदल जाए ये जहां, सच्ची मोहब्बत प्यार मगर बदलती नहीं कभी यहां। कभी कभी मौसम हमें खुद से मिलवाता है दोस्तों। सुबह की ताजी हवा हमें नए सपने देती है, शाम की ठंडी बयार हमें सुकून देती है और शांत रात का शांत आसमान हमें सोचने का मौका देता है कि आखिर जिंदगी कितनी खूबसूरत है। वाकई में कितने खूबसूरत विचार हैं आज हमारे इस मौसम वाले कार्यक्रम में। फिलहाल जो है ना, वक्त बहुत तेजी से दौड़ रहा है, आपसे विदा होने का भी वक्त जो है वो नजदीक आ चुका है, क्योंकि स्टूडियो की घड़ी के अनुसार 7:57 और पूरे 35 सेकेंड हो चुके हैं। और इसी खूबसूरत से गीत के साथ फिलहाल तो मैं आपसे इजाजत चाहती हूं और आशा करती हूं कि आपको ये जो कार्यक्रम है वो बेहद पसंद आ रहा होगा और हमारे द्वारा यहां से प्रसारित किए जा रहे बहुत सारे खूबसूरत से कार्यक्रम हैं वो भी आपको पसंद आते होंगे। अच्छा, आपसे एक बात और कहना चाहते हैं कि सुबह 10:10 पर प्रोग्राम रहता है आपकी पसंद। आज उस कार्यक्रम को लेकर आएंगी आपके लिए आपकी रेडियो होस्ट एंड दोस्त आरती गौड़, तो सुनना ना भूलेगा। बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम लेकर आती है ये अक्सर अपने कार्यक्रम इस चंक में और बहुत ही प्यारे गीत भी आपकी फरमाइशों के साथ ये प्ले करती हैं यहाँ पर। इस आशा के साथ कि आप हमारे साथ यूं ही बने रहेंगे, जल्द ही मिलने का वादा लिए ढेर सारी बातों के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। टेक केयर, बाय बाय।

0: कंट्रोवर्सी गीत के साथ कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग यही संपन्न होता है। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। सुबह के ठीक 8 बजने को है। अब से थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सोखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में कल सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। श्री शाह ने कहा कि एक ऐतिहासिक क्षण है, इससे देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि इस समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम हो जाएगी।
3: सिर्फ एक एमओयू से ही 1,000 से 1,500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
2: गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना दर्शाता है।
3: हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
2: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्री रियो ने कहा कि पूर्वोत्तर में शांति, स्थिरता और विकास के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता ने इस समझौते को संभव बनाया है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और असम सरकार को उनके सहयोग और सद्भावना के लिए धन्यवाद दिया। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरों के बारे में चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
0: केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए एआई का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। इन तकनीकों का दुरुपयोग चेहरे की पहचान, जीवंतता, सत्यापन, वीडियो के वाईसी प्रक्रियाओं, खातों को दोबारा सक्रिय करने की प्रणालियों और वित्तीय तथा डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थाओं को डीपफेक का पता लगाने, प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। लोगों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुल कारणता वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का प्रभाव उन क्षेत्रों से भी आगे बढ़ता है जहां वे घटित होते हैं। ऊर्जा सुरक्षा के विषय में डॉक्टर जयशंकर ने कहा

0: exploring common ground.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश में आज एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवेरे लखनऊ में और शाम को वाराणसी में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि होंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के उठाए गए कदमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
2: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात बिथवा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री दमित रवान कोलितोवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
3: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
2: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जाएंगे। वे आज देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन पहुंचेंगे। उत्तराखंड प्रवास के दौरान वे 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मोलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध और बढ़ाया जाएगा। श्री ट्रंप ने ईरान के उच्च स्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में प्रगति को इस

0: का कारण बताया है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए चल रही वार्ता में भी प्रगति हुई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मेक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मेक्सिको में संयुक्त रूप से खेला जाएगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। भारतीय टीम 14 जून को पाकिस्तान के साथ अपना अभियान शुरू करेगी। टूर्नामेंट में पहली बार 12 टीम हिस्सा ले रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरलम और माही के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। देश के पूर्वोत्तर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली और एनसीआर के कई स्थानों पर आज गरज चमक के साथ वर्षा का भी अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की खबर सभी अखबारों में है। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राज्यों के विकास के बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं। नवभारत टाइम्स के अनुसार पीएम ने कहा, भारत तेजी से तरक्की की राह पर। बैठक में पीएम ने दिया विकसित भारत का रोड मैप। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, 4 दिन में भारतीय क्रू वाला तीसरा पोत तबाह। हॉर्मुज में हुए हमले में सभी सुरक्षित, बुधवार को लापता नाविकों के शव मिले। पत्र ने भारतीयों की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पश्चिम एशिया में फिर तनाव फैलने और युद्ध भड़कने पर भारत पर सीधी आंच आई है। ये पश्चिम एशिया में टकराव का नया और खतरनाक मोड़ है। युद्ध रोकने के लिए वार्ता जारी थी, पर शीघ्र वार्ता के लिए अमरीका का युद्ध छेड़ना अतार्किक है। जनसत्ता की सुर्खी है, तृणमूल से एक और इस्तीफा, कल्याण के बगावती तेवर। पत्र ने राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के मामले में सुर्खी दी है, मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पंजाब केसरी ने सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से लिखा है, गृहिणियां हैं राष्ट्र की निर्माता, परिवार की नींव मजबूत करती हैं, उनके काम की कीमत हर महीने 30,000 रूपये होनी चाहिए। नवभारत टाइम्स ने इसी मामले पर खबर संपादकीय में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना मामले में कहा, इसका जितना व्यापक कानूनी असर है उतना ही सामाजिक। अदालत ने राष्ट्र निर्माण में घरेलू काम और जिम्मेदारियों के महत्व को स्वीकारा है। यह फैसला उस सोच पर प्रहार है जिसके अनुसार घर का काम कोई मायने नहीं रखता। दैनिक भास्कर ने विशेष रिपोर्ट में दिया है, आंखों से देख नहीं सकती थी मासूम, आवाज से पहचान लिए 3 दरिंदे, दुष्कर्म केस में आरोपियों की जमानत याचिका रद्द। पंजाब और हरियाणा कोर्ट में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और अपीली अदालत का फैसला बरकरार। लोक सत्य का शीर्षक है, दिल्ली एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट, आंधी और बारिश की संभावना। हवा के कारण तापमान में 6 से 7 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Center signs historic tripartite MOU with Assam and Nagaland governments for exploration and production of crude oil and natural gas in the two states. Government issues advisory about growing threat of cyber criminals using artificial intelligence to bypass security systems and target financial infrastructure. एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर

0: घंटे कबल उन्होंने ईरान की तेल सनत का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की धमकी दी थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के आला सतह के रहनुमाओं के साथ बातचीत में पेशरफ्त हुई है और इसीलिए अचानक ये तब्दीली हुई है। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ जंग के खात्मे के लिए समझौता करीब करीब मुकम्मल हो गया है और यूरोप में खत्म हफ्ता पर इस समझौते पर दस्तखत किए जाने की उम्मीद है। सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में ओवल ऑफिस में ये बात कही। ख्वातीन का 10वां आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप आज बर्मिंघम में एजबस्टन में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट के पहले मैच में मेजबान इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से होगा। एक मातवील टूर्नामेंट की मेजबानी इंग्लैंड और वेल्स कर रहे हैं। टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। भारतीय खवातीन इतवार को रिवायती हरीफ पाकिस्तान के खिलाफ मैच से अपनी मुहिम का आगाज करेंगी। हरमनप्रीत कौर के जेर कमान भारतीय टीम खवातीन का अपना पहला T20 वर्ल्ड कप टाइटल जीतने के इरादे के साथ मैदान में उतरेगी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 कल रात शानदार इफ्तिताही तकरीब के साथ मैक्सिको सिटी में शुरू हुआ है। पहले मैच में मैक्सिको ने जनूबी अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया। खेल के 9वें मिनट में जूलियन क्विनोन्स ने मैक्सिको के लिए पहला गोल किया। बाद में राउल जोमेनेज ने 67वें मिनट में गोल करके स्कोर मैक्सिको के हक में 2-0 कर दिया। इससे कबल फीफा वर्ल्ड कप की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में आलमी मौसीके और सकाफत की झलक पेश की गई, जिसमें शाकिरा और बर्नाबॉय ने शायकीन को मशहूर कर दिया। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज दिल्ली कौमी राजधानी खत्ते में कई मकामात पर गरज चमक के साथ औसत बारिश होने की पेशगोई की है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान के कुछ हिस्सों, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी इसी तरह का मौसम रहने का इम्कान है। ये थी खबरें। अब अखबार के आईने के साथ हैं शमीम इरफान।
1: शुक्रिया फहीम। आज के बेशतर उर्दू अखबार की शह सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार प्रताप ने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल से वजीर आजम के खिताब को अपनी शह सुर्खी बनाते हुए लिखा है, पीएम मोदी ने रियासतों को विकसित भारत 2047 के लिए दिया मास्टर प्लान। अमरीका के भारतीय जहाज पर हमले में अमले के 3 अहलकारों की हलाकत के बाद भारत ने अमरीकी नाजिमुल उमर को तलब किया, ये खबर भी अखबारों ने नुमाया तौर पर शाये की है। अखबार इंकलाब की शह सुर्खी है, राज्यसभा इंतखाबात में मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक से 14 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। अखबार की एक और सुर्खी है, 4 दिन में टीएमसी के 4 राज्यसभा मेंबरों ने पार्लियामेंट ने दिया इस्तीफा। अखबार प्रताप की एक और नुमाया खबर है, फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 6 साबिक फौजियों को शानदार खिदमत के लिए एजाज से नवाजा।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मरकज ने आसाम और नागालैंड में खाम तेल और कुदरती गैस की तलाश और पैदावार के लिए दोनों रियासतों की सरकारों के साथ तारीखी सफरी के मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं। सरकार ने सिक्योरिटी निजाम से बचने और माली बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की खातिर मसनू जहानत का इस्तेमाल करने के साइबर मुजरिमों के बढ़ते हुए खतरे के तनाजुर में एडवाइजरी जारी की है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने मौजूदा महाजराई के दौर में मतनव सप्लाई निजाम और बैन अवी इश्तराक में इजाफे पर जोर दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के खात्मे के लिए बातचीत में पेशरफ्त हवाला देते हुए ईरान पर नए फौजी हमले मनसूख कर दिए हैं। बर्मिंघम में आज खवातीन के आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के पहले मैच में मेजबान इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से होगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के ठीक 8:45 और पूरे 15 सेकेंड होने को है। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इसमें आज आप सुनेंगे पंडित गोस्वामी गोकुलोत्सव जी महाराज द्वारा राग गुर्जरी तोड़ी में गायन। इनके साथ संगत कर रहे हैं तबले पर अख्तर हसन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वरगंगा में अभी आप आनंद उठा रहे थे। पंडित गोस्वामी गोकुलोत्सव जी महाराज द्वारा राग गुर्जरी तोड़ी में गायन का, इनके साथ संगत कर रहे थे तबले पर अख्तर हसन। 9:15 होने को है, आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम गांधी चर्चा।

0: गांधी चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में आज की वार्ता का विषय है स्वदेशी और स्वावलंबन पर महात्मा गांधी के विचार। आलेख एवं स्वर मधु शर्मा।
1: महात्मा गांधी के लिए स्वदेशी व स्वावलंबन अर्थात आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक नीतियां नहीं अपितु राष्ट्र की आत्मा और स्वतंत्रता या स्वराज के आधार थे। गांधी जी के अनुसार स्वदेशी का अर्थ अपने स्थानीय संसाधनों और पड़ोसी उद्योगों का उपयोग करना है, जबकि स्वावलंबन का अर्थ अपनी आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर बनना है। वे खादी और ग्राम उद्योग को इसका प्रतीक मानते थे। स्वदेशी आंदोलन सन 1905 से सन 1911 तक

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक युगांतकारी आंदोलन था जो लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना और भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देना था, जिससे देश में आत्मनिर्भरता आए। यह गांधी जी के आने से पूर्व एक सफल आंदोलनों में से एक था, जिसने देश में राष्ट्रवाद की लहर पैदा की। स्वदेशी व स्वावलंबन में दोनों शब्द एक दूसरे के पर्याय हैं। यदि हम आत्मनिर्भर हैं, तो हम स्वदेशी भी हैं। स्वावलंबन का अर्थ है आत्मनिर्भरता, अर्थात अपने उपयोग की वस्तुओं का स्वयं निर्माण करना, दूसरों पर किसी भी प्रकार से निर्भर न रहना। महात्मा गांधी का मानना था कि आत्मनिर्भरता या स्वावलंबन एक ऐसा स्वप्न है जो हमारे भारत को उज्ज्वल बनाने में सहायक है। स्वावलंबन के लिए भारत को अपने उद्योगों और व्यवसायों को बढ़ावा देना होगा। महात्मा गांधी का कहना था कि स्वराज, स्वदेशी, स्वावलंबन का मेरे लिए अर्थ है अपने सर्वाधिक दीनहीन देशवासियों की स्वतंत्रता। मुझे केवल भारत को अंग्रेजों की पराधीनता से मुक्त कराने में ही रुचि नहीं है, अपितु मैं भारत को सभी प्रकार की पराधीनताओं से मुक्त कराने के लिए कटिबद्ध हूँ। मुझे शासक के स्थान पर दूसरे शासक को लाने की जरा भी इच्छा नहीं है। राष्ट्र को यदि हमें समृद्धशाली बनाना है तो गांवों को एक इकाई के रूप में देखना होगा। प्राचीन काल में भी हमारे देश भारत में प्रत्येक गांव में ही वस्त्र, औजार, अन्न आदि की जरूरतें पूरी होती थी। विविध जातियों और समुदायों के लोग मिलजुल कर पूरे गाँव की आवश्यकताओं को पूर्ण करते थे। इसीलिए हमारे देश की ग्रामीण परंपरा अत्यधिक समृद्ध थी। आवश्यकता अनुसार सभी जरूरतें एक गांव में पूर्ण हो जाती थी। महात्मा गांधी का स्वप्न था कि गांव आत्मनिर्भर बने, किसान सशक्त हो और ग्राम में स्वराज की भावना साकार हो। हिंदुस्तान के महान व सबसे बड़े नेता ने स्वदेशी व स्वावलंबन की बात क्यों की? क्योंकि आजादी के साथ साथ देश को आत्मनिर्भर भी होना चाहिए। जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तब देश की संपूर्ण संपदा समृद्धि यहाँ से ब्रिटेन पहुँचाई जा रही थी। हमारी मेहनत, हमारी ऊर्जा, हमारे रत्न सब कुछ निचोड़ कर ब्रिटेन पहुँचाए जा रहे थे। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा, हम स्वदेशी के आधार पर पूरी संपन्नता प्राप्त कर सकते हैं। और उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गयी और उन्होंने देशवासियों को चरखे का यंत्र दिया। चरखे के रूप में हमारे देश भारत को एक नया आत्मविश्वास व स्वाभिमान मिला। चरखा केवल एक यंत्र नहीं था, अपितु हमारी स्वदेशी उद्यमता का सबसे बड़ा प्रतीक था। हमारे देशवासियों ने अपने कपड़े स्वयं बनाने प्रारंभ किए, जिससे लोगों को काम मिला तथा देशवासियों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आया। आज फिर ऐसा ही समय आ गया है। पुनः स्वावलंबन व स्वदेशी भावना को जागृत करना आवश्यक हो गया है। भारतवासी, भारत की कंपनियां उत्तम कार्य कर रही हैं। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जिसका हम उत्पादन न कर सकें। हम देशवासियों का कर्तव्य बन जाता है कि स्वदेशी कंपनियों द्वारा निर्मित वस्तुओं का प्रयोग करें। साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कुटीर उद्योगों व ग्रामीण उद्योगों से जो सामग्री बनकर आती है, उस सामग्री को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। जब हम कुटीर उद्योग से जुड़ते हैं, तब उन लोगों को हम परोक्ष रूप से मदद करते हैं, जो आर्थिक रूप से अपने आप को समाज में स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। उनके जीवन को हम गति दे सकते हैं। हमारा किसान, हमारे श्रमजीवी को भी हम मुस्कुराने का सुअवसर दे सकते हैं। ब्रिटिश हुकूमत ने तंगहाली, अव्यवस्था, महामारी से जूझते जनसाधारण को भुखमरी की ओर धकेल दिया था। उनके रोजगार के अवसर भी छीन लिए थे। धार्मिक झगड़ों में जनमानस को उलझा अपनी ही तिजोरियां भरने का काम किया। इस निसहायता और अपमान के चुंगल से उन्हें स्वाश्रय बनने का रास्ता गांधी जी ने बताया। यदि सभी लोग जिम्मेदारी से अपने उपयोग भर अनाज और वस्तुएं ले, तो अनाज और वस्तुओं की तंगहाली को काबू किया जा सकता है। गांधी जी के बताए संयम के विषय में लोह पुरुष सरदार पटेल का मत था कि सरकारी

0: सहायता के बिना अन्न उगाना कठिन तो है, और यदि अन्न उगा भी ले और सही व्यक्ति तक वह अन्न पहुंच जाए, यह भी एक बहुत विकट चुनौती है। हम जहाँ रहते हैं वही हमारी जरूरतों की पूर्ति हो जाए, लेकिन आपसी धार्मिक जातिगत झगड़ों के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा था। जहाँ जनता को दो वक्त की रोटी न मिल पा रही हो और रोजगार अनियमित और अल्पकालिक हो, वहाँ रोजगार उत्सर्जन के लिए गांधी जी ने स्वावलंबन को स्वदेशी से जोड़ा। जन सामान्य के लिए रोजगार और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति गांव के आसपास ही पूरी हो, खादी और ग्रामोद्योग से हर घर में रोजगार की आशा जागी। स्वदेशी ही अपनाओ, स्वदेशी वस्तुओं का उत्पादन करो। गांधी जी अपने जन्म दिवस को चरखा दिवस के रूप में मनाते थे। गांधी जी अपने अंतिम समय तक चरखा काटते रहे और अपने अनुयायियों को भी चरखा काटने को कहते रहे। इनके अर्थशास्त्र के आगे आज तक कोई विकल्प मिला ही नहीं है। चरखे को सत्य, अहिंसा, शांति, समानता, सर्वोदय के रूप में ग्रहण किया था। स्वयं सेवक जन जन तक खादी को पहुंचाते थे। मशीन से बनी वस्तुएं यद्यपि आंखों को भले ही अच्छी लगे, लेकिन हमारे अर्थशास्त्र को बिगाड़ने का कार्य मशीनों ने ही किया। स्वदेशी आंदोलन को बहुत अधिक जन समर्थन मिला। देशवासियों की सहायता करने के लिए लोगों ने स्वदेशी को अपनाया, विदेशी वस्तुओं को छोड़ा। देश के प्रत्येक कोने में सम्मान पूर्वक जीवन यापन के साधन मिले। साथ ही लुप्त होती लोक कलाओं जैसे हस्तशिल्प, हस्तकला को नया जीवन मिला। यदि खादी से आत्मीयता है तो हमें अपने जीवन में सादगी को महत्व देना चाहिए। महात्मा गांधी कहते थे कि जब नागरिक शिक्षित, सामर्थ्यवान व स्वावलंबी होंगे, तभी वे पिछड़े साथियों को सहारा दे सकेंगे। जिस व्यक्ति को अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है, उस व्यक्ति का दबाव और अत्याचार बढ़ने लगते हैं। जहाँ परस्पर विश्वास, सामर्थ्य का नाता है, ऐसे प्रबुद्ध भारत की गांधी जी ने कल्पना की थी। कोई भी व्यक्ति यूं ही महान नहीं बन जाता, उसकी सोच, उसके कार्यकलाप उसे महान बनाते हैं। कुछ ऐसे सिद्धांत जिससे व्यक्ति समझौता नहीं करता, चाहे उसके लिए कितना भी कष्ट झेलना पड़े। गांधी जी सत्य के आग्रही थे, सत्य को वे ईश्वर मानते थे, सत्य उनके लिए सर्वोपरि था। आधुनिक युग में भी महात्मा गांधी के द्वारा बताए गए नियम व विचार भारत को एक नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद।
1: गांधी चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता, जिसका विषय था स्वदेशी और स्वावलंबन पर महात्मा गांधी के विचार। आलेख एवं स्वर मधु

इसी साथ गाने चर्चा कार्यक्रम का ये अंक अब संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग श्रीनाथ दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता थे वी के तोमर।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के ठीक 9:30 होने को है। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दे महक।

0: तेरी अजमत लब पर है नाम तेरा, तुझसा नहीं है कोई यकता मकाम तेरा। अब नाते पाक के कुछ शेर पेश करता हूँ, मतलब मुलाहज़ा फरमाइए।
1: रोशन रोशन आपकी सीरत, उजला उजला आपका नाम। रोशन रोशन आपकी सीरत,

مجھ پہ عجب فیضان ہوا، مجھ کو عجب تسکین ملی ہے، مجھ پہ عجب

का नाम आखिरी शेर मुलाहजा फरमाइए कि सारे ही असहाबे पैगंबर रुश्दो हुदा के तारे हैं, सारे ही असहाबे पैगंबर रुश्दो हुदा

0: हम दोबारे ताला और नाते रसूल पेश कर रहे थे डॉक्टर ताबिश मेहदी। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब अपनी शह प्रोग्राम आज सवेरे।
1: Now let's get to the history of the day. 1550, King Gustav I of Sweden founded the city of Helsinki. The city, which is currently the capital of Finland, was part of Sweden at that time. And 1665, this day, New Amsterdam legally becomes an English colony, renamed New York after English Duke of York. And 1817, the earliest form of bicycle, the dandy horse, was driven by inventor Carl von Drais. And 1898, this day, Philippines declared its independence from Spain. And 1903, Niagara Falls, Ontario, was incorporated as a city. And also today marks Independence Day in Philippines and Russia. And what about you, Mukesh? Anything else you have?
2: जी बिल्कुल। वर्ष 1994 में दुनिया के सबसे बड़े ट्विनजेट विमान बोइंग 777 ने पहली बार आज ही की तारीख को उड़ान भरी थी। इसके बाद वर्ष 2001 में सीमा मुद्दे पर भारत और बांग्लादेश की वार्ता भी आज ही की तारीख को शुरू हुई थी। इसके 7 वर्ष बाद यानी कि वर्ष 2008 में 10वें ओसियाना सिनेफेन फिल्म समारोह में प्रख्यात फिल्म निदेशक मृणाल सेन को पुरस्कृत किया गया था।
1: And 2011, scientists published the discovery of what may be the oldest artwork in the Americas, an engraving of an Ice Age mammoth on a fossil bone likely at least 13,000 years old.
2: और 2016 में साइना नेहवाल ने दूसरी बार ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब भी आज ही के दिन अपने नाम किया था। अब बात करते हैं उन जानी मानी हस्तियों के बारे में जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है। तो आज श्रोताओं, पुण्यतिथि है सी नारायण रेड्डी की। वे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित तेलुगु भाषा के प्रख्यात कवि थे। उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उन्होंने 5 दशकों से भी अधिक समय तक काव्य रचना की। अब तक उनकी 40 से भी अधिक कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं।
1: And we are going back to the year 1843. Our birth anniversary tributes go out to Sir David Gill, a Scottish astronomer known for measuring astronomical distances. And Hollywood legend Gregory Peck left us this day in the year 2003. From his very first year in Hollywood through 5 decades of making motion pictures, Gregory Peck has been to audience around the world the quintessential Hollywood leading man. Tall, dark and handsome looks complemented by an overwhelming sense of moral and physical strength. Peck received 4 Oscar nominations within 6 years and finally winning with his masterpiece film To Kill a Mockingbird in 1962. And today is the birthday of Metro Man E. Sridharan, a retired officer of the Indian Engineering Service and advisor to several metro projects in India. Besides this, he is a member of the United Nations High-Level Advisory Group on Sustainable Transport. And of course, he has received numerous national and international awards for his work.
2: श्रोताओं, भी हमने बात की थी इससे कुछ पहले सी नारायण रेड्डी की, तो उन्होंने फिल्मों में भी काफी नाम कमाया। 1962 में उन्होंने फिल्मों में गाने लिखना शुरू किया। पहली फिल्म मिली उन्हें गुड़वे कावली का था। इस फिल्म के साथ वो मशहूर हो गए। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत।

और आज ही पुण्यतिथि है पुरुषोत्तम लक्ष्मण देश पांडे की। वे लोकप्रिय मराठी लेखक, नाटककार, हास्यकार, अभिनेता, कथाकार और पटकथाकार, फिल्म निर्देशक, संगीतकार और गायक थे। वे दूरदर्शन से इसकी स्थापना के समय से ही जुड़े रहे। पीएल देशपांडे को पुल देशपांडे के नाम से भी जाना जाता था। पुरुषोत्तम लक्ष्मण देश पांडे ऐसे शख्स थे जिन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का इंटरव्यू लिया था। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, महाराष्ट्र भूषण, कालिदास आदि अनेकों सम्मानों से नवाजा गया। आइए सुनते हैं उनकी पहली फिल्म कुबेर का ये मराठी गीत।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे। मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्रीडिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात आप समाप्त कर रहे हैं। अब खबरें नशर की जाएंगी।

और नगालैंड के वजीर आला निफियो रियो की मौजूदगी में इस मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए गए। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि मजकूरा मुफाहमतनामे पर दस्तखत एक तारीखी लम्हा है और इससे मुल्क में तेल और कुदरती गैस की तलाश के इम्कानात में इजाफा होगा। असम के वजीर आला हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि असम और नागालैंड के दरमियान सरहद का मामला तवील अरसे से तस्फिया तलब है और इसकी वजह से खित्ते में मौजूद कुदरती वसाइल को मुल्क के लिए बरुएकार नहीं लाया जा सका है। नागालैंड के वजीर आला निफियो रियो ने भी सेफरीकी मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए जाने को एक तारीखी संग मील से ताबीर किया। मरकज ने साइबर मुजरिमों की तरफ से इस बढ़ते हुए खतरे के बारे में एडवाइजरी जारी की है कि वो सिक्योरिटी निजाम से बचते हुए माली बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल कर रहे हैं। उमूर दाखिला की वजारत के तहत भारतीय साइबर जरायम तालमेल मरकज की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी के मुताबिक साइबर मुजरिम डीप फेक वीडियो और मसनूई शनाख्त तैयार करने के लिए एआई का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। मस्कुरा एडवाइजरी में इस बात को उजागर किया गया है कि धोखादेही करने वाले अफराद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, मुलाजमत से मुतल्लिक पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म्स या फोन कॉल्स के जरिए राब्ता कायम करते हैं। ये अनासिर लोगों के चेहरों से मुतल्लिक डेटा इकट्ठा करते हैं और कभी कभी वो इसके लिए लोगों को पलक झपकाने, घूम कर देखने या कैमरे पर बोलने जैसे काम करने पर राजी कर लेते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों समेत माली इदारों को ये सलाह दी है कि वो डीप फेक का पता लगाने के तरीकेकार को मुस्तहकम बनाएं और सार्फिन को शामिल करने के निजाम को उसत दें। लोगों से भी जोर देकर कहा गया है कि वो अपना बायोमेट्रिक डेटा महफूज रखें, लॉगिन करने की मशकूक कोशिशों से चौकस रहें और माली सरगर्मियों से मुतालिक ईमेल या एसएमएस नोटिफिकेशन पर बाकायदगी से नजर रखें। शहरियों को यह सलाह भी दी गई है कि वो कौमी साइबर जराइम रिपोर्टिंग पोर्टल के जरिए किसी भी तरह के मुश्तबा माली लेन देन की इत्तला बिला ताखीर दें। वजीर खारजा एस जयशंकर ने मौजूदा महाजराई और टकराव के असरात से निपटने के लिए मजबूत और मुतनव सप्लाई निजाम, पायदार सफारती कोशिशों और बैन अलावामी इश्तराक में इजाफे की जरूरत पर जोर दिया है। फिनलैंड में उभरती हुई ताकतों और नए जोग्राफियाई और सियासी मुकाबले के मौजू पर एक मुबाहसे में इजहार ख्याल करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि टकराव और लड़ाई के असरात उन खित्तों से बाहर तक मरतब होते हैं जहां ये हो रहे हैं। तवानाई की यकीनी फराहमी के बारे में डॉ जयशंकर ने यह बात दोहराई कि तवानाई के ताल्लुक से कोई भी फैसला मुल्क के मफाद को मलहूज खातिर रखते हुए किया जाता है और इस सिलसिले में कोई भी सरकारी खरीद कम कीमत और दस्तयाबी की सूरत हाल पर मबनी होती है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से उत्तराखंड के दो दिन के दौरे पर रहेंगी। अपने इस दौरे में वो देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी में 158वें रेगुलर कोर्स और 141वें तकनीकी ग्रेजुएट कोर्स की पासिंग आउट परेड का मुशाहिदा करेंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के खात्मे के लिए बातचीत में पेशरफ्त का हवाला देते हुए ईरान पर नए फौजी हमले रोक दिए हैं। इससे चंद घंटे कबल उन्होंने ईरान की तेल सनत का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की धमकी दी थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के आला सतह के रहनुमाओं के साथ बातचीत में पेशरफ्त हुई है और इसीलिए अचानक ये तब्दीली हुई है। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ जंग के खात्मे के लिए समझौता करीब करीब मुकम्मल हो गया है और यूरोप में खत्म हफ्ता इस समझौते पर दस्तखत किए जाने की उम्मीद है। सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में ओवल ऑफिस में ये बात कही। खवातीन का 10वां आईसीसी टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप आज बर्मिंघम में एजबेस्टन में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट के पहले मैच में मेजबान इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से होगा। एक माह तवील टूर्नामेंट की मेजबानी इंग्लैंड और वेल्स कर रहे हैं। टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। भारतीय खवातीन इतवार को रिवायती हरीफ पाकिस्तान के खिलाफ

0: मई से अपनी मुहिम का आगाज करेंगी। हरमनप्रीत कौर के जेर कमान भारतीय टीम खवातीन का अपना पहला T20 वर्ल्ड कप टाइटल जीतने के इरादे के साथ मैदान में उतरेगी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 कल रात शानदार इफ्तिताही तकरीब के साथ मैक्सिको सिटी में शुरू हुआ। पहले मैच में मैक्सिको ने जनूबी अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया। खेल के 9वें मिनट में जूलियन क्विनोन्स ने मैक्सिको के लिए पहला गोल किया। बाद में राउल जेमेंस ने 67वें मिनट में गोल करके स्कोर मैक्सिको के हक में 2-0 कर दिया। इससे कबल फीफा वर्ल्ड कप की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में आलमी मौसीकी और सकाफत की झलक पेश की गई, जिसमें शाकिरा और बर्ना बॉय ने शायकीन को मशहूर कर दिया। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज दिल्ली कौमी राजधानी खत्ते में कई मकामात पर गरज चमक के साथ औसत बारिश होने की पेशगोई की है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान के कुछ हिस्सों, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी इसी तरह का मौसम रहने का इम्कान है। मौसमियात महकमे के मुताबिक शमाल मशरकी भारत में भी गरज चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश के बाद हिस्सों, आसाम, मेघालय, साहली कर्नाटक, केरलम और माहे में तेज बारिश होने की पेशगोई की गई है। इसके अलावा अंडमान और निकोबार जजायर, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों, झारखंड, मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी खत्ते और सिक्किम में भी औसत से लेकर शदीद बारिश होने का इम्कान है। दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में आज सुबह एक रिहायशी इमारत में आतिशबाजी के नतीजे में 3 अफराद हलाक हो गए। ये आग मुबैना तौर पर ग्राउंड फ्लोर की पार्किंग से शुरू हुई, जहां कुछ मोटरसाइकिलों और स्कूटर्स में आग लग गई। इसके बाद ये इमारत में फैल गई। दिल्ली के फायर महकमे ने बताया कि इसे रात तकरीबन 2:25 पर इत्तला मिली और आग बुझाने के लिए 8 गाड़ियां रवाना की गई। आग बुझाने वाले महकमे ने कहा कि उसने 5 लोगों को बचाया है। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मरकज ने असम और नागालैंड में खाम तेल और कुदरती गैस की तलाश और पैदावार के लिए दोनों रियासतों की सरकारों के साथ तारीखी सहफरीकी मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं। सरकार ने सिक्योरिटी निजाम से बचने और माली बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की खातिर मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल करने के साइबर मुजरिमों के बढ़ते हुए खतरे के तनाजुर में एडवाइजरी जारी की है। वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर ने मौजूदा महाजराई के दौर में मतनवे सप्लाई निजाम और बैनुल-अक़वामी इश्तराक में इजाफे पर जोर दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के खात्मे के लिए बातचीत में पेशरफ्त का हवाला देते हुए ईरान पर नए फौजी हमले मनसूख कर दिए हैं। बर्मिंघम में आज खवातीन के आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के पहले मैच में मेजबान इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से होगा। और फुटबॉल में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के पहले मैच में मैक्सिको ने जनूबी अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। पेश है अख़बारी ज़र्री का प्रोग्राम शम्मे फ़रोज़ा।
2: हिंदी के मशहूर शायर रहीम दास जी ने कितनी खूबसूरत बात कही है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटा पीछे ना जुड़े जुड़त गांठ पड़ जाए। इस दोहे का मफहूम यह है कि ए रहीम, मोहब्बत के रिश्ते को अचानक मत तोड़ो, इसलिए कि अगर मोहब्बत का रिश्ता एक बार टूट गया तो फिर जुड़ता नहीं है, और अगर जुड़ भी जाए तो फिर उसमें गांठ पड़ जाती है। जिस तरह धागे को अगर तोड़कर दोबारा जोड़ा जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। रहीम ने इस दोहे में जिंदगी की अजीम सदाकत को समो दिया है। इंसान का असल पैगाम और बुनियादी अमल मोहब्बत है। जिंदगी मोहब्बत से इबारत है। इस मोहब्बत के हजार रंग हैं। माँ बाप से मोहब्बत, भाई बहनों से मोहब्बत, औलाद से मोहब्बत, वतन से मोहब्बत, शोहर और बीवी की मोहब्बत, हमसायों और साथ काम कर

0: इस गजल के साथ ही आज का हुस्ने गजल प्रोग्राम अब खत्म हुआ। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब पेश है प्रोग्राम कंट्री वाइड।
1: कंट्री वाइड
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा करने के अवसर पर एनडीए कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अम्बरीश सक्सेना।
3: आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं एनडीए अधिवेशन में प्रधानमंत्री के संबोधन के मुख्य बिंदु, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा। आशुतोष जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।

0: तो आशुतोष जी, जैसा कि कल हमने सुना कि प्रधानमंत्री जी का जो उद्बोधन था जिसमें उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर बात की, देश के अंदर जो हमारे सामने समस्याएं हैं, जो विकास के मुख्य आयाम हैं और वैदेशिक संदर्भ में भारत की क्या मुख्य भूमिका है, इन तमाम बिंदुओं पर प्रधानमंत्री ने चर्चा की। उन्होंने ये बताया कि किस तरह से पिछले 12 साल में सरकार ने काम किया है और देश को किस तरह से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया है। खासतौर पर अगर हम बात करें तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की, ढांचागत विकास की उन्होंने बात की, डिजिटल सेवाओं की बात की, वेलफेयर स्कीम्स की बात की, आप इसके बारे में और क्या जोड़ना चाहेंगे?
1: पिछले 12 साल जो काम हुए हैं राजग काल में, एनडीए के काल में, उसकी जो बात की वो तो की कि उपलब्धियां गिनाई। ये उपलब्धियां मुझे लगता है कि दो स्तर पर दिखी। एक तो कि जो जमीन पे जो चीजें आपको बदलती हुई दिख रही हैं वो, कि जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, और दूसरा है सोच के स्तर पर बदलाव कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। जो जो पहले की सरकारों में 60 सालों में जिस तरफ हमारा, जिस सेक्टर पे फोकस नहीं होना चाहिए था और नहीं गया, उसको कैसे सुधारना है, वो एक लेवल वो था कि कैसे बदलना है। और जो तीसरा जो एक लेवल था जो मुझे दिखा और प्रधानमंत्री ने इसके बारे में बात भी की, वो ये है कि भारत की जो 140 करोड़ जनता है उसके मन और दिमाग में कुछ चीजें असंभव सी थी जो कि बैठी हुई थी कि ये चीजें असंभव है, बाकी चीजें तो हम करेंगे। उस असंभव को पार करना, जिसमें कि उन्होंने फिर वो 370 और 3 तलाक जो इस तरीके की बात की जो समाज से भी जुड़ते थे, देश की सुरक्षा से भी जुड़ने वाले इशू थे और जो आम जन की जनभावना से जुड़े हुए जो मुद्दे थे वो, तो ये 3 तरीके के बदलाव जो पिछले 12 साल में हुए, मुझे लगा कि प्रधानमंत्री ने इस पर बहुत खुल के बात की।
0: आशुतोष जी, अगर हम खासतौर से बात करें आर्थिक प्रगति की, हम सभी देखते हैं कि किस तरह से विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से विकास हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें, निवेश की बात करें, डिजिटल पेमेंट की बात करें, और खासतौर से पूरी दुनिया में भारत ने अपनी एक जगह बनाई है, और न सिर्फ एक जगह बनाई है, हमने लगातार कोशिश की है इस सरकार के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कि हम बाकी दुनिया से एक कदम आगे चलें। तो आइए सुनते हैं इस बारे में प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
2: आज ग्लोबल ग्रोथ में भारत की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है, इसलिए भारत को अब ग्लोबल पैरामीटर्स, ग्लोबल कंपटीशन और ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखना है। दुनिया भारत से सॉल्यूशन चाहती, दुनिया भारत में वैश्विक सप्लाई चेन का एक भरोसेमंद पार्टनर देख रही है और हमें दुनिया की इन अपेक्षाओं पर खरा उतर कर दिखाना, हमें ये समय गंवाना नहीं है। और मैं बार बार कहता हूँ, यही समय है, सही समय, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में खुद को श्रेष्ठ रखना है। हमें सिर्फ दुनिया जैसा नहीं करना, हमें दुनिया से एक कदम आगे रहना है।
0: तो आशुतोष, आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और अगर हम देखें कि किस तरह से जो देश का विकास हुआ है और जो 2047 का लक्ष्य हमने निर्धारित किया है, चूंकि 100 साल हमारे देश की स्वतंत्रता के हो जाएंगे, और उसमें आर्थिक विकास से लेके जो टेक्नोलॉजी का विकास है, जो सोशल इंक्लूजन की बात है, सामाजिक समावेश की बात है, और एक अच्छे प्रशासन और गुड गवर्नेंस की बात है, इस बारे में आप आशुतोष जी और क्या जानकारी देना चाहेंगे?
1: आज देश को किस चीज की जरूरत है? अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें तो बात हो रही है ना कि पश्चिम एशिया का संकट आया और पूरे विश्व पे इस संकट का असर दिख रहा है। यहाँ पर विपक्ष में बैठे लोग कुछ ज्यादा उसे तूल दे रहे हैं, ऐसा लगता हो कि सिर्फ इंडिया का वो एक इशू है, लेकिन फिर भी जो समस्या अभी आपको दिख रही है ये और कम दिखती अगर कुछ कदम पहले उठाए गए होते, जिसका कि जिक्र अभी प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में किया था और उन्होंने कहा था कि भाई जो सप्लाई चेन में जो इंडिया पर कई बार दिखता है कि हम दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, ये कोविड के टाइम में भी ये चीजें दिखी थी और अभी भी चीजें दिख रही है। वहां कैसे ग्लोबल सप्लाई चेन में मुख्य भूमिका में इंडिया को आना है। एक टाइम आप याद कीजिए कि कई सारी ऐसी वस्तुएं हैं जहां हम पहले से मैन्युफैक्चरिंग करते थे, जैसे कि दवाइयां, और ये 80-90 के आसपास की मैं बात बता रहा हूँ, और फिर धीरे धीरे उस समय कुछ इस तरीके से निर्णय लिए गए कि भाई हम मार्केट इकोनॉमी में किस तरीके से घुस जाए, और हम वहां मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो उस समय में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना था वो नहीं किया गया, अब शुरुआत हो रही है इसकी। इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने बहुत लंबे तरीके से किया और मुझे वो चीजें बहुत सही लगी आज के परिप्रेक्ष्य में कि क्यों नहीं भारत हर मामले में आत्मनिर्भर हो सकता है, जिसकी बात उन्होंने की। ये आत्मनिर्भरता ही जो है वही कड़ी है और वही आप समझिए सबसे बड़ी कुंजी है जिसमें कि आप वित्तीय रूप से बहुत संबल, जो बात हो रही है ना बार बार विकसित भारत बनने, विकसित भारत ऐसा नहीं है कि एक शब्द में जुड़ के कहीं खत्म हो जाए, कई लेवल पे जो स्टेप्स लेने हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री ने ये बात की कि भाई ये ग्लोबल सप्लाई चेन बनना है, हमें मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बनना है। आज से 8-9 साल पहले तक आप याद कीजिए तो यहाँ आपके हाथ में, हमारे हाथ में जो भी फोन है वो बाहर से ही आ रहे होंगे कहीं न कहीं से। अब स्थिति बदली हुई है कि आज अमेरिका वहां के जो यूजर है उसमें से एक फोन मेड इन इंडिया हो रहा है। ये जो बदलते हैं माहौल, उसकी बात उन्होंने की कि हमें किस तरीके से आर्थिक पावर के रूप में उभरना ही पड़ेगा, यही सबसे बड़ी कुंजी है। उसी के साथ समाज का भी ग्रोथ होगा। भारत जैसे देश में जहां इतनी बड़ी जनसंख्या रहती है उसमें वेलफेयर स्टेट का जो एक बहुत बड़ा बोझ होता है, आप जान रहे हैं कि आज के दिन हम लोग करीब करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए सब्सिडी में देते हैं, हम कहां से कर पाएंगे अगर जब तक आप एक आर्थिक ताकत के रूप में नहीं उभरेंगे। और आर्थिक ताकत के रूप में उभरने के लिए इसकी भी जरूरत है और साथ ही साथ सभी राज्यों को भी लेना चाहिए जो एक हेल्दी कंपटीशन की बात है।
0: जी जी,
1: तो भाई ये हेल्दी कंपटीशन सिर्फ राज्य और राज्य में ना हो, ये हेल्दी कंपटीशन गांव से शुरू हो सकता है। ये गांव दूसरे से कॉम्पीट कर रहा हो कि हम अपने गांव को कैसे ज्यादा बेहतर बना पाए, एक शहर दूसरे से कॉम्पीट कर रहा हो कि हम कहां पर ज्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर पाए। और उन्होंने कहा कि राज्यों को तो ये कम्पीट करना चाहिए कि भाई आने वाले टाइम में हु विल बी द फर्स्ट स्टेट जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का स्टेट होगा।
0: तो आशुतोष जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उठाए और प्रधानमंत्री ने सहभागिता की बात भी की, क्योंकि उनका ये मानना है जैसा कि आप भी अभी जिक्र कर रहे थे कि सारी जनता मिलके और सारे राज्य मिलके ही विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। तो एक जन विश्वास की जो बात है, जन भागीदारी की बात है, इस पर प्रधानमंत्री ने काफी जोर दिया। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने इस बारे में क्या कहा।
2: देशवासियों की सहभागिता की हमारी बहुत बड़ी शक्ति। ये 12 वर्ष सरकार और समाज की सहभागिता का उत्सव मनाने वाले रहे। बीते 12 वर्षों में मैंने जो भी सहयोग देश से मांगा, देशवासियों ने दिल खोल करके साथ दिया। मैंने स्वच्छता का आग्रह किया तो पूरा देश निकल पड़ा। मैंने देश से डिजिटल पेमेंट अपनाने के लिए आह्वान किया तो भारत रियल टाइम ट्रांजेक्शन में दुनिया में सबसे आगे निकल गया। मैंने कोरोना महामारी के दौरान एकजुटता का, संयम का आग्रह किया तो देश ने एकजुट होकर उस महामारी का सामना किया। जनता ने कभी हमें निराश नहीं किया। आने वाले समय में भी इसी जन विश्वास और जन भागीदारी के साथ हमें आगे बढ़ना है।
0: आशुतोष जी, जैसा कि अभी हमने सुना, प्रधानमंत्री ने इसके अलावा हाउसिंग की बात की, वित्तीय समावेशन की बात की, सफाई का भी जिक्र किया, स्वास्थ्य का जिक्र किया। खासतौर से जिस तरह से गरीबी उन्मूलन की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़े हैं और काफी लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने की कोशिश की है, इस बारे में आप हमारे श्रोताओं को और क्या जानकारी देना चाहेंगे?
1: न सिर्फ गरीबी से जो 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया, और साथ में उन्होंने कहा कि हमें इसका विशेष प्रयास करना चाहिए, एक साथ मिल करके प्रयास करना चाहिए कि ये फिर से उस गरीबी के दलदल में न जाए। देखिए, सबसे बड़ी समस्या यही होती है जब आप इस तरीके की योजनाओं पे काम करते हैं, स्लिपेज की बात कि आपने कुछ चीजें ठीक की और वो फिर से धीरे धीरे वहीं चला जाए तो वो प्रयास वहां पर विफल होता है। और देखिए, ये गरीबी की जब बात करेंगे तो इसमें सबसे बड़ा कारक हुआ करता था वो है बीमारी, कि एक बार कोई घर में एक बीमार हो गया किसी गरीब के घर और वो फिर से लोन और इसके दुष्चक्र में फंसता हो वहीं जाता था। बीमारी को लेकर के सरकार ने पहले ही एक कदम उठाया, आज से 5-6 साल पहले जब आयुष्मान योजना की बात हुई थी उससे बहुत सारी चीजें सुधरी थी। और ये जो 25 करोड़ का आंकड़ा अभी आ रहा है कि इतने लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया, वो नियो मिडिल क्लास में और थोड़ा सा उससे नीचे में प्रवेश कर चुके हैं, अब उनकी आकांक्षाएं और बढ़ रही हैं। ये आकांक्षा बढ़ना ही जो है विकसित भारत के लिए जरूरी है।
0: जी जी, और प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र भी किया कि किस तरह से कुछ समय पहले हमारी अर्थव्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब हम बहुत ही त्वरित गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था की स्थिति में पहुंच गए हैं। और जैसा आपने भी इसका जिक्र किया कि किस तरह से 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से निकाला है, और प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि किस तरह से एक ऐसा

0: जाए जहां गरीबों के सपने भी पूरे हो पाएं। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: जैसा कि हमने सुना आशुतोष जी, जो प्रधानमंत्री ने कहा, वो एक ऐसे भारत की कल्पना कर रहे हैं कि जब 100 साल पूरे हो देश के, तो एक नए तरह का भारत हो जो बहुत विकसित हो और विकसित श्रेणी और विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो पाए। आप इस बारे में क्या और कुछ जानकारी देना चाहेंगे?
2: ये जो विकसित भारत की कल्पना की गई, और उसी समय ये भी है कि विकसित भारत क्या होगा। विकसित भारत का अर्थ ये है कि एक मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में भारत खड़ा होगा, एक आत्मनिर्भर देश के रूप में भारत खड़ा होगा। भारत की तुलना आप किसी छोटे कंट्री से नहीं कर सकते। बहुत सारे विकसित देश ऐसे हैं जहां की जनसंख्या आप देख लें तो वो पूरे के पूरे भारत में समाएंगे। तो यहाँ की सोच अलग है और उसी तरीके से इसका ग्रोथ किया जा रहा है। मुझे लगता है जो उन्होंने बात कही दिशा सही है
0: जी,
2: थोड़ी गति की बात है जो उन्होंने कही, जहां हमें गति और बढ़ानी है और जिसमें सबके प्रयास की बात की उन्होंने, ये दोनों चीजें होंगी तो मुझे लगता है दिशा और गति दोनों मिलकर जो है सो इच्छित परिणाम भी देंगे।
0: आशुतोष जी, एक और महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने कही कि किस तरह से सरकार ने विकास के लिए जो भी जरूरी फैसले हैं वो समय पे लिए, क्योंकि राजनीतिक स्थायित्व तो है और सरकार के पास ये इच्छा शक्ति है कि वो देश को विकास की ओर आगे ले जाना चाहती है। तो सुनते हैं प्रधानमंत्री ने इस बारे में क्या कहा।
1: महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, CAA का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन। एनडीए सरकार राष्ट्रहित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का यह सिलसिला और भी तेज होगा।
0: आशुतोष जी, आप और क्या इसमें जोड़ना चाहेंगे? प्रधानमंत्री ने जो बात की कि देश हित में जो भी फैसला जरूरी होगा वो ये सरकार करेगी जिससे कि देश विकास की दिशा में आगे बढ़ पाए।
2: मैं आपको एक तो एग्जाम्पल दूंगा
0: जी,
2: 370 की बात इन्होंने की, और आपको याद होगा कि जब 370 हटाया गया था तो उस समय में किस तरीके की बातें कही जा रही थी। मैं अभी अभी कश्मीर से लौट के आया, बारामूला और शोपियां जैसे जिले, आप वहां भी खुलेआम घूम सकते हैं एक सामान्य नागरिक की तरीके से, वो भी कश्मीरी नहीं, आप बाहर से जाकर के घूम सकते हैं और सुरक्षित घूम सकते हैं, लोग खुश हैं। उसी तरीके से जो 3 तलाक वाली जो बात कही, सरकार का काम सिर्फ ये नहीं होता है कि वो आपको नौकरी देते हैं, सरकार का काम ये भी होता है कि वो इस तरीके के प्रयास करे कि समाज में भी बदलाव आए
0: जी। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा करने के अवसर पर एनडीए कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अम्बरीश सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कंट्री वाइज़

आप सुन रहे थे प्रोग्राम कंट्री वाइड मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात सुन रहे हैं। पेश है फिल्मी नामों का प्रोग्राम मेरी पसंद।

आराधना फिल्म का नगमा अभी आपने किशोर कुमार की आवाज में सुना। प्रोग्राम की अगली पेशकश लता मंगेशकर को सुनिए फिल्म है असली नकली।

0: तो बता, छुपने वाले सामने
1: आ। मोहम्मद रफी की आवाज में ये नगमा आपने सुना, फिल्म थी तुम सा नहीं देखा। प्रोग्राम की अगली पेशकश शरारत फिल्म से है, आवाज है लता मंगेशकर की।

हिंदुस्तान की कसम फिल्म का नगमा अभी आपने सुना, आवाज थी मन्ना डे की। प्रोग्राम की अगली पेशकश लता मंगेशकर को सुनिए, फिल्म है पतंग।

मुकेश की आवाज में ये नगमा भी आप सुन रहे थे मॉडर्न गर्ल फिल्म से। अब सुनिए गैम्बलर फिल्म का नगमा किशोर कुमार का गाया हुआ।

आशिफ भोसले की आवाज में ये नगमा अभी आपने सुना, फिल्म थी हम सब चोर हैं। अगली पेशकश किशोर कुमार को सुनिए, फिल्म का नाम है कटी पतंग।

खबरें के साथ ही आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। लीजिए अब सुनिए मोहतरमा अर्चना सक्सेना की तहरीर करदा गीतों भरी कहानी, वतन की खुशबू।

6 साल ही तो मैं आया था कैलिफोर्निया प्रोफेसर बनकर, अपना वतन छोड़कर, पर आज तक भुला नहीं पाया हूं उसे।

मेरा नाम तो भ्रमित होना चाहिए था। तभी तो न जाने मैं क्यों चला आया परदेश। बहुत याद आती है अपने वतन की, अपने वतन के लोगों की, वो जाने पहचाने चेहरे, हंसी ठिठोली, आपसी प्यार, हमदर्दी और अपनापन। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पाहें पसारे, हर रंगारंगी को अपनी आगोश में समेटे मेरा देश। आज भी इस चमचमाते आलीशान फर्श पर बैठे हुए मेरे दिल में महकती है मेरे देश की मिट्टी की खुशबू। वो जानी पहचानी मेरे वतन की मिट्टी।

और बस अब तो खुलती जा रही हैं परत दर परत यादों की तहें, जो बहुत सजो कर रखी थी मैंने। वो बचपन जब नन्हे मुन्ने थे हम, स्कूल में दोस्तों के साथ 15 अगस्त यानी आजादी की सालगिरह पर ही तो गाया था हमने ये गीत।

0: साथियों।
1: अरे अगस्त का महीना ही तो चल रहा है, जज्बाती हो उठा मेरा मन, यादों की बारिश में भीगता हुआ लुकता छिपता, पर कब तक बच पाता मैं खुद से। क्या कभी भुलाया जा सकता है कि कितने ही शहीदों के खून से रंगी है आजादी की दुल्हन की पोशाक, जिससे आज भी आती है खुशबू उन शहीदों की, बहादुरी की, हिम्मत की। वो वक्त जब सुभाष चंद्र बोस के एक नारे पर नौजवानों की पूरी टोली चल पड़ती थी।

वो जोश भरे दिन और उस रात की महफिल जब कॉलेज के सभी दोस्त रात को इकट्ठा हुए थे और सबके लबों पर एक ही धुन थी। तभी न जाने किसने आहिस्ता से शुरू किया था ये गाना और आवाज में आवाज मिलती चली गई थी।

आखिर मुझे भी तो करना है अपने वतन का सफर। न जाने कब कहां कैसे हुआ फैसला, मजबूत इरादे के साथ और मैं अपना सामान पैक करने लगा।

बेचैन था मन कि कब उड़ जाऊं अपने देश, और मेरे कान में गूंजने लगी नौजवानों की जोशीली आवाजें। मचल उठा मैं जल्दी से उनमें शामिल होने के लिए, कैसे मस्त होकर जिद कर रहे थे सबके सब।

0: अभी आप सुन रहे थे मोहतरमा अर्चना सक्सेना की तहरीर करदा गीतों भरी कहानी वतन की खुशबू। रावी थे एसएम नुमान और पेशकश परवीन सलाम फरीदी की थी। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: आकाशवाणी है, अब आप कलीम अहमद से खबरें सुनिए। वजीर खारजा एस जयशंकर ने मौजूदा महाजराई के दौर में मुतनव सप्लाई निजाम और बैन अवी इश्तराक में इजाफे पर जोर दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के खात्मे के लिए बातचीत में पेशरफ्त का हवाला देते हुए ईरान पर नए फौजी हमले मनसूख कर दिए हैं। तजारत वनत के वजीर पीयूष गोयल आज स्विट्जरलैंड के दो रोजा दौरे पर रवाना हो रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में एहतजाजी मुजाहरीन पर पाकिस्तानी फौज की फायरिंग में 16 अफराद हलाक और 37 जख्मी हो गए। और फुटबॉल में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के पहले मैच में मेक्सिको ने जनूबी अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा एस जयशंकर ने मौजूदा महाजराई और टकराव के असरात से निपटने के लिए मजबूत और मुतनव सप्लाई निजाम, पायदार सफारती कोशिशों और बैन अवी इश्तराक में इजाफे की जरूरत पर जोर दिया है। फिनलैंड में उभरती हुई ताकतों और नए जोग्राफियाई और सियासी मुकाबले के मौजू पर एक मुबहसे में इजहार ख्याल करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि टकराव और लड़ाई के असरात उन खित्तों से बाहर तक मुरतब होते हैं जहां पर हो रहे हैं। तवानाई की यकीनी फराहमी के बारे में डॉ जयशंकर ने यह बात दोहराई कि तवानाई के ताल्लुक से कोई भी फैसला मुल्क के मफाद को महूज खातिर रखते हुए किया जाता है और इस सिलसिले में कोई भी सरकारी खरीद कम कीमत और दस्तयाबी की सूरत हाल पर मबनी होती है। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने आज इस बात को नुमाया किया कि माली शमूलियत और इंटरप्रेन्योरशिप से लेकर तालीम, सेहत की देखभाल, सफाई सुथराई, हाउसिंग, खेलकूद, साइंस और गवर्नेंस तक खवातीन मुख्तलिफ शोबों में नुमाया किरदार अदा कर रही हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते हुए शोबों में खवातीन की बढ़ती हुई शराकत मौके की नई राहें खोल रही हैं और मुल्क भर में तरक्की के मंजरनामे को बदल रही हैं। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि पिछले 12 साल में एनडीए हुकूमत ने खवातीन की क्यादत में तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है और ये तमाम शोबों में नजर आ रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की फाल तौर पर मदद कर रही है जो खवातीन को माली तौर पर खुद मुख्तार बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। एक संस्कृत कौल का हवाला देते हुए वजीर आजम ने कहा कि मुल्क की नारी शक्ति कौम की तामीर का संगे बुनियाद है। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क की माएं, बहनें और बेटियां आज हर शोबे में अपनी गैर मामूली सलाहियतों और हुनरमंदी से भारत माता की शान बढ़ा रही हैं। एक अहम वाकये में मरकज में आसाम और नागालैंड में खाम तेल और कुदरती गैस की तलाश और पैदावार के लिए दोनों रियासतों की सरकारों के साथ तारीखी सहफरीकी मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, पेट्रोलियम के वजीर हरदीप सिंह पुरी, आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा सरमा और नागालैंड के वजीर आला नेफ्यूरियो की मौजूदगी में इस मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए गए। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि मज़कूरा मुफाहमतनामे पर दस्तखत एक तारीखी लम्हा है और इससे मुल्क में तेल और कुदरती गैस की तलाश के इम्कानात में इजाफा होगा। आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि आसाम और नागालैंड के दरमियान सरहद का मामला तवील अरसे से तस्फिया तलब है और इसकी वजह से खित्ते में मौजूद कुदरती वसाइल को मुल्क के लिए बरवेकार नहीं लाया जा सका है। नागालैंड के वजीर आला ने फ्यूरियो ने भी सहफरीकी मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए जाने को एक तारीखी संगे मील से ताबीर किया। मरकज ने साइबर मुजरिमों की तरफ से इस बढ़ते हुए खतरे के बारे में एडवाइजरी जारी की है कि वो सिक्योरिटी निजाम से बचते हुए माली बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए मसनू जहानत का इस्तेमाल कर रहे हैं। उम्र दाखिला की वजारत के तहत भारतीय साइबर जराइम तालमेल मरकज की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी के मुताबिक साइबर मुजरिम डीप फेक वीडियो और मसनू शनाख्त तैयार करने के लिए एआई का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के खात्मे के लिए बातचीत में पेशरफ्त का हवाला देते हुए ईरान पर नए फौजी हमले रोक दिए हैं। इससे चंद घंटे कबल उन्होंने ईरान की तेल सनत का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की धमकी दी थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान के आला सतह के रहनुमाओं के साथ बातचीत में पेशरफ्त हुई है और इसीलिए अचानक ये तब्दीली हुई है। सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जंग के खात्मे के लिए समझौता करीब करीब मुकम्मल हो गया है और यूरोप में खत्मे हफ्ता पर इस समझौते पर दस्तखत किए जाने की उम्मीद है। सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में ओवल ऑफिस में ये बात कही। तजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल आज स्विट्जरलैंड के दो रोजा दौरे पर रवाना हो रहे हैं। दौरे के दौरान वजीर मौसूफ स्विट्जरलैंड के सदर गाय पारमेलिन और स्विट्जरलैंड के इक्तसादी उमूर के वजीर से मुलाकात करेंगे। जनाब गोयल स्विट्जरलैंड की दवासाजी की अहम कंपनियों के नुमाइंदों से भी बातचीत करेंगे। तजारत और सनत की वजारत के मुताबिक इस दौरे से भारत और स्विट्जरलैंड के दरमियान इकतसादी शराकतदारी मुस्तहकम होगी और भारत और यूरोप के दरमियान आजाद तजारती एसोसिएशन EFTA तजारत और इकतसादी शराकतदारी से मुतालिक माहदे के नफाज के लिए बातचीत में सहूलत पैदा होगी। भारतीय हुकूमत खलीज के खत्ते में बदलती हुई बहरी सलामती की सूरत हाल के पेश नजर भारतीय मल्लाहों के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने के लिए आला तरीन सतह पर चौकसी बरत रही है। बंदरगाहों जहाजरानी और आबी गुजरगाहों की वजारत ने एक बयान में कहा है कि जहाजरानी से मुतालिक डायरेक्टोरेट जनरल ने भारतीय और गैर मुल्की परचमबरदार जहाजों पर खिदमात अंजाम देने वाले तमाम भारतीय मल्लाहों को जो तनाजात से मुतासर समुन्द्री इलाकों से गुजर रहे हैं उन्हें इंतहाई मोहतात रहने की हिदायत दी है। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज दिल्ली कौमी राजधानी खत्ते में कई मुकामात पर गरज चमक के साथ औसत बारिश होने की पेशगोई की है। हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब राजस्थान के कुछ हिस्सों हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी इसी तरह का मौसम रहने का इम्कान है। मौसमियात महकमे के मुताबिक शुमाल मशरकी भारत में भी गरज चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश के बाद हिस्सों आसाम मेघालय साहिली कर्नाटक केरलम और माहे में तेज बारिश होने की पेशगोई की गई है। इसके अलावा अंडमान निकोबार जजायर आंध्र प्रदेश बिहार कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों झारखंड मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी खत्ते और सिक्किम में भी औसत से लेकर शदीद बारिश होने का इम्कान है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में ईदगाह ग्राउंड में पाकिस्तानी फौज ने हजारों गैर मुसल्लह एहतजाजी मुजाहरीन पर AK-47 राइफलों से फायरिंग कर दी जिसमें 16 अफराद हलाक और 37 जख्मी हो गए। अगरचे यह मुजाहरा कल पुराने तरीके से शुरू हुआ।

0: मिल्कियत वाली तेल और गैस कंपनी पर पाबंदी आयद कर दी है, जिससे हवाना पर दबाव में मजीद इजाफा हो गया है। ट्रंप इंतजामिया ने क्यूबा की कम्युनिस्ट हुकूमत पर इल्जाम लगाया है कि वो तवानाई के वसाइल को तसल्लुत बरकरार रखने और अपनी क्यादत को फायदा पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल ने ओमान के साहिल के करीब पलाओ के परचम बरदार एक टैंकर पर होने वाले हमले की मजम्मत की है, जिसमें तीन भारतीय मल्लाह हलाक हो गए। फीफा वर्ल्ड कप 2026 कल रात शानदार इफ्तिताही तकरीब के साथ मेक्सिको सिटी में शुरू हुआ। पहले मैच में मेक्सिको ने जनूबी अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया। खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर ने मौजूदा महाज़ारई के दौर में मुतनव्वे सप्लाई निज़ाम और बैन-अल-अक़वामी इश्तराक में इजाफे पर जोर दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के खात्मे के लिए बातचीत में पेशरफ्त का हवाला देते हुए ईरान पर नए फौजी हमले मनसूख कर दिए हैं। तजारत और सनअत के वजीर पीयूष गोयल आज स्विट्जरलैंड के दो रोज़ा दौरे पर रवाना हो रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में एहतजाजी मुजाहरीन पर पाकिस्तानी फौज की फायरिंग में 16 अफराद हलाक और 37 जख्मी हो गए। और फुटबॉल में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के पहले मैच में मेक्सिको ने जनूबी अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। अब पेश खिदमत है फिल्मी दोगानों पर मबनी प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा।

0: और सनू के साथ ये थी अलका याग्निक, फिल्म थी कसूर। फिल्मी दुकानें आप आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। ये प्रोग्राम अभी जारी रहेगा। वक्त हो गया है तारीख साज प्रोग्राम का। आज का मौजू है हिंदुस्तानी मौसीकी।
1: हिंदुस्तानी मौसीकी की इब्तदाई तारीख वेदों के अहद से शुरू होती है। कहा जाता है कि अवली मौसीकार के हाथ में वीणा थी और उसने जो साज सुर निकाले उनसे फितरत को मिजाज और अंदाज में सराय। तारीख के मुख्तलिफ अदवार में

बाबुल सुप्रियो के साथ आपने सुना अलका याग्निक को। फिल्म का नाम था चोरी चोरी चुपके चुपके। इसके साथ ही फिल्मी नगमों का ये प्रोग्राम दिल्ली सुर मेरा तुम्हारा अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर हमारे नशरियात जारी हैं। अब आलमी खबरें नशर की जाएंगी। ये आकाशवाणी है। अब आप आसिया मेमुना से आलमी खबरें सुनिए। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने मौजूदा महाजराई के दौर में मुतनव्वे सप्लाई निजाम और बैन अलावामी इश्तराक में इजाफे पर जोर दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के खात्मे के लिए बातचीत में पेशरफ्त का हवाला देते हुए ईरान पर नए फौजी हमले मंसूख कर दिए हैं। तजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल आज स्विट्जरलैंड के दो रोजा दौरे पर रवाना हो रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में एहतजाजी मुजाहिरीन पर पाकिस्तानी फौज की फायरिंग में 16 अफराद हलाक और 37 जख्मी हो गए। और फुटबॉल में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के पहले मैच में मैक्सिको ने जनूबी अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा एस जयशंकर ने मौजूदा महाजराई और टकराव के असरात से निपटने के लिए मजबूत और मुतनव्वे सप्लाई निजाम, पायदार सिफारती कोशिशों और बैन अलावामी इश्तराक में इजाफे की जरूरत पर जोर दिया है। फिनलैंड में उभरती हुई ताकतों और नए जोग्राफियाई और सियासी मुकाबले के मौजू पर एक मुबाहिसे में इजहार ख्याल करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि टकराव और लड़ाई के असरात उन खित्तों से बाहर तक मुरतब होते हैं जहां ये हो रहे हैं। की यकीनी फराहमी के बारे में डॉ जयशंकर ने यह बात दोहराई कि तवानाई के ताल्लुक से कोई भी फैसला मुल्क के मफाद को मलहूज खातिर रखते हुए किया जाता है और इस सिलसिले में कोई भी सरकारी खरीद कम कीमत और दस्तियाबी की सूरत हाल पर मबनी होती है। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने आज इस बात को नुमाया किया कि माली शमूलियत और एंटरप्रेन्योरशिप से लेकर तालीम, सेहत की देखभाल, सफाई सुथराई, हाउसिंग, खेलकूद, साइंस और गवर्नेंस तक खवातीन मुख्तलिफ शोबों में नुमाया किरदार अदा कर रही हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते हुए शोबों में खवातीन की बढ़ती हुई शराकत मौके की नई राहें खोल रही है और मुल्क भर में तरक्की के मंजरनामे को बदल रही है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि पिछले 12 साल में एनडीए हुकूमत ने खवातीन की क्यादत में तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है और ये तमाम शोबों में नजर आ रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की फाल तौर पर मदद कर रही है जो खवातीन को माली तौर पर खुद मुख्तार बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। एक संस्कृत कॉल का हवाला देते हुए वजीर आजम ने कहा कि मुल्क की नारी शक्ति कौम की तामीर का संग बुनियाद है। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क की मायें, बहनें और बेटियां आज हर शोबे में अपनी गैर मामूली सलाहियतों और हुनरमंदी से भारत माता की शान बढ़ा रही हैं। एक अहम वाकये में मरकज ने आसाम और नागालैंड में खाम तेल और कुदरती गैस की तलाश और पैदावार के लिए दोनों रियासतों की सरकारों के साथ तारीखी सह फरीकी मफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, पेट्रोलियम के वजीर हरदीप सिंह पुरी, आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा सरमा और नागालैंड के वजीर आला नेफ्यू रियो की मौजूदगी में इस मफाहमतनामे पर दस्तखत किए गए। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि मजकूरा मफाहमतनामे पर दस्तखत एक तारीखी लम्हा है और इससे मुल्क में तेल और कुदरती गैस की तलाश के इम्कानात में इजाफा होगा। आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि आसाम और नागालैंड के दरमियान सरहद का मामला तवील अरसे से तस्वीर तलब है और इसकी वजह से खित्ते में मौजूद कुदरती वसाइल को मुल्क के लिए बरूएकार नहीं लाया जा सका है। नागालैंड के वजीर आला नेफ्यू रियो ने भी सह फरीकी मफाहमत नामे पर दस्तखत किए जाने को एक तारीखी संगी मील से ताबीर किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के खात्मे के लिए बातचीत में पेशरफ्त का हवाला देते हुए ईरान पर नए फौजी हमले रोक दिए हैं। इससे चंद घंटे कबल उन्होंने ईरान की तेल सनद का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की धमकी दी थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान के आला सतह के रहनुमाओं के साथ बातचीत में पेशरफ्त हुई है और इसीलिए अचानक ये तब्दीली हुई है। सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जंग के खात्मे के लिए समझौता करीब करीब मुकम्मल हो गया है और यूरोप में खत्म हफ्ता पर इस समझौते पर दस्तखत किए जाने की उम्मीद है।
सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में ओवल ऑफिस में ये बात कही। अमेरिका ने क्यूबा की सरकारी मिल्कियत वाली तेल और गैस कंपनी पर पाबंदी आयद कर दी है, जिससे हवाना पर दबाव में मजीद इजाफा हो गया है। ट्रंप निजामिया ने क्यूबा की कम्युनिस्ट हुकूमत पर इल्जाम लगाया है कि वो तवानाई के वसाइल को तसल्लुत बरकरार रखने और अपनी कयादत को फायदा पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा कि क्यूबा की सरकारी मिल्कियत वाली तवानाई की कंपनी यूनियन क्यूबा पेट्रोलियो को सदर डोनाल्ड ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल किया गया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अकवामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल आर्सेनियो डोमिंगोज ने ओमान के साहिल के करीब पलाऊ के परचम बरदार एक टैंकर पर होने वाले हमले की मजम्मत की है, जिसमें 3 भारतीय मल्लाह हलाक हो गए। अकवामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान स्टीफन दुजारिक ने कहा कि जनाब गुतेरेस को खित्ते में मुसलसल बढ़ती हुई कशीदगी पर सख्त तशवीश है। इधर इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल ने हर हाल में मल्लाहों, शहरी जहाजरानी और इसकी आजादी के तहफ्फुज की जरूरत पर जोर दिया है। खलीज के खित्ते में बदलती हुई बहरी सलामती की सूरत हाल के पेश नजर भारतीय मल्लाहों के तहफ्फुज को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत आला तरीन सतह पर चौकसी बरत रही है। बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों की वजारत ने एक बयान में कहा है कि जहाजरानी से मुतालिक डायरेक्टोरेट जनरल ने भारतीय और गैर मुल्की परचम बरदार जहाजों पर खिदमात अंजाम देने वाले तमाम भारतीय मल्लाहों को जो तनाजियात से मुतासर समुद्री इलाकों से गुजर रहे हैं उन्हें इंतहाई मोहतात रहने की हिदायत दी है। तिजारत और सनअत के वजीर पीयूष गोयल आज स्विट्जरलैंड के 2 रोजा दौरे पर रवाना हो रहे हैं। दौरे के दौरान वजीर मौसूफ स्विट्जरलैंड के सदर गाय पमलिन और स्विट्जरलैंड की इकतसादी उमूर की वजीर हेलेन पुटलिगर आर्टियाडा से मुलाकात करेंगे। जनाब गोयल स्विट्जरलैंड की दवासाजी की अहम कंपनियों के नुमाइंदों से भी बातचीत करेंगे। तिजारत और सनअत की वजारत के मुताबिक इस दौरे से भारत और स्विट्जरलैंड के दरमियान इकतसादी शराकतदारी मुस्तहकम होगी और भारत और यूरोप के दरमियान आजाद तिजारती एसोसिएशन EFTA तिजारत और इकतसादी शराकतदारी से मुतालिक मुआहदे के निफाज के लिए बातचीत में सहूलत पैदा होगी। मरकज ने साइबर मुजरिमों की तरफ से इस बढ़ते हुए खतरे के बारे में एडवाइजरी जारी की है कि वो सिक्योरिटी निजाम से बचते हुए माली बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए मसनूई जहानत का इस्तेमाल कर रहे हैं। उमूर दाखिला की वजारत के तहत भारतीय साइबर जराइम तालमेल मरकज की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी के मुताबिक साइबर मुजरिम डीप फेक वीडियो और मसनूई शिनाख्त तैयार करने के लिए AI का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में ईदगाह ग्राउंड में पाकिस्तानी फौज ने हजारों गैर मुसल्ह एहतजाजी मुजाहरीन पर AK-47 राइफलों से फायरिंग कर दी, जिसमें 16 अफराद हलाक और 37 जख्मी हो गए। अगरचे ये मुजाहरा कल पुरअमन तरीके से शुरू हुआ था, जिसमें सस्ता आटा, चावल, बिजली और बुनियादी

0: तकरीब के साथ मैक्सिको सिटी में शुरू हुआ। पहले मैच में मैक्सिको ने जनूबी अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया। खेल के 90वें मिनट में जूलियन क्योनोरॉन्स ने मैक्सिको के लिए पहला गोल किया। बाद में राउल जिमेनेज ने 67वें मिनट में गोल करके स्कोर मैक्सिको के हक में 2-0 कर दिया। इससे कबल फीफा वर्ल्ड कप की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में आलमी मौसीकी और सकाफत की झलक पेश की गई, जिसमें बर्नाबॉय और शकीरा ने शाही टीम को मसहूर कर दिया। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने मौजूदा महाजराई के दौर में मुतनव्वे सप्लाई निजाम और बैन अल-अक़वामी इश्तराक में इजाफे पर जोर दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के खात्मे के लिए बातचीत में पेशरफ्त का हवाला देते हुए ईरान पर नए फौजी हमले मंसूख कर दिए हैं। तिजारत और सनअत के वजीर पीयूष गोयल आज स्विट्जरलैंड के 2 रोजा दौरे पर रवाना हो रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में एहतजाजी मुजाहिरीन पर पाकिस्तानी फौज की फायरिंग में 16 अफराद हलाक और 37 जख्मी हो गए। और फुटबॉल में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के पहले मैच में मैक्सिको ने जनूबी अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

मोहन वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। पेश है अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। वजीर खारजा एस जयशंकर ने मौजूदा मुहाजराए के दौर में मुतनव्वे सप्लाई निजाम और बैनुल अक्वामी इश्तराक में इजाफे पर जोर दिया है।

अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग के खात्मे के लिए बातचीत में पेशरफ्त का हवाला देते हुए ईरान पर नए फौजी हमले मनसूख कर दिए हैं। तिजारत और सनअत के वजीर पीयूष गोयल आज स्विट्जरलैंड के दो रोजा दौरे पर रवाना हो रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में एहतजाजी मुजाहिरीन पर पाकिस्तानी फौज की फायरिंग में 16 अफराद हलाक और 37 जख्मी हो गए। और फुटबॉल में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के पहले मैच में मैक्सिको ने जनूबी अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया। ये थी अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक दिन के 1:15 होने को है। हमारी पहली मजलिस की नशरियात का वक्त अब खत्म होता है। दिन में 3 बजे उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशरियात के साथ हम एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की जो हमारी फिल्म है वो है मिलन, और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। श्रोताओं, अब जिक्र करते हैं मिलन के कलाकारों की। फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे सुनील दत्त, नूतन, यमुना, प्राण और देवेन वर्मा। वहीं सहयोगी कलाकारों में थे सुरेंद्र, श्यामा मुकरी, लीला मिश्रा और डेविड अब्राहिम जैसे अनुभवी कलाकार, जिन्होंने अपने छोटे छोटे लेकिन अहम किरदारों से कहानी को और मजबूत बनाया। अगर बात करें नूतन की, तो वो अपने सहज और स्वाभाविक अदाकारी के लिए जानी जाती है। मिलन में उन्होंने राधा का किरदार निभाया। राधा की मासूमियत, उसकी भावनाएं, उसके मन का दर्द, उसका प्रेम, नूतन ने इन्हें इतने सादे और असरदार अंदाज में निभाया कि राधा का किरदार दर्शकों के दिलों में उतर गया। वहीं बात करें सुनील दत्त की, तो उस समय अपने गंभीर और दमदार भूमिकाओं के लिए पहचाने जाते थे, लेकिन मिलन में उन्होंने गोपी नाम के एक भोले भाले नाविक का किरदार निभाया। उनके इस सरल और भावुक रूप को दर्शकों ने खूब पसंद किया, और ये किरदार आज भी उनकी यादगार भूमिकाओं में गिनी जाती है। एक खास बात ये भी है कि फिल्म में नूतन और सुनील दत्त दोनों दोहरी भूमिकाओं में नजर आए थे। 1960 के दशक में नूतन और सुनील दत्त की जोड़ी दर्शकों के लिए काफी लोकप्रिय थी। मिलन में दोनों की सादगी भरी केमिस्ट्री और भावनात्मक दृश्यों ने दर्शकों का दिल जीत लिया। यही वजह है कि मिलन दोनों कलाकारों के करियर की यादगार फिल्मों में गिनी जाती है। इस फिल्म की सफलता के पीछे इसकी कहानी और संगीत के साथ साथ इन दोनों कलाकारों की शानदार जुगलबंदी का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो चलिए चलते हैं और सुनते हैं इसी फिल्म से एक और प्यारा सा गीत।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की जो फिल्म है वो है बहुचर्चित फिल्म मिलन। दोस्तों अब बात करते हैं मिलन की कहानी की। मिलन की कहानी शुरू होती है राधा देवी और गोपीनाथ की शादी से। शादी के बाद दोनों घूमने निकलते हैं और एक नदी पार करते समय गोपीनाथ को अचानक कुछ अजीब अजीब याद आने लगता है। वह बीवी जी, एक पुराने महल और एक लड़की गौरी की बातें करने लगता है। तभी एक बूढ़ी औरत वहां आती है। गोपी तुरंत उसे गौरी के रूप में पहचान जाता है और वो भी उसे पहचान लेती है और बताती है कि इस जीवन में साथ रहने के लिए ही तुम दोनों ने पुनर्जन्म लिया है। वह उनकी कहानी सुनाना शुरू करती है। यहीं से फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है। पिछले जन्म में गोपी एक सीधा साधा नाविक था जो गंगा किनारे अपनी दादी के साथ रहता था। वहीं राधा एक जमींदार की बेटी थी। रोज नदी पार करते करते दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन जाता है। दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं, लेकिन समाज और हैसियत

शख्सियत की दीवारें उनके रास्ते में खड़ी हो जाती हैं। इसी बीच राधा की शादी किसी और से तय हो जाती है। राधा अपने मन की बात कह नहीं पाती और अपनी किस्मत मानकर शादी कर लेती है, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ ही समय बाद वो विधवा होकर अपने मायके लौट आती है। उधर गोपी हमेशा की तरह उसका सहारा बनता है। दोनों के बीच का अपनापन लोगों को खटकने लगता है और गांव में तरह तरह की बातें होने लगती है। तब हालात बहुत मुश्किल वाले हो जाते हैं। तब राधा और गोपी साथ रहने का फैसला करते हैं और गांव छोड़कर निकल पड़ते हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। नदी पार करते समय उनकी जो नाव थी वो भंवर में फंस जाती है और दोनों की मौत हो जाती है, लेकिन सच्चा प्यार फिर जन्म लेता है। इसके साथ ही फिल्म फ्लैशबैक से बाहर आती है वर्तमान समय में। बूढ़ी हो चुकी गौरी उन्हें बताती है कि वे दोनों उसी अधूरे प्रेम को पूरा करने के लिए इस जन्म में फिर से मिले हैं। गौरी उन्हें विवाहित जोड़े के रूप में देखकर खुश होती है और अपने गोपीनाथ के हाथों में दम तोड़ देती है। यही है मिलन की कहानी, एक ऐसा प्रेम कहानी जो बिछड़ना जरूरी है लेकिन खत्म नहीं होता। एक ऐसा प्रेम जो समय, समाज और जन्म मृत्यु की सीमाओं से भी आगे निकल जाता है।

आकाशवाणी दिल्ली के इंडिपेंडेंट चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से और मैं आपके साथ हूं आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। श्रोताओं, बिलन की कहानी जितनी दिल को छू लेने वाली थी उनका संगीत भी उतना ही मधुर और यादगार था। इस फिल्म का संगीत उस समय का सबसे बड़ा यूएसपी था। फिल्म का संगीत दिया था प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। उनके शानदार संगीत को दर्शकों और समीक्षकों ने खूब पसंद किया। गीत लिखा था मशहूर गीतकार आनंद बख्शी ने। फिल्म के गीतों में कठिन उर्दू या साहित्यिक हिंदी के बजाय आनंद बख्शी ने बेहद सरल भाषा का प्रयोग किया था। उनके इसी सरल शब्दों का जादू ने मिलन के गीतों ने उनके करियर को नई ऊंचाइयां दी और उन्हें हिंदी फिल्मी जगत के सबसे सफल गीतकारों में शामिल कर दिया। वहीं अगर आवाजों की बात करें तो लता मंगेशकर और महान गायक मुकेश की जोड़ी ने इन गीतों को गाया। यही वजह है कि मिलन के गीत आज भी सुनने वालों के दिलों में वही ताजगी और मिठास खोल देते हैं जो लगभग 6 दशक पहले घोला करते थे। इस फिल्म का एक गाना आज दिल पे कोई जोर चलता नहीं को लंबाई ज्यादा होने की वजह से बाद में फिल्म से हटा दिया गया। इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग गोदावरी नदी और उसके तट के इर्द गिर्द हुई थी और उस साल ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। तो चलिए चलते हैं एक और गीत की ओर।

0: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्र प्रेस चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से और मैं आपके साथ हूं आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। और आज की जो फिल्म है वो है मिलन। हमारे पास हमारे श्रोताओं के ढेर सारे मेल आ गए हैं, उन्हें भी हम पढ़ लेते हैं। पहला मेल आया हीरामणि वर्मा दंतरेगी भाटापारा से और ये है नेहरू चौक से अनिता जाधव, सोनल प्रसाद और ये है सुरेश जी का। और ये है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा और पूनम गगनेजा का। वडिंगा खेड़ा पंजाब से मिंटू, पिंकी और आरती का। और गांव नथाना पंजाब से हरिजिंदर, छिंदा, जसवीर, सीता और गीता का। और ये मेल आया है हमारे पास मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़ की और ये लिखते हैं आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लग रहा है, गाना जानकारी रोचक किस्से बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, उत्तम और बेहतरीन प्रस्तुतिकरण के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं। और ये है गांव हीरावली वाली फजीका पंजाब से सुभाष, विमला, इंदु, पार्वती, हिमांशु और हिमांशु है ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। और ये हैं भूषण खेड़ा, विष्णु खेड़ा, विशाल खेड़ा, शालिनी और इनके साथ हैं दीवा नशी खेड़ा फजीका पंजाब से। और ये हैं नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा, अदिति, राधे, दीपक और अंकु राघव। और ये हैं सुर संगम रेडियो श्रोता वीरमगांव गुजरात से अजीत भावसागर, प्रमिला बहन, भावेश कुमार, सनी, जैमिनी कुमार और हेतल जैन, कृष्णा जैन, राकेश जैन इनके साथ जुड़े हुए हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा और पूजा परिहार है। आज आपका आप जो चर्चा कर रहे हैं अपने दौर 1966 की बेहतरीन फिल्म मिलन, ये 67 की फिल्म है मिलन, जिसके अभिनय किया था सुनील दत्त और नूतन जी ने, बिल्कुल सही बात। और ये है संबलपुर फाकरे से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। तो श्रोताओं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं मिलन को हिंदी सिनेमा की उन चुनिंदा फिल्मों में गिना जाता है जिनकी कहानी, अभिनय और संगीत तीनों ने मिलकर एक अमिट छाप छोड़ी। तो दोस्तों आज हमने बात की उस फिल्म की जिसने प्यार, बिछड़न और पुनर्जन्म की कहानी को बड़े ही खूबसूरत ढंग से पर्दे पर उतारा, साथ ही याद किए इसके वो मधुर गीत जो आज भी सुनने वालों के दिलों में बसे हुए हैं। तो चलिए कार्यक्रम का आखिरी गीत भी सुन लेते हैं।
1: हम हो गए परदेसी।

श्रोताओं, उम्मीद है पुनर्जन्म और अमर प्रेम की इस अनोखी कहानी का ये सफर आपको पसंद आया होगा। फिर मुलाकात होगी हिंदी सिनेमा के किसी और सुनहरे किस्से के साथ। तब तक के लिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी को अनुमति दीजिए और आप अपना ख्याल रखिएगा और सुनते रहिएगा गीत, गुनगुनाते रहिएगा संगीत सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। दिन के 1:40 होने वाले हैं, आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार,

0: अपराध नाम मैं शरद जीत कौर पहला इस बुलेटिन दिया खासकता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना कि औरतें विज्ञान शासन के नवीनता विच भारत के विकास में अगे बढ़ा रही ने राष्ट्रीय प्रीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी 2026 प्रीक्षार्थियों प्रति सुखावे बदलाव पेश की तो म्याद बधाई पहले अंक में सोधिया प्रधानमंत्री अमित शाह ने अमरनाथ यात्रा दी तैयारियों बारे उच्च पदरी मीटिंग की प्रधानगी की थी। सरकार ने संस्थागत व्यापारक खरीदारों के पेट्रोल पंपा को ईंधन खरीदने से रोक लगाई। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने प्याज की खरीदी समीक्षा की थी जो पूरी कीमत की सोच की थी तो आरपा का आईसीसी 2020 विश्व कप आज को शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी फल से जोर देता कि माली समावेश और उद्यमशीलता को लेकर शिक्षा सेहत सेवाएं सैनिटेशन रिहायश सुविधा विज्ञान प्रशासन तक औरतें वक्त वक्त क्षेत्रों में प्रमुख भूमिका निभा रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी वर्ग के उभर रहे क्षेत्रों में औरतों की बढ़ रही हिस्सेदारी मौका एक नई राह खोल रही है तो देश भर में विकास बदल रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 साल में एनडीए सरकार ने औरतों की अगुवाई वाले विकास में अगे बढ़ाने का काम किया तो इस सारे क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार स्वयं सहायता समूहों की सरगर्मी हमायत कर रही है जो औरतों ने माली तौर से स्वतंत्र बनाने में बहुत अगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सम्मान मौके के सशक्तिकरण के आधारित सरकार के अपनों ने अजिहा माहौल बनाने में मदद की थी जिसमें औरतें अपनी पूरी समर्थन में महसूस कर सकें और राष्ट्र निर्माण में वधेरे मजबूती योगदान पा सकें। श्री मोदी ने भारत की नारी शक्ति के विज्ञान पुलाड के नवीनता वर्ग क्षेत्रों में अपने चार सदे हुए देख के खुशी प्रगटाई। उन्होंने कहा कि देश की नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की नींव है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की मावं भेड़ा पुतलियां अज हर खेत्र अपनी असाधारण प्रतिभा के हुनर नाल भारत माता की शान बढ़ा रही ने। राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने 21 जून में होने वाली नीट यूजी मुड़ परीक्षा लिए परीक्षा की मियाद 15 मिनट बढ़ा के 195 मिनट कर दी है। नवा समा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5 बजकर 15 मिनट तक होगा। सोधी हुई परीक्षा की मियाद में लाजमी परीक्षा अमला लिए लोड़ीदा समा शामिल है। एजेंसी ने कहा कि यह सुधार पिछले कई सालों से उम्मीदवारों को प्राप्त फीडबैक के आधार पर किए गए हैं। एजेंसी ने भी कहा कि इस साल यकीनी बनाने लिए वचनबद्ध है कि नीट यूजी परीक्षा उम्मीदवारों की जरूरतों मुताबिक निरपक्ष सुरक्षित और जवाबदेह ढंग से कार्रवाई करे। पेश है रिपोर्ट।
1: एजेंसी ने प्रेजेंट पत्र के नाल प्रदान की जाने वाली रफ वर्कशीट में 2 पन्नियों तो वधा के 4 पन्नियों तक कर दिता है। इस सुधार इस फीडबैक तो बात किया गया सी कि पुराना लेआउट कुछ विद्यार्थियों खास करके खब्बे हाथ नाल लिखने वाले विद्यार्थियों लिए असुविधाजनक थी। एनटीए ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा दौरान उम्मीदवारों के अनुभव से चंगा प्रभाव पा सकते हैं। इसलिए ये उपाय लागू किए गए हैं जो कि निरपक्षता और सुरक्षा के सर्वोच्च मियारों को बनाई रखा जाता है। उम्मीदवारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वह दाखिला कार्ड और जानकारी बुलेटिन में दी गई हदायतों को ध्यान न पढ़न और परीक्षा के सुचारू संचालन लिए परीक्षा स्टाफ नाल सहयोग करन। ब्यूरो रिपोर्ट नाल आकाश।

0: मैं खबर आई जलंधर तो मैं राजेश बाली
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली विच अमरनाथ यात्रा लई तैयारियों की समीक्षा करने वास्ते एक उच्च पदरी मीटिंग की प्रधानगी कर रहे हैं। फौज मंत्री जनरल विपिन त्रिवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एसी पवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के डायरेक्टर जनरल मीटिंग में मौजूद थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई में शुरू हुई तो 28 अगस्त में सम्पूर्ण होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत सरकार आसाम के नागालैंड वालों दस्तखत किया गया त्रैतरी समझौता उत्तर पूर्व विच तहखानों से चल रहे विवाद में खत्म कर देगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट की तरह कहा कि समझौता क्षेत्र विच किले को गैस की भाली राह खोलेगा। उन्होंने कहा कि समझौता भारत की एकता की मिसाल वजो खड़ा।

बनाते मोटर मिलर्स और एक हाई स्पीड डीजल खरीदने के रोक लगा दी थी। सरकार ने कोल घरेलू पेट्रोल पंपों के अपने शुरू का पूर्णकरण कश्मीर से टकराकरण और में सप्लाई बढ़ाने श्रीगम दरमियान स्थानीय मंडली का अपने रोकने के लिए फैसला लिया गया। पेट्रोल और कुदरती गैस मंत्रालय ने

रेडियो के संचार से रहना संबंधित दूरसंचार नियम 2026 खरड़ा जनपद खिलाफ मशवरे लिए जारी की जाए। इस खरड़े का उद्देश्य पुराने टेलीग्राफ कानून 1885 के तहत टेलीविजन के रेडियो सेवा वाली जारी किए गए वक्त वक्त दिशा निर्देशों में नए दूरसंचार कानून 2023 के दायरे में शामिल करना है। नई व्यवस्था सूचना के प्रसारण मंत्रालय के निजी प्रसार का विस्तार इजाजत दूर समझौते के दस्तखत करने की जरूरत खत्म कर दी है। इस

पूछ सकती है। खपतकार मामले में राष्ट्रीय जनता कार्यकारी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल प्याज की खरीद में महसूस करें कि किसानों ने बेहतर मूल्य खरीद बनाने ली प्रयास के जनता पंडित आपके अधिकारियों ने एक मीटिंग भी प्रदान की थी। इस सोशल मीडिया पोस्ट की जोशी ने किया कि मौजूदा मंडी कीमतों के भंडार खरीद प्याज में गुणवत्ता में जरूरतों के आधार पर सबसे घट ये तीनों खरीद मूल्य 1650 रूपये प्रति क्विंटल तक सौदा किया है। मंत्री ने कहा कि खरीद में बाजार की स्थितियों मुताबिक वधेरे ब्याज के बनाने की कीमत को भी सुधार किया है।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत ने पिछले 12 साल में ख़वातीन के लिए साजगार माहौल बनाया है ताकि वो मुल्क की तामीर के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरूए कार ला सकें। वज़ीर दाखला अमित शाह ने श्री अमरनाथ जी यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए नई दिल्ली में आला सतह की एक मीटिंग की सदारत की। मरकज ने सनतों पर खुर्दा पेट्रोल पंप से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर बंदिश आयद कर दी है। अक़वामे मुत्तहिदा ने ओमान के साहिल से कुछ दूर भारतीय जहाजियों को ले जाते हुए तेल जहाजों पर हमलों की मजम्मत की है। भारत की मायानाज निशानेबाज और कोच जसपाल राणा का 49 साल की उम्र में इंतकाल हो गया है। और फीफा आलमी कप 2025 में टोरंटो में ग्रुप बी मैच में कनाडा का मुकाबला बोस्निया व हर्ज़ेगोविना से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि माली शमूलियत और एंटरप्रेन्योरशिप से लेकर तालीम, सेहत की देखभाल, सफाई सुथराई, हाउसिंग, खेलकूद, साइंस और हुक्मरानी तक ख्वातीन मुख्तलिफ शोबों में नुमाया किरदार अदा कर रही हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते हुए शोबों में ख्वातीन की बढ़ती हुई शराकत से नए मौके पैदा हो रहे हैं और मुल्क भर में तरक्की के मंजरनामे बदल रहे हैं। उन्होंने खास तौर पर कहा कि पिछले 12 साल में एनडीए हुकूमत ने ख्वातीन की क्यादत में तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है और ये तमाम शोबों में नजर आ रहा है।
1: आज भारत वीमेन लेड डेवलपमेंट की राह पर चल पड़ा।
2: हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए सारे रास्ते खोल दिए।
1: हमने करोड़ों महिलाओं के लिए शौचालय बनवाकर उनका सम्मान बढ़ाया। हमने उज्ज्वला सिलेंडर देकर उन्हें धुएं जैसी तकलीफों से भी बचाया।
2: दशकों से हमारी बहनों के पास हुनर भी था, मेहनत भी थी, लेकिन उन्हें पूंजी और अवसर नहीं मिलते। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का जो संकल्प किया था वो पूरा हो चुका है।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मजीद कहा कि हुकूमत अपनी मदद आप ग्रुपों की मदद में सरगर्म है जो ख़वातीन को माली तौर पर खुद मुख्तार बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने खास तौर पर कहा कि हुकूमत की कोशिशें वक़ार, मौकों और बाइख्तियार बनाने से वाबस्ता हैं जिनसे एक ऐसा साजगार माहौल बनाने में मदद मिली जिसमें ख़वातीन अपनी पूरी सलाहियतों को बरूए कार ला सकें और मुल्क की तामीर में मजीद मुस्तहकम अंदाज में तआवुन दे सकें। जहां मोदी ने कहा कि भारत की नारी शक्ति साइंस, खला और इख्तिरा के शोबों में भी अहम किरदार अदा कर रही है। एक संस्कृत कौल को दोहराते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क की नारी शक्ति कौम की तामीर का संगे बुनियाद है। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क की माएं, बहनें और बेटियां आज हर शोबे में अपनी गैर मामूली सलाहियतों और हुनरमंदी से भारत माता की शान में इजाफा कर रही हैं।

0: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में आज मेक्सिको के ज़ेपोपन में ग्रुप ए के एक मैच में जनूबी कोरिया ने चेक जमहूरिया को 2-1 से हरा दिया। जनूबी कोरिया का अगला मुकाबला मेक्सिको से जबकि चेक जमहूरिया का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा। इससे पहले कल रात मेक्सिको सिटी के एस्टेका स्टेडियम में खेले गए पहले मैच में मेक्सिको ने जनूबी अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत ने पिछले 12 साल में ख़वातीन के लिए साजगार माहौल बनाया है ताकि वो मुल्क की तामीर के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरूए-कार ला सकें। वजीर दाखिला अमित शाह ने शहरी श्री अमरनाथ जी यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए नई दिल्ली में आला सतह की एक मीटिंग की सदारत की। मरकज ने सनअतों पर खुर्दा पेट्रोल पंप से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर बंदिश आयद कर दी है। अक़वामे मुत्तहिदा ने ओमान के साहिल से कुछ दूर भारतीय जहाजियों को ले जाते हुए 13 जहाजों पर हमलों की मजम्मत की है। भारत के नायाब निशानेबाज और कोच जसपाल राणा का 49 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says government created conducive environment for women in the last 12 years to realize full potential in nation building. Home Minister Amit Shah chairs high-level meeting to review preparedness for Sri Amarnath Yatra in New Delhi. Centre restricts industries from buying petrol and diesel from retail pumps. United Nations condemns attacks on oil ships carrying Indian sailors off the coast of Oman. Indian shooting legend and coach Jasprit Rana dies at 49. And in FIFA World Cup 2026, Canada to take on Bosnia and Herzegovina in Group B clash in Toronto. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said, the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. Earlier speaking in a program, the Prime Minister noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development and this is visible across sectors.
2: आज भारत विमेन लेड डेवलपमेंट की राह पर चल पड़ा।
3: हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए सारे रास्ते खोल दिए।
2: हमने करोड़ों महिलाओं के लिए शौचालय बनवाकर उनका सम्मान बढ़ाया। हमने उज्ज्वला सिलेंडर देकर उन्हें धुएं जैसी तकलीफों से भी बचाया।
3: दशकों से हमारी बहनों के पास हुनर भी था, मेहनत भी थी, लेकिन उन्हें पूंजी और अवसर नहीं मिलते। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का जो संकल्प किया था वो पूरा हो चुका है।
1: Prime Minister Narendra Modi added that the government is actively supporting self-help groups which are going a long way in making women financially independent. The Prime Minister further underlined that the efforts of the government are rooted in dignity, opportunity and empowerment which helped in creating an environment where women can realize their full potential and contribute even more strongly to nation building. The government has restricted institutional, industrial and commercial customers from buying motor spirit and high-speed diesel from retail outlets and asked them to source their requirements from their own consumer pump. The decision has been taken to prevent local shortages amid disruptions in global supply chains caused by the ongoing crisis in West Asia. In a notification, the Petroleum and Natural Gas Ministry said the restrictions will be in place for up to 90 days. The retail outlets have been directed to sell up to 200 litres of high-speed diesel to a customer per day to prevent bulk purchase. Union Home Minister

0: chairs high-level meeting to review preparedness for Sri Amarnath Yatra in New Delhi. Centre restricts industries from buying petrol and diesel from retail pumps. United Nations condemns attacks on oil ships carrying Indian sailors off the coast of Oman. Indian shooting legend and coach Jaswal Rana dies at 49. And in FIFA World Cup 2026, Canada to take on Bosnia-Herzegovina in Group B clash in Toronto. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। और टोरंटो में फीफा विश्व कप में ग्रुप बी के मुकाबले में कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास परिदृश्य बदल रहा है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। एक संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि देश की माताएं, बहनें और बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत का गौरव बढ़ा रही है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने राज्य के पुनर्निर्माण और इसे विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया है। श्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में अब डबल इंजन सरकार है, अब पश्चिम बंगाल को भी अन्य राज्यों की तरह केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर देहरादून पहुंची। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन का दौरा करेंगी और 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। 2014 के बाद से ये प्रधानमंत्री का फ्रांस का 7वां आधिकारिक दौरा है। फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति

0: मंत्री इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ये भारत का प्रमुख नवाचार सम्मेलन है जो भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इसका उद्देश्य भारत की डीप टेक प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है।
1: काफी अरसे से जो द्विपक्षीय संबंधों में एक फोकस रहा है हमारा, किस तरह से हम इनोवेशन की तरफ ज्यादा फोकस बढ़ाएं, और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज हैं, दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम, और इसी की वजह से हम भारत इनोवेट्स यहाँ उसका आयोजन कर रहे हैं, जो कि पहली बार है कि हमने इतने बड़े पैमाने पर भारत से डीप टेक स्टार्टअप्स बाहर लाके हम एक मंच पर हम रख रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी नीस से स्लोवाकिया जाएंगे और उसके बाद G7 समिट के लिए फ्रांस के एवियन लौटेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से दो दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हो गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। श्री चौहान ने वसुधैव कुटुम्बकम की भावना को आगे बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का दृष्टिकोण शांति और सहयोग पर आधारित है। सम्मेलन का विषय है लघु किसानों, महिलाओं और युवाओं के माध्यम से भविष्य के लिए खाद्य सुरक्षा। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और महिला किसानों की भूमिका जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हो रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1650 रूपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। यह मसौदा पहले के टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वे चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने के आरोप में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया था। ओडिशा में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने आज दो वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर भुवनेश्वर में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री का पद जनता की सेवा करने का एक पवित्र अवसर है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले दो वर्षों में 121 योजनाएं लागू की गई हैं। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। यह सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया जा रहा है। राज्य मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सभी के लिए सम्मानजनक काम, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने मध्य एशिया और शंघाई सहयोग संगठन के साथ भारत की दीर्घकालिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित एससीओ सम्मेलन

0: का विषय है मध्य एशिया एससीओ का केंद्र शांति और संयुक्त विकास का क्षेत्र। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को एक निवेश प्लेटफॉर्म का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में 22,000 रूपये के निवेश पर प्रतिदिन 80,000 रूपये और प्रतिमाह 24,00,000 रूपये तक के रिटर्न का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि यह वीडियो पूरी तरह फर्जी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। यह परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। एजेंसी ने कहा कि एनटीए ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित की जाए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 प्रश्न से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए ये सुधार किया गया है। एनटीए ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दिग्गज निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि जसपाल राणा ने एक चैंपियन एथलीट और असाधारण मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्र के लिए जो योगदान दिया वो प्रेरणादायक है। और अब खेल खबरों के साथ है जया भारती।
2: फीफा वर्ल्ड कप में दक्षिण कोरिया ने चेक गणराज्य को 2-1 से हरा दिया है। मैक्सिको के ज़ापोपान में खेले गए रोमांचक ग्रुप ए मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने जीत के साथ महत्वपूर्ण 3 अंक हासिल किए। दक्षिण कोरिया का अगला मुकाबला सह मेजबान मैक्सिको से होगा, जबकि चेक गणराज्य ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगा। इससे पहले मैक्सिको सिटी में खेले गए उद्घाटन मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया था। आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कैनेडा का सामना बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। दोनों देश विश्व कप में पहली बार आमने सामने होंगे। इसके बाद ग्रुप चरण के मुकाबले में कैनेडा का सामना कतर और स्विट्जरलैंड से होगा। एक महीने तक चलने वाले फीफा विश्व कप 2026 का भव्य उद्घाटन कल रात मैक्सिको सिटी में हुआ। रंगारंग उद्घाटन समारोह में शकीरा और बर्ना बॉय ने टूर्नामेंट के आधिकारिक गीत दाई दाई से समा बांधा। पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान की अकानी यामागुची से होगा। यामागुची ने क्वार्टर फाइनल में आज भारत की तन्वी शर्मा को 21-14, 21-14 से शिकस्त दी।

0: अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। और अब समय हुआ है आपके पसंदीदा रेडियो कार्यक्रम एक ही कलाकार। आदाब सत श्री अकाल, स्वीकार कीजिए आपके अपने दोस्त और होस्ट इस कार्यक्रम की रैना तंवर का खुशनुमा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही कार्यक्रम एक ही कलाकार में। और आज जैसा कि कार्यक्रम के बारे में आप जानते ही हैं, हम बात करते हैं किसी एक कलाकार की, फिल्मी जगत से जुड़े हुए किसी भी कलाकार के बारे में। तो आज हम लेकर आए हैं हिंदी सिनेमा की उस अदाकारा को जिनकी अदाकारी ने 60 के दशक में धूम मचा दी थी। जी हाँ, हम नाम नहीं बताएंगे। हिंदी सिनेमा में हर कोई अपनी पहचान बनाने का मोहताज होता है, लेकिन कुछ हीरे ऐसे होते हैं जो सदियों तक अपनी चमक बरकरार रखते हैं, युगों युगों तक उनके नाम के चर्चे कायम रहते हैं। जी हाँ, आज हम आपको बॉलीवुड की एक ऐसी हस्ती और ऐसी नगीना से रूबरू कराने जा रहे हैं जो अपने अभिनय के अलावा अपनी हेयर स्टाइल से भी लोगों को बहुत लोकप्रिय रही, बहुत ही दिल को लुभाने वाली रही। मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोता गेस कर चुके होंगे, तो देर किस बात की। हम जिस अभिनेत्री की बात कर रहे हैं वो आपको पहचानना है, क्योंकि रहना है तो कुछ तो आपको कहना है। तो गेस कीजिए और हमें बताइए कि किसकी हम बात कर रहे हैं। ईमेल आईडी है ip.radiodelhi@gmail.com। आपके मैसेज का, संदेश का हमें रहेगा इंतजार। तब तक सुनते हैं ये वाला इनका गीत।

जी हाँ, आप सभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आ चुके हैं, बहुत सारे मैसेज हमें आ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम को पसंद करने का। और सबसे पहले जिसने पहचाना और हमें मैसेज किया, उनका सही जवाब उन्होंने दिया और शो के हमारे फेवरेट श्रोता का खिताब भी आज उन्होंने लिया। उनका नाम है धर्मेंद्र छिपा जी, भोपालगढ़ राजस्थान से। धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा और पूजा परिहार को बहुत बहुत बधाई। वैसे हमारे सभी श्रोता हमारे फेवरेट है। तो हम बात कर रहे हैं जिनकी, वो है साधना शिवदसानी। यस, 2 सितंबर 1941 को पाकिस्तान के कराची में जन्मी अभिनेत्री साधना अपने माता पिता की अकेली संतान थी। बंटवारे के बाद उनका पूरा परिवार मुंबई आ बसा और अभिनेत्री के पिता को उस समय साधना बोस बहुत पसंद थी, इसलिए उन्होंने अपनी पसंद का नाम उन्हें दिया, अपनी बेटी को दिया। बहुत कम ही लोग जानते हैं कि अभिनेत्री साधना का कपूर खानदान से भी रिश्ता है। जी हाँ, और साधना के पिता और एक्ट्रेस बबीता के पिता हरी शिवदसानी सगे भाई थे। तो हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे, आपके मैसेज हमें आते रहेंगे, इसी तरह से प्यार बांटते रहिए, भेजते रहिए और सुनते हैं अगला ये नगमा।

मेरा झुमका, यस मेरा भी झुमका गिरा रे। मुझे इस गाने में बहुत ही मजा आता है और मैं बहुत डांस करती हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे श्रोता भी इस गाने को पसंद कर रहे होंगे और थोड़ा सा ठुमका तो उन्होंने भी लगाया होगा। खैर, हम बात कर रहे हैं साधना ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत की थी और साधना अभिनेता राज कपूर की फिल्म श्री 420 में एक गाना मुड़ मुड़ के ना देख के कोरस में भी नजर आई थी। इसके दो साल बाद फिल्म अम्बाणा में लीड रोल में काम किया और बाद में प्रोड्यूसर शदाधर मुखर्जी की नजर साधना की मैगजीन पर उनकी तस्वीरों पर पड़ी और उन्होंने साधना जी को पहला मौका अपनी फिल्म लव इन शिमला में दिया। और इसी तरह से हमें बहुत सारे मैसेज आप कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। दिग्दर्शन कविता गौड़ जी का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें मैसेज किए और इसी तरीके से हमें मैसेज करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। स्वर्ण सिंह, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरनाल, अविराज और इसी तरीके से हमें मैसेज कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते हैं ये वाला नगमा।

और जिन्होंने अभी अभी रेडियो ऑन किया है उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार, जिसमें मेजबान मैं रैना तंवर आप लेकर आई है एक प्रतिभाशाली अदाकार साधना शिवदासानी जी को। तो मेल करना ना भूलें और बताएं कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लग रहा है, क्योंकि आपकी प्रतिक्रियाओं से ही हम अपना कार्यक्रम में सुधार करेंगे और आपको अच्छा लग रहा होगा तो हमें भी ये एक उत्साह मिलता है कि हम आपके लिए एक अच्छा कार्यक्रम लेते आए हमेशा के लिए। तो जहां तक हम साधना के हेयर स्टाइल के पीछे एक भी बहुत प्यारी सी कहानी है, कहते हैं ना कि हर चीज के पीछे कुछ कहानी होती है, तो साधना के हेयर स्टाइल के पीछे भी एक अनकही कहानी छुपी है। दरअसल शूटिंग के दौरान डायरेक्टर आर के नैयर ने अभिनेत्री का माथा छिपाने के लिए हॉलीवुड एक्ट्रेस ऑडी हेपबर्न की तरह साधना जी का हेयर स्टाइल कटवा दिया। इसके बाद तो ये हेयर स्टाइल इतना पॉपुलर हुआ कि लोगों ने तो इसका नाम ही साधना कट रख दिया और इसके प्रभावित होकर बहुतों ने कट भी करवाए। यहां तक कि मैं सच बताऊं, मैं अपना भी सच बताना चाहती हूँ कि मैंने भी स्कूल टाइम में अपनी जो हेयर स्टाइल है बिल्कुल साधना जी की तरह कटवा लिए थे और लोग मुझे ना साधना कहकर संबोधित करने लगे थे और ये मेरे लिए बड़े ही गौरव की बात रही। और खैर छोटे मुंह बड़ी बात बोल दी, लेकिन बहुत अच्छा लगता है जब हम किसी की तरह करते हैं और लोग हमें उससे संबोधित करते हैं। खैर आप बताइए, आप में से किस किस ने ऐसी कटिंग करवाई या अपने बच्चों की करवाई, क्योंकि इससे इंस्पायर होकर बहुत लोगों ने करवाई थी जैसे मैंने करवाई। तो हमें मेल करके बताएं और हमारा ईमेल आईडी ip@gmail.com आपके मैसेज का रहेगा हमें इंतजार इस गाने के साथ।

जी हाँ, हमें भी यहाँ बहुत कुछ हो रहा है क्योंकि आप हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं और बहुत तरीके से पसंद भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक बात करें उनके निजी जीवन के बारे में, तो अभिनेत्री साधना जी की शादी फिल्म निर्देशक आर के नैयर जी से हुई थी और उन्होंने 7 मार्च 1966 को शादी की और उनकी प्रेम कहानी फिल्म लव इन शिमला के सेट में शुरू हो गई। शादी के बाद भी साधना शिवदसानी ने फिल्मों में काम किया और इनकी जो खूबसूरत जोड़ी है ना, वो 30 साल तक बनी रही। 1961 की क्लासिक फिल्म हम दोनों में देव आनंद के साथ उनकी प्रेमिका की भूमिका को लोगों ने बहुत बहुत पसंद किया और हमें भी बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। इतने सारे मैसेज हमें भेज रहे हैं, जैसे कि अजीत भावसार, प्रमिला बेन भावसार, भवेश जमीन और हेतल जैन, कृष्णा जैन, राकेश जी का भी मैसेज हमारे पास आया है। हरजिंदर शिंदा मतलब गांव पंजाब से, हरजिंदर, जसवीर और सीता गीता ने हमें मैसेज किया है, ऐसे रवि कुमार जी ने हमें मैसेज किया है, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुर कीरत और गुरशब्द सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमें मैसेज करने के लिए। अब बढ़ते हैं हम अगले इस गीत, प्यारे से गीत के साथ, सुनते हैं ये नगमा।

और इसी तरह से सप्रेम नमस्कार हमारे श्रोताओं को। तो की अब बहुत सारे हमें मैसेज आ रहे हैं, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव ज्योति ओजस्वी जी का मैसेज आया है, और इसी तरह से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीत गुरशब्द का मैसेज आया है, और फिर राजेश वर्मा जी का हमें मैसेज आया है, और वहीं तुलसी मस्कीन जी का उन्होंने हमें बहुत बधाई दी है, हमारे सॉन्ग उन्हें पसंद आ रहे हैं, कार्यक्रम उन्हें अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। शारदा से, दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना, आशीष, चैतन्य, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशव सिघान खुराना, और अगर हम किसी का नाम लेना भूल जाएं तो हमें माफ कर दीजिएगा, अगली बार जरूर लेंगे। और इंद्रभान सिंह, अनुभव, ऋषभ, राम सरोहर, नारायण प्रसाद, दिनेश प्रसाद और कालंदी, इसी तरीके से हमें फारूक अली खान जी का भी मैसेज आया है, फरहीन, फरहान, फारिया, ताहिरा, हमारे बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के प्यार का। और इसी तरीके से हमें अजीत भावसर, प्रमिला बेन भावसर, भावेश सैनी, जैमिन कुमार, जैल हैतल, कृष्णा जैन, राकेश जैन जी का भी मैसेज आया, सुवंत सिंह का भी मैसेज आया, दलजीत राजदीप, गुरनूर, गुरनाल, अविराज जी का मैसेज आया है, और इंद्रभान, अनुभव, ऋषभ हमने बताया है, इनके मैसेज हमारे पास आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के मैसेज करने का। और हम बात कर रहे हैं जैसे साधना जी की, तो उनकी आखिरी फिल्म उल्फत की नई मंजिल थी, और 2002 में उन्होंने आईफा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी उन्हें सम्मानित किया गया। अंतिम दिनों में साधना जी आखिरकार कहते हैं ना कि बहुत ही उनकी जिंदगी अधूरी, गुमनामी सी रही, आखिरकार 25 दिसंबर 2015 को मुंबई में उनका निधन हो गया। इसी खूबसूरत याद के साथ मैं यानी रैना तंवर लेती है इस कार्यक्रम से इजाजत। इस कार्यक्रम में फिर मिलेंगे एक नए कलाकार, एक नई कहानी के साथ, तो सुनना न भूलें, और हर आवाज कुछ कहती है मेरे दोस्त, ये तो आप जानते ही हैं। दोस्तों जाते जाते एक नए काम, एक नई बात हमेशा, कि आप एक अच्छे नागरिक बने, मेट्रो में जाएं तो जरूरतमंद लोगों की मदद करें, यानी कि बुजुर्गों को सीट दें, जिनकी जरूरत है उन्हें सीट दें, जो बीमार लगे उन्हें सीट दें, एक अच्छे और सभ्य नागरिक बने, दूसरों के चेहरे पर दें मुस्कुराहट, और आप अपने दिल को मिलता है सुकून, क्योंकि जब हम किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखते हैं तो हमें मिलती है खुशी, और ये खुशी बांटना अच्छा होता है दोस्तों। तो नमस्कार, फिर मिलेंगे नई कहानी, नए कलाकार के साथ, इस गीत से लेते हैं विदा।

आप हमें सुन सकते हैं मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर। आपको बता दें कुछ ही देर बाद यानी 3:05 पर खबरें नशर की जाएंगी। 3:15 पर आप सुनेंगे फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। 3:30 हम पेश करेंगे मारूफ मौसीकार नौशाद अली से की गई मुजीब सिद्दीकी की गुफ्तगू की एक रिकॉर्डिंग। 4:00 से आप लुत्फ ले सकेंगे फिल्मी नगमों का। फिल्मी नगमों का प्रोग्राम जारी रहेगा शाम 4:50 तक। 4:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और 5:00 हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशर आते अख्ताम पजीर हो जाएंगी। तो सामने था एक मुख्तसर तालुक हमारे यहां से नशर होने वाले उन प्रोग्रामों का जो आज आप इस मजलिस में सुन सकेंगे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: मीडियम में एक हजार 71 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। 3:05 हुई है, खबरें नशर होंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप मोहम्मद कौनैन हैदर से खबरें सुनिए। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत ने पिछले 12 साल में ख़वातीन के लिए साजगार माहौल बनाया है ताकि वो मुल्क की तामीर के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरूए कार ला सकें। वज़ीर दाखला अमित शाह ने श्री अमरनाथ जी यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए नई दिल्ली में आला सतह की एक मीटिंग की सदारत की। मरकज ने सनअतों पर खुर्दा पेट्रोल पंप से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर बंदिश आयद कर दी है। अक़वामे मुत्तहिदा ने ओमान के साहिल से कुछ दूर भारतीय जहाजियों को ले जाते हुए तेल जहाजों पर हमलों की मजम्मत की है। भारत के मायानाज निशानेबाज और कोच जसपाल राणा का 49 साल की उम्र में इंतकाल हो गया है। और फीफा आलमी कप 2026 में टोरंटो में ग्रुप बी मैच में कनाडा का मुकाबला बोस्निया और हर्जेगोविना से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि माली शमूलियत और एंटरप्रेन्योरशिप से लेकर तालीम, सेहत की देखभाल, सफाई सुथराई, हाउसिंग, खेलकूद, साइंस और हुक्मरानी तक ख्वातीन मुख्तलिफ शोबों में नुमाया किरदार अदा कर रही हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते हुए शोबों में ख्वातीन की बढ़ती हुई शराकत से नए मौके पैदा हो रहे हैं और मुल्क भर में तरक्की के मंजरनामे बदल रहे हैं। उन्होंने खासतौर पर कहा कि पिछले 12 साल में एनडीए हुकूमत ने ख्वातीन की क्यादत में तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है और ये तमाम शोबों में नजर आ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मजीद कहा कि हुकूमत अपनी मदद आप ग्रुपों की मदद में सरगर्म है जो ख्वातीन को माली तौर पर खुद मुख्तार बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने खासतौर पर कहा कि हुकूमत की कोशिशें वकार, मौकों और बाइख्तियार बनाने से वाबस्ता हैं जिनसे एक ऐसा साजगार माहौल बनाने में मदद मिली जिसमें ख्वातीन अपनी पूरी सलाहियतों को बरूएकार ला सकें और मुल्क की तामीर में मजीद मुस्तहकम अंदाज में तआवुन दे सकें। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की नारी शक्ति साइंस, खला और इख्तिरा के शोबों में भी अहम किरदार अदा कर रही है। एक संस्कृत कॉल को दोहराते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क की नारी शक्ति कौम की तामीर का संग बुनियाद है। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क की माएं, बहनें और बेटियां आज हर शोबे में अपनी गैर मामूली सलाहियतों और हुनरमंदी से भारत माता की शान में इजाफा कर रही हैं। वज़ीरे दाखला अमित शाह ने नई दिल्ली में श्री अमरनाथ जी यात्रा की तैयारियों के जायजे के लिए एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। फौज के सरबला जनरल उपेंद्र द्विवेदी, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के डायरेक्टर जनरल्स ने इस मीटिंग में शिरकत की। श्री अमरनाथ जी यात्रा 3 जुलाई को शुरू होगी और 28 अगस्त को इख्तिताम पजीर हो जाएगी। हुकूमत ने तालीमी, सनअती और तजारती सार्फीन पर खुर्दा पेट्रोल पंप से मोटर स्पोर्ट और तेज रफ्तार गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाला डीजल खरीदने पर बंदिश आयद कर दी है और उनसे कहा है कि वो अपने ही सारिफ पंप से अपनी जरूरियात पूरी करें। यह फैसला मगरबी एशिया में जारी बहरान की वजह से आलमी सप्लाई चेन में रुकावटों के दौरान मकामी किल्लत से निपटने के मकसद से किया गया है। एक नोटिफिकेशन में पेट्रोल और कुदरती गैस की वजारत ने बताया कि ये बंदिशें 90 दिन तक जारी रहेंगी। खुर्दा पंप्स को भी हिदायत दी गई है कि वो तेज रफ्तार वाला डीजल रोजाना महज 200 लीटर तक फरोख्त करें ताकि इसकी बड़े पैमाने पर खरीदारी को रोका जा सके। इत्तलात और नशरियात की वजारत ने टेलीविजन, रेडियो और मुतालिका खिदमात के बारे में टेली मवासलात के 2026 के जाब्तों का मुसवदा आवाम की राय

तमिलनाडु के वजीर आला विजय ने आज कुरुवाई मौसम के लिए 134 करोड़ रुपए की लागत वाले एक खसूसी पैकेज का ऐलान किया है। एक बयान में आज उन्होंने कहा कि इससे उन किसानों को मदद मिलेगी जो जुनूब मगरबी मानसून में ताखीर की वजह से मुतासिर हुए हैं और मैतूर बांध 12 जून की रिवायती तारीख पर नहीं खोला जा सका है। इम्तिहान मुनाकिद कराने वाली कौमी एजेंसी एनटीए ने इस महीने की 21 तारीख को होने वाले नीट यूजी 2026 के दोबारा इम्तिहान के लिए इम्तिहानी वक्त को 15 मिनट से बढ़ाकर 180 से 195 मिनट कर दिया है। नए वक्त के मुताबिक ये इम्तिहान दिन में 2 बजे से 5:15 बजे तक होगा। नजरसानी शुदा इम्तिहानी वक्त में लाजमी इम्तिहानी जाब्तों जैसे हाजिरी की शीट पर दस्तखत और दीगर निगरानी के तरीकेकार के लिए दरकार वक्त भी शामिल है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अक़्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल आर्सेनियो डोमिनिगेज ने ओमान के साहिल के करीब पलाऊ परचमबरदार एक टैंकर पर होने वाले हमले की मजम्मत की है जिसमें 3 भारतीय मल्लाह हलाक हो गए। अक़्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान स्टेफेन दुजारेक ने कहा कि जनाब गुतेरेस को खित्ते में मुसलसल बढ़ती हुई कशीदगी पर सख्त तशवीश है। इधर इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल ने हर हाल में मल्लाहों शहरी जहाजरानी और उसकी आजादी के तहफ्फुज की जरूरत पर जोर दिया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में ईदगाह ग्राउंड में पाकिस्तानी फौज ने हजारों गैर मुसल्ला एहतजाजी मुजाहरीन पर AK-47 राइफलों से फायरिंग कर दी जिसमें 16 अफराद हलाक और 37 जख्मी हो गए। अगरचे मुजाहिरा कल पुरम तरीके से शुरू हुआ था जिसमें सस्ता आटा चावल बिजली और बुनियादी हकूक का मुतालबा किया गया था लेकिन पाकिस्तानी फौज के जरिए हजूम पर फायरिंग करने की वजह से सूरत हाल पुरतशद्द हो गई। खत्ते में पाकिस्तान के मुसलसल कब्जे और पॉलिसियों के खिलाफ नारे लगाने के लिए 60 से 70 हजार अफराद रावलकोट में जमा हुए थे। मुजाहरीन ने मंगल के रोज पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में एहतजाजी मुजाहरीन और सलामती दस्तों के दरमियान तसादुम में हलाक होने वाले 30 अफराद और जख्मी होने वाले 200 अफराद के लिए इंसाफ का मुतालबा भी किया। भारत के मारूफ निशानेबाज और कोच और एशियाई खेलों में सोने का तमगा हासिल करने वाले साबिक खिलाड़ी जसपाल राणा का इंतकाल हो गया है। वो 49 बरस के थे। भारत की कौमी राइफल एसोसिएशन के सदर कृतिकेश नारायण सिंह देव के मुताबिक जसपाल राणा ने कल रात दिल्ली के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली। वो हाल ही में जर्मनी के शहर म्यूनिख में ISSF आलमी कप से भारतीय टीम की वापसी के दौरान बीमार हो गए थे। उन्होंने 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में तारीखी तौर पर कांसे के 2 तमगे जीतने में मनु भाकर की रहनुमाई की थी। सदी जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वजीर आजम नरेन्द्र मोदी, मरकजी वजरा अमित शाह, राजनाथ सिंह, डॉ मनसुख मांडविया और दीगर मुमताज शख्सियतों ने जसपाल राणा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में आज मैक्सिको के जापान में ग्रुप ए के एक मैच में जनूबी कोरिया ने चेक जमहूरिया को 2-1 से हरा दिया। जनूबी कोरिया का अगला मुकाबला मैक्सिको से जबकि चेक जमहूरिया का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा। इससे पहले कल रात मैक्सिको सिटी के एस्टेका स्टेडियम में खेले गए मैच में मैक्सिको ने जनूबी अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया। आज टोरंटो स्टेडियम में ग्रुप बी मरहले के मैच में कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना आमने सामने होंगे। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे खेला जाएगा। बैडमिंटन में सिडनी में जारी ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट में आज भारत की पीवी सिंधु खवातीन सिंगल्स की सेमीफाइनल में पहुंच गई। तीसरे दर्जे के खिलाड़ी पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की चेन यू सू को क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 21-6, 21-9 से हरा दिया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत ने पिछले 12 साल में खवातीन के लिए साजगार माहौल बनाया है ताकि वो मुल्क की तामीर के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरूए कार ला सकें। वजीर दाखिला अमित शाह ने श्री अमरनाथ जी यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए नई दिल्ली में आला सतह की एक मीटिंग की सदारत की। मरकज ने सनअतों पर खुर्दा पेट्रोल पंप से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर बंदिश आयद कर दी है। अक़्वामे मुत्तहिदा ने ओमान के साहिल से कुछ दूर भारतीय जहाजियों को ले जाते हुए तेल जहाजों पर हमलों की मजम्मत की है। भारत के मायानाज निशानेबाज और कोच जसपाल राणा

नडे और साथियों को सामने भी आप सुन रहे थे फिल्म थी सीमा, मौसीकार थे शंकर जयकिशन। प्रोग्राम की अगली पेशकश सुषमा श्रेष्ठा, पद्मनि कोल्हापुरे और साथियों को सुनिए फिल्म है द बर्निंग ट्रेन, नगमनिगार साहिर, मौसीकार आर डी बर्मन।

0: सब मिश्रण के साथ ही आज का फिल्म मौसीकी का प्रोग्राम मेरी पसंद अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेशे खिदमत है मारूफ मौसीकार जनाब नौशाद अली से की गई गुफ्तगू की एक रिकॉर्डिंग। आपसे मैं गुफ्तगू है मुजीब सिद्दीकी।
1: नौशाद साहब, आप इस वक्त हमारे स्टूडियोज में हैं और हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे फिल्मी मौसीकी की एक लंबी तारीख हमारे सामने बिखरी हुई है। ये तारीख लगभग 4 दहाइयों पे बिखरी हुई है मैं समझता हूँ, क्योंकि 1939-40 से आपने अपना फिल्मी कैरियर शुरू किया फिल्मी संगीतकार की हैसियत से, और आज इतनी तवील मुद्दत तक आपने जो अपना मकाम बनाया उसके बारे में तो हम बात करेंगे। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा आपसे नौशाद साहब कि ये आपने फिल्मी कैरियर फिल्मी संगीतकार की हैसियत से अपना कब और कैसे शुरू किया?
2: सबसे पहले तो मैं सुनने वालों की खिदमत में आदाब पेश करता हूँ और आपके सवाल का जवाब अर्ज करता हूँ कि सन 1937 में मैं मुंबई आया और उसी वक्त से यानी दौड़ भाग करता रहा काम हासिल करने के लिए। फिर मुझे 40 रुपए महीने पर उस्ताद झंडे खान साहब के साथ एक कंपनी में पियानो बजाने की हैसियत एज ए पियानिस्ट मुझे नौकरी मिली, तो उस 40 रुपए से मैंने अपना कैरियर शुरू किया था।
1: तो ये जो पियानो आपने बजाना शुरू किया
2: जी, इसकी टाइम लखनऊ का रहने वाला हूँ

0: है उस्ताद बब्बन साहब मरहूम अल्लाह बख्शे, उनकी नवाजिश रही मुझ पर, उनसे सबक हासिल किया, और फिर उस्ताद यूसुफ अली साहब से, और एक उस्ताद लड्डन साहब थे लखनऊ में, तो इन हजरात की शफकत मुझ पर रही। तो ये बुनियादी तालीम समझिए मौसीकी की, वहीं से उन्हीं हजरात से मुझे मिली।
1: वहाँ आपने गाना सीखा या बजाना?
0: मैं ज्यादातर उनसे ये इंस्ट्रूमेंटलिस्ट की हैसियत से उनके पास जाता था, और हारमोनियम सीखा, फिर पियानो,
1: क्योंकि उस्ताद यूसुफ खान का आपने नाम जिक्र किया तो वो तो सितार नवाज थे, सितार भी सीखा।
0: सितार में उनका शागिर्द हुआ मैं, और थोड़ा बहुत सितार बजाया भी, लेकिन फिर पता नहीं क्यों मेरे दिल में और दिमाग में कुछ उलझन सी पैदा हुई कि शायद ये सितार मेरा मकसद नहीं है। उसके बाद बब्बन साहब से मैंने हारमोनियम सीखना शुरू किया, उसमें भी जी नहीं भरा, फिर मैं सोचने लगा कुछ और चीज है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। दरअसल खोज करते करते बात वहां पर निकली कि मैं कुछ कंपोजिशन तर्जे बनाना चाहता हूँ। तो मतलब ये कि फिर इसी सिलसिले में मैं अपनी किस्मत आजमाने मुंबई आया 1937 में, तो ये बुनियादी तालीम मुझे लखनऊ में नसीब हुई।
1: अच्छा, उस वक्त तो मौसीकी और संगीत के बारे में तसव्वुर रास्ते बहुत मुख्तलिफ था हमारे माशरे में
0: जी।
1: तो आपको घर वालों ने भेजा था कि आप बम्बई जाके ये कीजिए, या आप अपनी मर्जी से आए थे?
0: सब घर वालों ने भेजा तो नहीं, बल्कि निकाला मुझे। और मुझे यानी मेरे वालिद साहब मरहूम अल्लाह बख्शे, वो खिलाफ थे इसके कि भाई ये बुरी चीज है, और ये कहां मौसीकी और संगीत, और हमारे खानदान में कोई ये नहीं करता है, और इसको अच्छी नजर से नहीं देखा जाता है, अब बड़े होने के बाद तुम्हारी शादी ब्याह कहीं अच्छे घर में नहीं होगी, ये बड़ी खराब लाइन है, छोड़ दो। तो मैं बहरहाल अटका रहा उसी पर। तो एक रोज उन्होंने मुझे बिठा कर ये कहा कि भाई तुम रातों को गायब रहते हो, और जलसे और संगीत सभा और ये वो, ये मुझे अब नहीं पसंद है, एक फैसला करो, घर चाहिए या ये तुम्हारा संगीत चाहिए, आज दोनों से एक चीज को अपनाओ। तो मैंने कहा हुजूर घर आपका, आपको मुबारक, और ये संगीत मुझे दे दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब आप जा सकते हैं घर से। तो मैं साहब घर से निकल गया।
1: अच्छा,
0: तो भेजा नहीं गया था, निकाला गया था।
1: अच्छा, तो बम्बई आ गए?
0: जी हाँ
1: जी,
0: बम्बई आया। फिर बहरहाल नौकरी की तलाश में फिल्म कंपनियों के गेट के ऊपर खड़ा रहूं, कोई अंदर घुसने न दे, और साहब रहने का कोई ठिकाना नहीं था। एक दिलचस्प बात बताऊं आपको कि वो सीढ़ियों के नीचे मैं सोता था
1: जी,
0: और उसी बिल्डिंग में एक उस वक्त की मशहूर मारूफ हीरोइन रहती थी, वो हमारे सर के ऊपर से जाती आती थी, उनको भी नहीं मालूम है कौन नीचे सो रहा है। तो जब मुझे पहला मौका मिला है म्यूजिक देने का, ट्यून बनाया है मैंने जिसको गवाया उस वक्त किसी हीरोइन से, तो वो लीला चटनीस थी, और वही मेरे ऊपर से जाया आया करती थी। तो ब्रॉडवे के सामने मैं साहब सोया करता था,
1: ये ब्रॉडवे सिनेमा थिएटर
0: जी हाँ। तो साहब उसकी रोशनियां उन अंधेरों में देखा करता था भाई मैं, और अल्लाह से दुआ करता था कि खुदा जाने ये रोशनियां
1: कब आपका मुकद्दर बनेंगी,
0: मेरी किस्मत का हिस्सा कब बनेंगी। बहरहाल कुछ अरसा गुजरा, बहुत से जाड़ा गर्मी बरसातें सब से गुजरी, और एक वक्त ऐसा आया कि साहब उसी थिएटर में हमारी एक तस्वीर ने जुबली की, और हमको बुलाया गया, हार फूल पिराए गए, बड़ी तारीफें की गई। तो मैं उसकी बालकनी पर खड़ा हुआ, थिएटर की बालकनी पर, और सामने की फुटपाथ को मैंने देखा, और आप यकीन जानिए कि आंखों में आंसू आ गए मेरे कि ये सब तारीफ कर रहे हैं, हार सही पहना रहे हैं, और मैं सामने देख रहा था विजय भट्ट साहब जो उस तस्वीर के डायरेक्टर थे, और वो तस्वीर का नाम था बैजू बावरा। तो विजय भट्ट साहब कह रहे भाई कहाँ खो गए तुम, इधर लोग मुखातिब है तुमसे। मैंने कहा विजू भाई वो देखिए सामने की फुटपाथ, वो मैं देख रहा हूँ। कहने को वहां कोई खास बात है? मैंने कहा जी हाँ, क्या खास बात है? तो मैंने कहा साहब वो खास बात ये कि वो इतना लंबा फासला है, इस फुटपाथ से

0: और उस सिवे कहा कि 16 साल लगे मुझे उधर से इधर आने में।
1: क्या कहना, क्या कहना।
0: तो मैं अर्ज ये करना चाहता था कि ये साहब ऐसा नहीं है कि फलूक में या ऐसी किसी को मौका ऐसे ही मिल जाता है, बड़ी जानमारी करना पड़ती है। और मैं ये आपसे अर्ज करूं कि मेरे उस्ताद झंडे खान साहब, जिनका मैं असिस्टेंट बना था बम्बई में आके, वो मुझसे फरमाते थे कि बेटा जो एक एक सीढ़ी चढ़ के जाता है, फर्ज करो 2 मंजिले पर या 3 मंजिले पर, उसके जहन में रहता है कि मैं 11 सीढ़ी या 21 सीढ़ी चढ़ाऊं, तो जब उतरेगा भी तो उसके जहन में रहेगा 21 सीढ़ियां हैं, गिरेगा नहीं वो।
1: सही।
0: तो अर्जी की जैसा कि आपने, मैं शुक्रगुजार हूं आपने इज्जत बख्शी के 3-4 दहाइयों से मैं इन्हें कायम हूं, तो ये अल्लाह का फजल है। और वो मैं एक एक सीढ़ी चढ़ के गया हूं तो मुझे मालूम है उतरने में भी इतनी सीढ़ियां हैं।
1: सही। अच्छा, कोई इस उस दौरान, अभी हम वहीं का जिक्र कर रहे हैं बैजुबाब तक मसलन, उस दौरान आपकी इस मुसलसल जद्दोजहद में और कोशिशों में और जाफिशानियों में कोई मरहला ऐसा आया जब आपने सोचा हो कि ये बड़ी बहुत हौसला शिकन मरहला कोई ऐसा आया कि जब आपने सोचा हो कि भाई ये नहीं हो सकेगा काम या मुझे कामयाबी नहीं मिलेगी?
0: नहीं, कभी भी मुझमें कि ये अल्लाह ने, कहना चाहिए कि जिसको कुव्वत फैसला या विल पावर ये अल्लाह ने मुझे दिया है, मैं कभी हिम्मत नहीं हारा। ऐसे बहुत से मोड़ आए लेकिन मैं सबसे गुजरता गया। हाँ, इस पर एक बात याद आई, अब्दुल अलीम नामी एक साहब बॉम्बे में हैं, डॉक्टर अब्दुल अलीम नामी, वो मेरे करम फरमा थे, मुझे मिले तो मेरे पैरों में बड़े छाले पड़े हुए थे और चप्पल टूटी हुई थी, तो ले गए चाय पिलाने। उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे पैरों में क्या हुआ? हमने कहा साहब पैदल चलता हूँ यहाँ से वहां तक, बताया तो कहने कि वो हो, तो कह रहे तो वहां पर डायरी है कोई भाई? मैंने कहा कि जहां रखता तो हूँ। कह मेरे अल्फाज लिखो जो मैं कहता हूँ, फरमाइए। कहने लगे तुम अपने मकसद में एक रोज जरूर कामयाब होगे और अगर मैं जिंदा रहा तो तुमको सलाम करने आऊंगा। तो मैंने कहा साहब आप ये किस बुनियाद पर ये यकीन इतने यकीन से कह रहे हैं? कह रहे देखो बहुत से लोग मेरे पास आए और साहब 10-12 रोज मुसीबत झेलने वाले, नामी साहब किराया दे दीजिए, मुझे वतन भिजवा दीजिए। कहते तुम मुझे जानते थे लखनऊ से और तुम एक रोज मेरे पास नहीं आए, तुमने अपनी तकलीफ का इजहार नहीं किया, तुम भूखे रहे, प्यासे रहे, फुटपाथ पर सोते रहे, ये इस चीज की दलील है कि तुम्हें कुव्वत इरादी जबरदस्त है और तुम हिम्मत हारने वाला नहीं हो और तुम जरूर कामयाब होगे। तो एक मौका आया ऐसा अल्लाह ने दिया कि मैंने अपना घर बनाया, ये आशियाना जिस झोपड़े का नाम है वो इस खादिम कई घर है, तो उसकी इफ्तिताह में मैंने डॉक्टर नानी साहब को बुलाया और वो उन्होंने आके पहले शुरू किया मुझे, कहने वो डायरी है तुम्हारे पास, पढ़ो मेरे अल्फाज।
1: वो जो एक अंदर से जो जो तलब थी आपके अंदर
0: जी,
1: उस आप समझते हैं कि वो तलब अब खत्म हो गई या उसकी कुछ तकमील हुई?
0: साहब ये अच्छा सवाल आपने किया, वो जो तलब थी

0: आपकी फिल्मों में से कौन सी ऐसी फिल्म है कि जिसको म्यूजिकली आपने भी पसंद किया हो?
1: जी
0: तो मैंने कहा साहब, इसको अगर आप बनावट न समझें और यकीन कर लें तो मैं अर्ज करूं, मैंने कोई फिल्म में, ये सच्ची बात है, मुझे अपना काम पसंद नहीं आया। पता नहीं क्यों, यह दिल पता नहीं क्या चाहता है कि अभी वो उसकी तकमील हुई नहीं। वो मैंने इकबाल का वो मिसरा दोहराया कि सितारों से आगे जहां और
1: हाँ
0: भी,
1: जी हाँ जी
0: अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो वो तिश्नगी अभी बाकी है, वो अभी पूरी नहीं हुई, और अल्लाह ने चाहा मैं कोशिश में लगा हूं कि शायद कुछ कर सकूं।
1: वैसे हम
0: चुको
1: तो यही चाहेंगे कि उसकी वो तशनगी हमेशा बाकी रहे, ताकि वही तहरीक है गोया आपकी, आपके फन के पीछे। ये रतन से लेकर के और आज तक एक एक तवील अरसा गुजरा, और जो कुछ आपने दिया मूसीकी के सुनने वालों को, मूसीकी के शायकीन को, वो यकीनन आप ही का हिस्सा है वाहिद। तो आप क्या समझते हैं कि उस वक्त की मूसीकी से और आज की मूसीकी में फर्क कोई आया? सुनने वालों के नुक्ते नजर से पूछ रहा हूं।
0: सुनने वालों के नुक्ते नजर से शायद मैं उतने यकीन से नहीं अर्ज कर सकूं, लेकिन अपने नुक्ते नजर से मैं जरूर अर्ज करूंगा
1: जी
0: कि बहुत काफी फर्क मुझे नजर आया। और मतलब ये कि जो उस वक्त मौसीकी होती थी, आज से पहले जिस जमाने का आपने जिक्र किया है, वो उसको हम मौसीकी कह सकते थे। आज जो है, जैसे कि उस वक्त लोग कंपोज करते थे, कंपोजर होते थे, अभी इम्पोजर हो गए हैं। मतलब ये कि कोई क्रिएशन जिसको कहिए वो नहीं हमको मिल रही है चीज, हमने मेलोडी जिसको कहते हैं, जिसको धुन या तरस कहते हैं, वो साजों के शोर में वो गुम हो गई है, वो खो गई है चीज, वो और मेलोडी की कमी है। और संगीत में आजकल मगरब का रंग, यानी वेस्टर्न म्यूजिक का बहुत रंग आ गया है, जो कि हमारी मौसीकी में वो चीजें नहीं है। और हम बजाय इसके कि फिल्म मीडिया के थ्रू इसके जरिए हम आवाम को और इस जनरेशन को अपने संगीत से आगाह करते या उनको एजुकेट करते, और हमने वो विदेशी संगीत इस फिल्म के थ्रू देना शुरू किया है। आज के बच्चों को अगर हम कोई सहगल साहब का गाना सुनाते हैं या ऐसे सिंगर जो हमारे माने, तो लोग कहते हैं भाई वो इसमें मजा नहीं आ रहा है, कोई वो जोश नहीं है, वो शोर नहीं है, वो तो मतलब ये है कि हमने सेहतमंद रगों में बीमार खून भरना शुरू कर दिया। हम तो यूं कहेंगे, हम बड़ी मुश्किल में पड़ गए हैं कि इसका क्या कफारा अदा हो, किस तरह से हम वापस आए उस जगह पर। अच्छा, अब ये कहना लोगों का, हमारे प्रोड्यूसर हजरात का, कि वो क्लासिकल मौसीकी आजकल लोग समझते नहीं हैं, उसको अप्रिशिएट नहीं करते, ये गलत है। इसलिए बेजुबौरा में
1: जी
0: मैंने
1: बराह
0: उसी
1: रास्त
0: जी
1: क्लासिकल मौसीकी की धुनें आपने
0: अच्छा
1: बनाई।
0: मौज़े आज़म है या फोक भी हमने हिंदुस्तान के काफी दिए, गंगा जमुना है या और
1: मदर
0: ऐसी
1: इंडिया
0: तस्वीरें मदर इंडिया है, तो लोगों ने आखिर पसंद ही किया। और मेरा ये यकीन है कि आप इस धरती से जो चीज लेंगे उसकी उम्र ज्यादा होगी, वो हमेशा
1: पायदार
0: लोग
1: होगी।
0: पायदार होगी, लोग उसको, जैसे कि आज भी मदर इंडिया है, उसमें कोई फॉरेन एलिमेंट तो नहीं है, कहीं लगाइए उस तस्वीर को, वो हुजूम दर हुजूम टूट पड़ते हैं और नई से नई फिल्म से ज्यादा आवाम उसमें आते हैं
1: बस
0: देखने
1: मजा
0: के लिए।
1: हिंदुस्तानी
0: अच्छा,
1: माशरे का
0: तो
1: है।
0: हमें ये आजकल जो संगीत हो रहा है, इससे हम मुत्तफिक नहीं है। हमारे कलीग्स मुमकिन है बुरा माने, हमें उनसे माजरत के साथ हम अर्ज कर रहे हैं कि हम जो इस वक्त कर रहे हैं ये गलत है, हमको अपने संगीत की तरफ रुझू होना चाहिए, और इसके जरिए हम आवाम को एजुकेट कर सकते हैं कि जैसे आज मेरे लिए

0: ईस्ट में कैलिफोर्निया और कनाडा हर जगह जहां भी जाइए लोग कहते हो भजन सुनाइए मन तरपत हरि दर्शन को, तो साहब इस भजन को फिल्म के जरिए पहुंचाया गया वहां तक जो लोग भजन का मतलब नहीं समझते क्या
1: मालकोस राग को समझते भी नहीं होंगे।
0: मालकोस कहते वो मालकोस था अच्छा भाई वो मालकोस का भजन। तो फिल्म के जरिए कुछ ऐसी चीजें इन्हें हमें करना चाहिए। तो हम आज के संगीत से पूरी तौर से मुत्तफिक नहीं है और ये बहुत ही माफी और माजरत के साथ अपने कलीग से हम कई दफे अर्ज कर चुके हैं, आज फिर आपके सामने मैं अर्ज कर रहा हूँ कि पहले जो कुछ संगीत होता था उसमें अपनापन होता था, इस देश की मिट्टी की बू आती थी उसमें। अभी जनाब ये इस इल्म के लिए कहा गया है कि ये इल्म सीना बसीना चलता है, उस्ताद ने शागिर्द को बताया, शागिर्द अपने शागिर्द को बताया, चिराग से चिराग जलते थे, लेकिन आज तो हम दूसरों के ताकों से चिराग चुरा कर अपने ताक में जला रहे हैं, उजाला कर रहे हैं, ये बहुत गलत हो रहा है।
1: लेकिन अर्शद साहब हम इसको इस जाविये से क्यों ना देखें, इस बात को फन कोई भी हो देखे
0: जी
1: वो बदलती हुई कदरों का साथ अगर न दे तो मैं समझता हूँ कि ये तो फिर खामी होगी, उस फन की खामी होगी। अंदाज बदली हमारे हमारी हमारी सोसाइटी की, हमारे लोगों की, सुनने वालों की, गाने वालों की। तो अब मसलन दरबारी में आपने बैजू बावरा की उधुन बना दी या मंत्र पर मालकोस में बना दिया, सवाल यह है कि उसी आधार पे अभी और कितनी धुनें बन सकती थीं।

0: अपना राज अपनी अपना ठाट कायम रखते हुए उसमें आप कुछ नयापन लाइए, इसका मैं कायल हूँ, ये सही फरमाया आपने, लेकिन उसकी शक्ल ना बिगाड़िए आप।
1: नहीं, अगर वो प्योर फॉर्म हो, मसलन मसलन मंत्र पद है हरि दर्शन को, ये तो बराह रास्त मालकोस के ऊपर आधारित है और उसका उसका उसके शक्ल रूप कोई बिगड़ना नहीं चाहिए, वो धूमी ऐसी है। लेकिन कुछ सुर जो है, मसलन हमने कुछ सुर मालकोस से लिए, कुछ दरबारी से, कुछ बागेश्वरी से लिए, और उनको नए अंदाज में और नए ऑर्केस्ट्रा के साथ जो जदीद ये है इंस्ट्रूमेंट्स, इनके साथ अगर पेश करने का एक तजुर्बा किया जाए, या हमारे वो म्यूजिशियंस कहते हैं कि हमने किया, तो ये तो सुनने वालों के नुक्ते नजर से कहूं तो काफी कामयाब है।
0: देखिए, हर मुल्क अपनी तहजीब से पहचाना जाता है, अपने कल्चर से पहचाना जाता है। आप अगर ऑर्केस्ट्रा, जैसे आपने जिक्र किया, एक तो ऑर्केस्ट्रा बुनियादी तौर से हमारे संगीत में था ही नहीं, ये तो हमने बाहर के मुल्कों से लिया है। हमारे यहाँ सब सोलो इंस्ट्रूमेंट इंडिविजुअल प्लेइंग के लिए बनाए गए थे। ऑर्केस्ट्रा तो हमने बाहर से, यानी बाहर के संगीत से इंस्पायर होके हमने वो ग्रुप बनाया कि एक ऑर्केस्ट्रा होता है भाई। लेकिन उस ऑर्केस्ट्रा में आप अगर अपने साजों को तरतीब दें जो आपके साज हैं, तो भाई मसलन जैसे आप तीन सप्तक बना लीजिए कि एक सरंदा हो, एक सरंगी, एक उससे छोटी सरंगी हो, इसी तरह से इन्हें चेलों की जगह आप एक बड़ा साज ऐसा बना लें। अक्सर जैसे अली हुसैन साहब चेलो बजाते थे, पहले सरंगी बजाते थे, लेकिन चेलो उन्होंने सरंगी स्टाइल से बजाना शुरू किया। ऐसा साज मैंने बड़ी शक्ल में सरंगी बनाइए, उसमें वो तार चढ़ा लीजिए, तो आपका ही साज होगा। फ्लूट्स जो है ये बांसुरी, इसके सप्तक बना लीजिए। सुरभार है, सितार है, छोटी सितारी है, वीणा है, इनके सप्तक बना लीजिए। तो इस सूरत से ये अगर ये मिजराब के साज या फूक के साज हम अपने साजों को तरतीब देकर अगर एक ऑर्केस्ट्रा की शक्ल बनाए, तो ये होगा कि भाई जैसे कि आपने शासकीन खरीदा और आपने उसका सूट बनाया, तो लोग कहेंगे कपड़ा भी विदेशी है और लिबास भी विदेशी है। अगर उसकी शेरवानी आप बना लेंगे तो लोग कहेंगे भाई क्या शेरवानी पहनी है, वो भूल जाएंगे शासकीन है। तो
1: लेकिन ये मगरबी इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल तो आपने भी किया,
0: हमने किया और जरूर करना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ वायलिन आप इस्तेमाल कीजिए, वॉल्स न बजाइए उस पर, वॉल्स की जगह आप भोपाली क्यों नहीं बजाते हैं उसके ऊपर, और बज सकती है। तो आज साज भी विदेशी आपने लिया और उसके ऊपर मेलोडी भी विदेशी आप बजा रहे, तो फिर हमने कोई यानी जिद्दत नहीं की, आप उस पर क्यों नहीं अपना राग बजाते हैं। तो मतलब ये है कि यानी जदीद साज जो इस्तेमाल हो रहे हैं, तो उनको बिल्कुल हूबहू हम उन्हीं के रूप में पेश कर रहे हैं, उसमें अपना अपनी झलक कुछ है।

निशा चिन्नाय, शंकर महादेवन और जावेद अली की आवाज में आप सुन रहे थे बंटी और बबली फिल्म का नगमा। नगमा निगार थे गुलजार, मौसीकार शंकर एहसान लॉय। प्रोग्राम की अगली पेशकश आप तमाम सामीन के लिए, बिहार यार फिल्म का नगमा मोहम्मद रफी किशोर कुमार की आवाज में, नगमा निगार साहिल लुधियानवी, मौसीकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

और सामने जब सुनिए कभी खुशी कभी गम, इस फिल्म का रंग बाल का याग्निक सुनिधि चौहान, उदित नारायण, सुदेश भोसले, आदि श्रीवास्तव और साथियों की आवाजों में, जिसे मौसीकी सजाया आदि श्रीवास्तव ने।

आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मोहम्मद रफी और साथियों को सुनिए। फिल्म है अमर अकबर एंथोनी, मौसीकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूँ।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ हाँ।

0: कारण ओए दिव्या ओए किथे रह गया तू ओए दिव्या वो बताने किथे चला गया ओ पलिए लोके तू किथे है ओए क्यों मेरे नाल लुक्कड़ मिट्टी खेल रही है दर्द किथे है
1: है तुहाडे सामने तो खड़ी हां दारू कट डफनी सी नजर तो ठीक रहंदी
0: ओए कट किवें पिंदे भगवान ने अपने यार दीपे नू टीटू दे हैप्पी बर्थडे दी पार्टी जो दे रही सी
1: होगी पार्टी
0: अरे किथे डार्लिंग
1: डार्लिंग शार्लिंग अपने कोल रखो ते चुप करके सो जाओ
0: ओए सो जाओ ओए किवें सो जाइए अज दा पार्टी अद्धी होई है डार्लिंग
1: अद्धी ओ किवें
0: ओए मैं ते मेरे दीपे यार ने दारू पीती है पर खादा कुछ भी नहीं
1: ते मैं की करा फिर
0: तू है घर के साडे ले गरम गरम पराठे बना दे देसी घ्यो दे
1: देसी घ्यो दे पराठे बना दे जिवे तुहाडी मां ने घ्यो दे पीपे भर के भेजे ना
0: ओए खबरदार जे मेरी मां दा नाम लिया था चुप चाप अंदर जाते फटाफट पराठे बना आलू वाले
1: आलू वाले पराठे बना आटा है नहीं कर
0: ओ फिर मूली वाले बना दे
1: आए हाय सड़ गई मेरी किस्मत मेनू एक गल दसो पराठे बंदे काले ना लिया
0: ओए मेनू नहीं पता तू सिर्फ पराठे बनाने है आटा जिथों मर्जी ले गया मेरा यार दीपा जो आ रहा
1: है हाय तनु क्या दे हैगा भी आटा है नहीं परोठे अपने सिर ना बनावा
0: ओ जिथो मर्जी ले मैं मेनू की पता मेरे दीपे यार ने परोठे खाने आ गया
1: तो मैं की करा चंडिया लावा आवे के वाजे जावा दे गाड़ी
0: देख भाई ए तेरा अपना इंतजाम है जिवे मर्जी कर पर मेनू आलू वाले परोठे चाहिए अपने यार वास्ते पराठे बना गरम गरम
1: हाय मैं मर गई तुसी ते इस वेले ना कोई समझन दे लायक नहीं हैगे जो जी आवे करो मेरे ते घर दे काम पए ने मैं चली आ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से नए अवसर खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार अमरनाथ यात्रा करने वाले भक्तों की सुरक्षा और सुगम तीर्थ यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक शामिल हुए। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी

0: को उचित कीमत दे रही है और जमीन सौंपने की प्रक्रिया जारी है। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। अमरीका के साथ प्रस्तावित समझौते पर ईरान ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इससे पहले अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। ईरान में उच्च स्तरीय वार्ताएं आगे बढ़ने के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमले रद्द कर दिए हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब किया है। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है। इसी तरह के एक हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। दक्षिण कोरिया में सियोल की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि मोदी सरकार भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए प्रतिबद्ध है। आकाशवाणी समाचार के साथ एक विशेष साक्षात्कार में उन्होंने ये बात कही।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में जिस तरह से काम हुआ है और जो परिवर्तन और प्रभाव उसका दिखाई देता है, मैं जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूं, जब भारत के विकसित होने का इतिहास लिखा जाएगा तब भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर उसके रूप में परिभाषित और चिन्हित किया जाएगा।
0: भारत की बौद्धिक और सभ्यतागत विरासत की सुरक्षा की दिशा में ज्ञान भारतम मिशन को ऐतिहासिक पहल बताते हुए श्री शेखावत ने कहा कि इस मिशन के तहत सरकार ने राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण शुरू किया है। ये साक्षात्कार अब से कुछ देर में 7:10 पर हमारी विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के विकास के जनकल्याण के में प्रसारित किया जाएगा। भारत एआई मिशन ने आज वारिया नामक एक वीडियो मॉडल शुरू किया है। इससे कम खर्च पर प्रासंगिक और अत्याधुनिक वीडियो बनाए जा सकेंगे। पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुने कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को
1: राम राम।
0: देखिए लोकेंद्र भाई, जब कहते हैं ना कि मौसम के अनुसार अगर हम अपना खान पान रखते हैं तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ा लाभकारी होता है, और अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है और ऐसे में पसीना खूब आता है, तो हमें ऐसी सब्जियों का चयन करना चाहिए, ऐसे फलों का चयन करना चाहिए जिनमें पानी की मात्रा अधिक हो, जैसे कि बेल वाली सब्जियां हैं, लौकी, तोरई, खीरा, कद्दू, इनमें भरपूर मात्रा में पानी भी होता है, इसके साथ साथ पचाने में भी आसान होती है और हमारे शरीर को हाइड्रेट भी रखती है।
1: बिल्कुल प्रियंका भाई, उसके साथ साथ देखिए फल सब्जियों और मिलेट्स की भी हम बात कर लें कि हमारे स्वास्थ्य में स्वस्थ जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये पोषक तत्वों का प्रमुख स्रोत होता है और शरीर को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। फलों और सब्जियों में विटामिन, खनिज और फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में विभिन्न बीमारियों से बचाव भी करते हैं।

0: अगर मिलेट्स की बात किया जिन्हें जिसे श्री अन्न भी कहा जाता है, ये जिसमें बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो, कुटकी, ये सब अनाज शामिल हैं, और ये इसमें प्रोटीन, फाइबर, आयरन, कैल्शियम और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। मिलेट्स में नियमित सेवन मधुमेह, मोटापा और हृदय संबंधी रोगों का को जोखिम भी कम किया जाता है इनसे।
1: बिल्कुल, इसके साथ साथ अधिक से अधिक पेय पदार्थ आप ले सकते हैं, जैसे नारियल का पानी ले सकते हैं, नींबू का पानी ले सकते हैं, बेल का शरबत ले सकते हैं, और जैसे आप अधिक से अधिक, और वैसे भी आप घर से जब भी निकले तो पानी की बोतल साथ में लेकर जरूर निकले, क्योंकि गर्मियों में सबसे जरूरी होता है कि हम पानी पीते रहें और जो थकावट है वो हमें ना हो पाए, क्योंकि गर्मियों में देखा जाता है कि बहुत जल्दी थकान भी हो जाती है। तो खाने पीने का और हर तरीके से आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, समय पर उठे, समय पर सोएं, इस तरीके से अगर आप अपनी दिनचर्या रखेंगे तो आपका दिन अच्छा रहेगा और फिर आप अपनी एनर्जी को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे और अपने कार्य को अंजाम दे
0: बिल्कुल
1: पाएंगे।
0: लंगावन।
1: और देखिए, कृषि जगत कार्यक्रम में हम अपने किसान साथियों के लिए जानकारियां भी लेकर आते हैं। इसी हम एक बातचीत लेकर आए हैं, खेत बचाओ अभियान में इफको एमसी की भूमिका, इसमें जानकारी दे रहे हैं मनोज वार्ष्णेय, प्रबंध निदेशक इफको एमसी, और इनसे बातचीत कर रहे हैं पीएस भारती। तो सुनते हैं ये बातचीत।
2: किसान बहन भाइयों, ये तो आप जानते हैं इफको किसानों की संस्था है, और भी इफको किसानों की संस्था के साथ साथ जैसा कि आप जानते हैं एक सहयोगी संस्था है इफको एमसी, जो किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद देती है, प्रदान करती है, और ये उत्पाद हैं जो भी कोई बीमारी लगती है किसानों तक पहुंचाती है। क्या कुछ काम चल रहा है और एक भारत सरकार का अभियान चला है खेती बचाओ, इसमें इफको एमसी की क्या भूमिका, आइए इन सब बातों की विस्तार से जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हैं इफको एमसी के प्रबंध निदेशक मनोज वार्ष्णेय जी। मनोज जी, आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे किसान भाइयों को आप क्या बताना चाहेंगे जिससे खेती बचाओ अभियान में आप उनको भी जागरूक कर सकें?
3: नमस्कार किसान भाइयों, इफको मित्सुबिशी कॉरपोरेशन का संयुक्त उद्यम जिसको इफको एमसी के नाम से जाना जाता है, कृषि रसायनों की श्रृंखला आप लोगों को उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है, और मुझे बहुत खुशी है कि इस संस्था ने ऑलरेडी पिछले साल 10 वर्ष कंप्लीट कर लिए और अब इस साल व्यापार में कार्यरत है। आपके इस सहयोग के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसा कि इफको एमसी के कुछ विषय जिन पे काम करता है और उनको बहुत आसान तरीके से अगर समझा जाए तो मैं सिर्फ चार शब्दों में इफको एमसी की भूमिका को आप लोगों को समझाना चाहता हूं। सबसे पहले है सही दवा। सही दवा मतलब आपके कृषि उत्पादन को बचाने के लिए जिन कृषि रसायनों की जरूरत पड़ती है, हम सभी उच्च कोटि के कृषि रसायनों को आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करती है इफको एमसी। सही दवा के बाद दूसरा है सही दाम। बाजार में जितने भी कीटनाशक या कृषि रसायन मिलते हैं बहुत ज्यादा आप लोगों से दाम चार्ज किए जाते हैं, और इफको एमसी का जो पूरा उद्देश्य है आपको सही दवा सही दाम पे उपलब्ध कराई जाए। तीसरा, इसमें सबसे अगर खास बात देखा जाए तो सबसे ये है कि इफको एमसी के सारे उत्पाद फिक्स्ड एमआरपी पे उपलब्ध कराए जाते हैं। फिक्स्ड एमआरपी से आपके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं हो सकती, जो दाम उसके ऊपर अंकित है उसी दाम को आपको दुकानदार को या सहकारी संस्था को पे करना है, तो जिससे आपको सही दवा सही दाम पर उपलब्ध होती है। साथ में तीसरा चीज है उच्च गुणवत्ता। उच्च गुणवत्ता मतलब जितने भी कृषि रसायन है इफको एमसी की क्वालिटी पॉलिसी है, तो अगर हम तीन चीजों को देखा जाए, सही दवा सही दाम उच्च गुणवत्ता, ये तीन ध्येय है इफको एमसी के किसान को और आपकी खेती के संरक्षण को, जो भी आपकी मेहनत है उस मेहनत को बचाने के लिए हम कार्यरत हैं। और इन सब के साथ एक और अनूठा पैगाम है इफको एमसी का, किसान सुरक्षा। इफको एमसी के कोई भी उत्पाद लेते हैं आप, उस पे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आपको मिलता है। 16,000 रूपये तक के उत्पाद इफको एमसी के अगर आप खरीदता है कोई एक किसान, तो उन उत्पाद खरीदने पे करीब 1,00,000 रूपये तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दुर्घटना बीमा जो है किसान को मिलता है। उसके लिए सिर्फ एक ही चीज जरूरत है आपके पास, आपके पास एक बिल होना चाहिए, और इसकी जो समय सीमा है पूरा 1 साल है। 1 साल में आप टोटल 16,000 रूपये के अगर उत्पाद खरीदते हैं 1,00,000 रूपये तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। तो इन सब आधारों के ऊपर इफको एमसी खड़ा है, और हमें बहुत हर्ष है कि इफको एमसी ने पिछले साल 2025-26 में रिकॉर्ड टर्नओवर किया।

0: हैं, उनकी गुणवत्ता को देखते हुए आपको उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आपको आने वाले समय में आपके कृषि उत्पादन में कोई भी तरीके की समस्या ना आए। तो ये ऐसा इफको एमसी का इस समय प्रयास चल रहा है। और आने वाले समय में एक और महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देना चाहूंगा, वो ये है कि आज के समय में जैविक उत्पादों की बहुत जरूरत आ रही है, मार्केट इंक्रीज हो रहा है और बहुत अच्छे अच्छे जैविक उत्पाद मार्केट में मिल रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में इफको एमसी ने भी अपने जैविक उत्पाद बाजार में उतारे हैं, और जिनका नाम है जेन नेक्सा। जेन मतलब बैलेंस और नेक्सा मतलब नेक्स्ट इन एग्रीकल्चर। तो जेनेक्सा श्रृंखला को बाजार में उपलब्ध कराया है। तो मेरा आप सब लोगों से आग्रह है, जेनेक्सा सीरीज के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करें, जिससे कृषि रसायनों के साथ साथ जैविक उत्पादों का, जिसको बोलते हैं बायो इंटीग्रेटेड क्रॉप प्रोटेक्शन की इस कॉन्सेप्ट को, जिससे हम आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा दिला सकें। तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जेनेक्सा श्रृंखला के उत्पादों का भी प्रयोग करें अपनी खेती में। इसी में एक उत्पाद है माइकोजेन। माइकोजेन जो एक बहुत ही उच्च कोटि का माइकोराइजा प्रोडक्ट है। हमें पता है आज के समय में खादों की उपलब्धता में यूरिया और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स की उपलब्धता के चैलेंज है। तो अपनी फसल के पोषण को प्रोटेक्ट करने के लिए माइकोजेन जैसे प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से माइकोराइजा जड़ों के ऊपर एक बाहरी और एंडोमाइकोराइजा डेवलप होने की वजह से आपके पास फायदा क्या होगा कि कम पोषक तत्व उपलब्ध होने के बावजूद फसल को पोषक तत्वों की कमी महसूस नहीं होने देगा और साथ में आपके उत्पादन पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव प्रभाव देगा। तो मुझे आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इन ऐसे जैविक उत्पादों का आप इस्तेमाल करें, और जिससे खाद की रहने वाले संकट को या खाद की कमी या उसकी कम उपलब्धता को भी आप एड्रेस कर सकें। रही बात आने वाले समय में किस तरीके का प्रोडक्शन, मॉनसून बहुत, जो आईएमडी की फोरकास्ट के हिसाब से कि मॉनसून कुछ जगह पे बहुत अच्छा रहेगा और कुछ जगह पे थोड़ा डिस्टर्ब रह सकता है, तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि सचेत रहें और सही तकनीक से अपने कृषि और अपने फसल उत्पादन को करें। और अगर हम सचेतता के साथ और सही ज्ञान के साथ अपना फसल उत्पादन करेंगे तो मुझे लगता है कि हम किसी भी तरीके से अपने एक तो फसल उत्पादन को खोएंगे नहीं और खेती से होने वाली आपकी आय किसी भी तरीके से कम नहीं होगी।
1: बिल्कुल मनोज जी, आपने सही कहा कि सही तकनीक और सही समय पर जानकारी के द्वारा आप अपनी खेती को बचाएंगे, खेती में काम करेंगे तो जरूर आप खेती के साथ साथ आप अपने उत्पादन को भी बरकरार बनाए रखेंगे। मनोज जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इन सब बातों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: प्रियंका बहन, अभी हमारे किसान भाई बहन सुन रहे थे, ये जानकारी का विषय था खेत बचाओ अभियान में इफको एमसी की भूमिका, और जानकारी दे रहे थे मनोज वाष्णे और जो कि प्रबंध निदेशक है इफको एमसी, और इनसे बातचीत कर रहे थे पीएस भाटी।
3: बिल्कुल, और देखिए लगातार हम भी अपने कार्यक्रम के जरिए बताते रहते हैं कि अधिक से अधिक जैविक खेती की ओर हमारे किसान भाइयों को अग्रसर होना चाहिए ताकि रसायनों का कम प्रयोग हो और हमारे जो खेत की मिट्टी है वो भी अच्छी बनी रहे। और हमारे टॉकर ने भी बात की कि जैविक उत्पादों का इस्तेमाल करें जिससे कि हमारे रासायनिक जो वो उन पे हमारी जो निर्भरता है वो कम हो और जैविक खेती की ओर हम लगातार अग्रसर हों। और हम बात कर रहे थे अपने शारीरिक स्वास्थ्य की भी, तो मोटे अनाज खाने के साथ साथ उगाने के भी बड़े फायदे हैं क्योंकि ये कम उपजाऊ भूमि पर भी हो जाते हैं और बाजार में लगातार इनकी डिमांड बढ़ रही है और इनसे बने हुए प्रोडक्ट की भी बहुत ही अधिक डिमांड है। तो हमारे जो अगले कलाकार हैं वो भी हमें मोटे अन्न के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि अधिक से अधिक मोटा अन्न उगाएं और अपनी आमदनी को बढ़ाएं। और सुनते हैं ब्रजपाल चरोड़ा की आवाज में ये रागनी।

और दिन दोने और रात जागनी, घर में फिर बरसेगी माया।

0: प्रियंकमैन अभी हमारे किसान भाई बहन सुन रहे थे, ये रागिनी कलाकार थे ब्रजपाल सिंह चरौरा।
1: और देखिए, हम सरकारी अगर योजनाओं की बात करें तो स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख और परिवर्तनकारी पहल है, जिसे कि 16 जनवरी 2016 को देश में नवाचार, उद्यमिता और मजबूत इकोसिस्टम के निर्माण को देखते हुए शुरू किया गया था। और इसमें जो भी युवा हैं उन्हें नौकरी मांगने वाले की बजाय नौकरी देने वाला बनाया जाए, ऐसा इसमें विचार किया गया था।
0: बिल्कुल प्रियंका बहन, इसके साथ साथ स्टार्टअप इंडिया के तहत नए उद्यमों को पंजीकरण कराने की सरल प्रक्रिया, कर में छूट, वित्तीय सहायता, बौद्धिक संपदा अधिकार, सहमति सहायता तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाता है। इसके साथ साथ इसमें युवाओं को अपने नए विचारों को व्यवसाय के रूप में देने का अवसर भी मिलता है। हम अब बात कर लें, इसमें यह योजना तकनीकी, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ई कॉमर्स और अन्य

0: में नवाचार को प्रोत्साहित करती है और इसके परिणाम स्वरूप देश में हजारों नए स्टार्टअप स्थापित हुए हैं। प्रियंका बहन जैसे कि जिन्होंने रोजगार में अनेक अवसर पैदा किए हैं, उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान की है।
1: बिल्कुल, और कोई भी व्यवसाय शुरू करना होता है तो सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो होती है धन की समस्या। हाँ। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए लोन की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें कि आपका जो भी स्टार्टअप है उसके साइज और आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से आपको 20 लाख से लेकर 50 लाख तक का लोन आसानी से मिल सकता है। तो स्टार्टअप इंडिया के इस जो कार्यक्रम है इसमें युवाओं को अधिक से अधिक भागीदार होना चाहिए ताकि इस योजना को
0: भरपूर लाभ उठा सके, जिससे उनको वो अपने उद्यमी बन सकें।
1: बिल्कुल, और अब सुनवाते हैं जयप्रकाश शर्मा की आवाज में ये उपदेश।

0: प्रियंका बहन, अभी हमारे किसान भाई बहन सुन रहे थे, ये उपदेश कलाकार थे जयप्रकाश शर्मा।
1: देखिए लोकेंद्र भाई, किसानों के लिए मौसम की सटीक जानकारी हो जाए अगर प्राप्त, तो फसलों को भारी नुकसान से बचाया जा सकता है। किसान अपने मोबाइल पर मेघदूत ऐप के जरिए अपने ब्लॉक स्तर पर मौसम का पूर्वानुमान और कृषि सलाह प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा IMD और मौसम ऐप का उपयोग करके भी हर रोज मौसम की ताज़ा अपडेट और बारिश का अलर्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें सटीक जानकारी दी जाती है मौसम विभाग द्वारा। इस ऐप में तापमान, बारिश और आंधी की सटीक जानकारी किसान भाइयों को मिलती है, और अगर समय रहते सटीक जानकारी मिल जाए तो उसका लाभ किसान भाइयों को होता ही है।
0: हाँ।
1: और देखिए, अगर हम बात करें अपने कार्यक्रम की, तो कल है शनिवार, और शनिवार को हमारे श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम फोन इन कार्यक्रम, जो कि लोकगीतों पर आधारित होता है, जिसमें हमारे श्रोता फोन के जरिए हमें अपनी पसंद से अवगत कराते हैं और हम उनके पसंद के कलाकारों को और उनके पसंद के गीतों को कार्यक्रम में शामिल करते हैं।
0: हाँ।
1: तो कल 6:30 पर हेलो ग्राम संसार कार्यक्रम सुनना बिल्कुल ना भूलिए। और अगर कार्यक्रम का हिस्सा आप भी बनना चाहते हैं, तो कार्यक्रम के दौरान आपको फोन नंबर और रिकॉर्डिंग का समय, हर एक जानकारी विस्तृत रूप से दी जाएगी। तो 6:30 पर हेलोग्राम संसार कार्यक्रम सुनना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही आज का कृषि जगत कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को
0: राम राम। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारासर और संयोजक शिवनंदन लाल।

श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम कृषि जगत, यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। और आइए अब सुनते हैं गजल और कव्वाली के कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ खूबसूरत सी कव्वालियां।

0: श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे गजल और कव्वाली के कार्यक्रम का। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब से बस कुछ ही पलों में सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दो?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। सूर्य
0: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, भारत मजबूत वैश्विक विकास इंजन के रूप में उभर रहा है। मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दिल्ली नगर निगम ने स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। तुगलकाबाद में रिहायशी इमारत में लगी भीषण आग में 3 लोगों की मौत। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। और दिल्ली सरकार ने ब्रिटानिया चौक का नाम बदलकर अश्विनी चोपड़ा चौक किया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत वैश्विक विकास इंजन के रूप में उभर रहा है। नई दिल्ली में आज मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्रीमती गुप्ता ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में कहा कि भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के तौर पर पहचाना जा रहा है।
3: प्रधानमंत्री जी की जन कल्याणकारी नीतियों, दूरदर्शी सोच और कुशल नेतृत्व के परिणाम स्वरूप बीते 12 वर्षों में भारत ने खेत खलिहान से लेकर चंद्रयान तक और गांव की चौपाल से लेकर वैश्विक मंचों तक अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 12 वर्षों में भारत ने जो यात्रा तय की है वो असाधारण है। आज का भारत वैश्विक

0: एजेंडा को प्रभावित करने वाला है, दुनिया को दिशा देने की क्षमता रखता है और ये सब कुछ संभव यदि हुआ है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजन के कारण, उनके नेतृत्व के कारण।
1: मुख्यमंत्री ने बताया कि अब भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता देश बन गया है।
0: प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत 6 करोड़ से अधिक लोगों को डिजिटल एम्पावरमेंट मिला और भारत नेट प्रोजेक्ट के माध्यम से लगभग 2 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा गया। मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत अभियान से भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में नई पहचान दी गई। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन लगभग 6 गुना ज्यादा बढ़ा है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर बन गया है।
1: दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 4.5 लाख किलोमीटर की ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बनी हैं और आज एक भी गांव नहीं है जो हाईवे से न जुड़ा हो।
2: 12 वर्षों को देखें तो भारत की जनता और सरकार के बीच हमें उस मजबूत विकास की कहानी कहते हैं जिसने भारत को दिशा दी और दशा को बदला है। 2014 से पहले 18,000 गांवों में लाइट नहीं थी। उन्होंने संकल्प लिया और 4 साल में ये संकल्प पूरा किया और उसके अगले 4 साल में हर घर में बल्ब जला। आज 15 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचा है। आज चाहे किसान हो, युवा हो, महिला हो, गरीब हो, हर वर्ग के लिए प्रधानमंत्री जी ने काम किया है।
1: दिल्ली नगर निगम ने आज से अपने सभी 12 जोन में विशेष स्वच्छता और साफ सफाई अभियान का शुभारंभ किया। अभियान 20 जून तक जारी रहेगा। ये अभियान मोदी सरकार के 12 वर्ष के राष्ट्रव्यापी उत्सव के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से स्वच्छ भारत मिशन जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों को प्रदर्शित करना और स्वच्छता, कचरा प्रबंधन तथा नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार के प्रयासों को और सुदृढ़ करना है। इस अवसर पर उप महापौर डॉ मोनिका पंत ने शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र के करकरडूमा गांव में आयोजित विशेष स्वच्छता अभियान में भाग लिया। दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश साहिब सिंह ने आज जल बोर्ड मुख्यालय में पानी के टैंकर का कमांड और कंट्रोल सेंटर और SCADA प्रणाली का निरीक्षण किया। उन्होंने राजधानी में टैंकर ऑपरेशंस की निगरानी प्रणाली का जायजा भी लिया। श्री सिंह ने 1916 हेल्पलाइन पर मिलने वाली शिकायतों पर कार्रवाई की प्रणाली की भी समीक्षा की। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अधिकारियों को शिकायतों पर कार्रवाई के समय में और सुधार करने तथा समस्याओं का समाधान और भी तेजी से करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि समय पर पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना और नागरिकों की समस्याओं का तेजी से समाधान करना दिल्ली सरकार की प्राथमिकता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन सराय काले खां की ओर स्थित दूसरे प्रवेश द्वार के पुनर्विकास का कार्य शुरू हो गया है। नमो भारत फुटओवर ब्रिज को रेलवे फुटओवर ब्रिज के साथ जोड़ने और एक अस्थायी बुकिंग कार्यालय की व्यवस्था का कार्य पहले ही पूरा कर लिया गया है जिसे मई 2026 में यात्रियों के लिए खोल दिया गया। श्री उपाध्याय ने बताया कि यात्री सुरक्षा के हित में और कार्य के सुचारू निष्पादन के लिए सराय काले खां की ओर स्थित रेलवे स्टेशन का मौजूदा प्रवेश और निकास द्वार दोबारा बंद कर दिया गया है। राजधानी के तुगलकाबाद क्षेत्र में आज सुबह एक रिहायशी इमारत में लगी भीषण आग में 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार आग इमारत के भूतल स्थित पार्किंग क्षेत्र में लगी जहां खड़ी कुछ मोटरसाइकिलें और स्कूटर इसकी चपेट में आ गए। इसके बाद आग पूरी इमारत में फैल गई।
3: दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार सुबह 2:25 पर घटना की सूचना मिलने के बाद आग बुझाने के लिए 8 दमकल गाड़ियां भेजी गई। राहत और बचाव अभियान के दौरान 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्रीमती रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर कहा कि तुगलकाबाद में आग लगने की घटना और इससे हुई जान माल की हानि बेहद दुखद है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। मुख्यमंत्री ने बताया कि घायलों को हर संभव बेहतर इलाज मुहैया कराया जा रहा है और

0: प्रभावित परिवारों को हर जरूरी मदद दी जा रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और सभी संबंधित विभाग समय पर मदद और सहायता पहुंचाने के लिए आपसी तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए सरफिरोजी।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मालवीय नगर और सैदुलजाब में आग की घटनाओं में लोगों की जान बचाने वाले बहादुर नागरिकों और बचाव कर्मियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन बहादुर नागरिकों ने संकट के समय कई लोगों की जान बचाने में असाधारण साहस, सूझबूझ और संवेदना का परिचय दिया। उन्होंने इन दुर्घटनाओं में मारे गए नागरिकों को श्रद्धांजलि दी और पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की। दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी ने राजधानी में सार्वजनिक यातायात की पहुंच को और ज्यादा बेहतर बनाने और लास्ट माइल कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसी क्रम में डीटीसी ने एक नया रूट 806A का शुभारंभ किया है। एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली के द्वारका मोड़ और पापरवत गांव के बीच पायलट आधार पर शुरू किया गया नया रूट 800A सेवा पापरवत गांव, नांगली, सकरावती, काकरोला और आसपास के इलाकों के नागरिकों को सीधा बस कनेक्टिविटी देगी। यह मार्ग दक्षिण पश्चिम दिल्ली के ग्रामीण और शहरी सीमावर्ती इलाकों में बेहतर सार्वजनिक परिवहन सेवाओं की लंबे समय से चल रही मांग को पूरा करता है। फर्स्ट और लास्ट माइल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए डीटीसी ने देवी रोड D6606 को शुरू किया है, जो उत्तम नगर टर्मिनल को डीडीए फ्लैट बकरवाला से जोड़ता है। दिल्ली के यातायात कनेक्टिविटी को और मजबूत करते हुए डीटीसी ने रूट नंबर RL79 को द्वारका सेक्टर 23 पोचनपुर से आगे बढ़ाकर द्वारका सेक्टर 23B महादेव अपार्टमेंट्स तक कर दिया है। इस अवसर पर दिल्ली परिवहन मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह ने कहा कि नए विकसित हो रहे रिहायशी इलाकों और बाहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आवागमन की जरूरतों और बेहतर सार्वजनिक परिवहन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इन मार्गों को जोड़ने और विस्तार करने की योजना बनाई गई है। परिवहन मंत्री ने कहा कि यह पहल सार्वजनिक परिवहन को अधिक समावेशी, किफायती और सुविधाजनक बनाने के साथ साथ पूरी दिल्ली में सतत और ग्रीन मोबिलिटी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की सरकार की लगातार कोशिश को दर्शाता है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
1: नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने राजधानी में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए डेवलप रिस्पॉन्सिबल आउटलुक फॉर प्लास्टिक परियोजना DROP का शुभारंभ किया। यह पहल प्लास्टिक अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रबंधन को सुदृढ़ करने, पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए जनभागीदारी को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने आज डॉ बीआर आम्बेडकर वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया। इस दौरान श्री सिंह ने अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया, सुरक्षा व्यवस्थाओं और आवश्यक तैयारियों की समीक्षा की। इसके अलावा समाज कल्याण मंत्री ने सिविल लाइन्स स्थित अपने आवास पर प्रगति पथ यात्रा के संबंध में बैठक की अध्यक्षता की। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक में कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी, जनोन्मुखी तथा व्यापक बनाने के लिए विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। दिल्ली के ब्रिटानिया चौक का नाम बदलकर अब अश्विनी चोपड़ा चौक कर दिया गया है। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस नाम पट्टिका का अनावरण किया। दिवंगत अश्विनी चोपड़ा वरिष्ठ पत्रकार, समाजसेवी और करनाल से पूर्व सांसद थे। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि इस चौक का नाम बदलना बहुत ही सुखद पल है।
3: आज एक खुशी का मौका है कि इस चौक को दिल्ली सरकार ने मिन्ना चौक के नाम से निमंत्रण किया है और इस चौक को हम सबका फर्ज है, सरकार का भी है, लेकिन आप सबका है कि ये दिल्ली का सबसे साफ सुथरा और अच्छा चौक कहलाया जाए।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि दिवंगत अश्विनी चोपड़ा का जीवन जनसेवा, संवेदनशीलता और सामाजिक मूल्यों के प्रति समर्पित रहा।
4: समाज के उन प्रबुद्ध नागरिकों को जिनका समाज के लिए योगदान रहा है, ऐसे वरिष्ठ जनों को सम्मानित करने के लिए किसी चौक चौराहे का नाम रखते रहे हैं। आज ये चौक जो पूर्व में ब्रिटानिया चौक कहलाता था, पुण्यतिथि जो अश्विनी चोपड़ा जी की है, हमने ये तय किया कि इस चौक का नाम अश्विनी को चोपड़ा मिन्ना रखा जाए, ताकि एक ऐसे निर्भीक पत्रकार जिन्होंने हमेशा समाज और देश की आवाज बनकर के काम किया, उनको सरकार की ओर से सम्मानित किया जाए।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। केंद्रीय

मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्री अमरनाथ यात्रा करने वाले भक्तों को सुरक्षित और सुगम तीर्थ यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में ये बात कही। गृहमंत्री की अध्यक्षता में इस बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की गई। कैबिनेट सचिव डॉ टीवी सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। श्री सोमनाथन ने कहा कि केन्द्र सरकार, राज्य सरकारें और जिला प्रशासन पुनर्परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का आज नई दिल्ली के अस्पताल में निधन हो गया है। वे 49 वर्ष के थे। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, खेल मंत्री मनसुख मांडविया, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और विधानसभा अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने जसपाल राणा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारतीय निशानेबाजी को नई पहचान दिलाने और अनेक खिलाड़ियों का मार्गदर्शन देने में जसपाल राणा का योगदान सदैव याद किया जाएगा। राजधानी में आज दिनभर उमस भरी गर्मी रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल बादल छाए रहने तथा दोपहर के बाद हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, भारत मजबूत वैश्विक विकास इंजन के रूप में उभर रहा है। मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दिल्ली नगर निगम ने स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। तुगलकाबाद में रिहायशी इमारत में लगी भीषण आग में 3 लोगों की मौत। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। और दिल्ली सरकार ने ब्रिटानिया चौक का नाम बदलकर अश्विनी चोपड़ा चौक किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनिए आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष में नाटक रेडियो के रंगमंच। आइए सुनते हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष में आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष विशेष रेडियो नाटक रेडियो का रंगमंच के संपादित अंश। लेखिका सुनीता अग्रवाल, निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी।
1: नमस्कार। आकाशवाणी के प्रसारण भवन में भारत रत्न पंडित रविशंकर स्टूडियो में मैं नीलम मलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूं। आदरणीय अतिथिगण, सम्मानित श्रोता और उपस्थित सभी कला प्रेमियों का अभिनंदन इस विशेष कार्यक्रम में। आज का ये अवसर अत्यंत विशेष और ऐतिहासिक है। हम सब यहां एक ऐसे संस्थान की गौरवशाली यात्रा का उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं जिसने 9 दशकों से देश की आवाज बनकर करोड़ों लोगों के जीवन को गहरे से छुआ है। आकाशवाणी के 90 वर्ष केवल समय की यात्रा नहीं बल्कि संस्कृति, साहित्य, संगीत, समाचार और जन जागरण की एक समृद्ध परंपरा के 90 स्वर्णिम अध्याय हैं। रेडियो ने केवल सूचनाएं ही नहीं पहुंचाई हैं बल्कि कल्पनाओं को पंख दिए हैं, संवेदनाओं को स्वर दिया है और कहानियों को जीवन दिया है। विशेष रूप से रेडियो नाटक की अगर बात की जाए तो रेडियो नाटक ने श्रोताओं के मन मस्तिष्क पर अमिट छाप छोड़ी है। इस बात से आप सभी सहमत होंगे। बिना दृश्य के केवल ध्वनि, संवाद और संगीत के माध्यम से संपूर्ण संसार रच देना अपने आप में बेहद रहस्यपूर्ण है, लेकिन रेडियो ने ये सब साकार किया है। यही रेडियो रंगमंच की अद्भुत शक्ति रही है। इसी विरासत को नमन करते हुए आज आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है विशेष नाटक रेडियो का रंगमंच। ये नाटक न केवल रेडियो नाटकों की समृद्ध परंपरा की एक अटूट कड़ी है बल्कि उन कलाकारों, लेखकों, निर्देशकों और तकनीशियनों को भी श्रद्धांजलि अर्पित हम कर रहे हैं इसके माध्यम से जिन्होंने ध्वनियों के माध्यम से

0: अनगिनत संसार रचे हैं। तो आइए हम सब अपनी कल्पना के द्वार खोलें, ध्वनियों के इस जादुई संसार में प्रवेश करें और रेडियो रंगमंच की उस अनूठी यात्रा का आनंद लें जिसने पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध किया है। आज की प्रस्तुति नाटक रेडियो का रंगमंच, सभी कलाकारों को आदर भाव से मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूं, कृपया मंच पर आएं। और तर्तल ध्वनि से हम स्वागत कर रहे हैं सभी कलाकारों का।
1: बहुत ही बुरा लग रहा है। अरे यार,
0: हेलो हेलो हेलो हेलो
1: यार, मैं चाह रहा हूं दो मिनट को
2: आज तक टेंशन में रहता हूँ।
0: चुप चुप चुप चुप चुप, बिल्कुल टेंशन में नहीं, अटेंशन में आ जाइए।
2: ठीक,
0: सब तैयार हैं?
2: जी जी जी,
0: आप भी सब तैयार हैं?
3: जी।
0: तो लीजिए पोजीशन माइक पे, मैं पैनल पर जा रही हूँ। अच्छा, एक रिहर्सल हो जाए या सीधे ही रिकॉर्डिंग?
2: क्या मैडम, अब आप हमसे रिहर्सल करवाएंगी? आपको तो पता है, आप जो भी रोल देती है एक्टिंग एक जैसी करता हूँ।
4: मैं तो देखिए बिना रिहर्सल के माइक पर हाथ नहीं रखता हूँ।
2: रखना भी मत, बहुत खतरनाक करंट लगता है। जोर का झटका धीरे से लगता है।
4: शुरू करें मैम?
3: क्या,
0: ओहो गीता जी, स्टूडियो में रहिए, शॉपिंग करने बाद में जाइएगा।
3: अच्छा, रिकॉर्डिंग से पहले या बाद में जाना है?
0: मैंने कहा ना, रिकॉर्डिंग से पहले नहीं, रिकॉर्डिंग के बाद चाहिए शॉपिंग पर।
3: आप भी वैसे बहुत मजाकिया है डायरेक्टर साहब।
0: सचिन
2: जी,
0: आप शुरू हो जाएं।
2: अच्छा,
0: ये क्या, मैं अभी गाना गाना है क्या? हाँ गाना है, आपने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी क्या? अरे आप इस नाटक में उभरते हुए सिंगर हैं और आपकी माताजी का ये सपना है कि वो आपको एक महान सिंगर बनाएं।
4: और मैम, मैंने तो सोचा था कि आप बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ मतलब पीछे से कुछ लगाएंगे गाना।
2: अरे भाई, गायक तो होनी ना।
5: नर्वसा क्या रहे हो भाई, काहे मुश्किलिटी है? क्यों क्यों सुरिंदर?
4: बिल्कुल हम आपके साथ हैं।
0: हाँ, लेकिन कीमती जी, आपको सचिन के गाने को रोकना होगा क्योंकि ये बहुत बेसुरा गाएगा यहाँ नाटक में। वैसे मुझे समझ नहीं आता, आप लोगों ने लगता है स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी अब तक और मुझे ही सब कुछ बताना पड़ रहा है, ये क्या बात हुई?
4: अरे नहीं नहीं नहीं नहीं मैम, हमने स्क्रिप्ट पढ़ ली है। अरे एक रिहर्सल भी की हमने।
3: बिल्कुल बिल्कुल,
4: मालूम है कॉमेडी स्क्रिप्ट है ना, तो सब उसी मोड में है आज।
3: और शायद आपको तंग करने के मूड में भी।
0: ऐसे नहीं, क्यों भाई, क्या पिछले नाटक की पेमेंट नहीं हुई अब तक?
3: अरे नहीं नहीं मैडम जी, वो तो आप सबसे पहले करवाते हो, यही तो तारीफ है आपकी।
4: जी।
3: ये बात और है कि कभी कभी हाथ बंधे हो तो कह नहीं सकते।
2: ये तो है भाई। चलो भाई सचिन, गंदे बच्चे अच्छी बात नहीं करते। अरे नहीं, मेरा बताओ, अच्छे बच्चे गंदी बात नहीं करते। स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग शुरू हो जाओ। चलो शुरू करो मैम।
0: एक मिनट एक मिनट, भूल गए क्या, पहले आवाज का लेवल तो दे दो, चेक कर लो।
1: वो भी जरूरी है।
6: हेलो, मैं सचिन कथुरिया, आज के नाटक में मेरा कैरेक्टर है उभरता हुआ गायक या सिंगर।
0: परफेक्ट सचिन। गीता जी, अब आपकी बारी है।
3: हेलो हेलो, मेरा नाम गीता वर्मा है, आज के नाटक में मेरा कैरेक्टर है उभरते हुए सिंगर की माँ।
0: लेकिन गीता जी, आप शायद भूल गई हैं कि आपको माइक के थोड़ा पास आना पड़ता है और थोड़ी हाइट लेनी पड़ती है, है ना? करिए ना।
3: जी। हेलो हेलो, मेरा नाम गीता वर्मा है।
0: हाँ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कीमती जी, अब आप।
2: हेलो हेलो, मेरा नाम है कीमती आनंद, रखता हूँ सफाई, नहीं डालता गंद। नाम तो सुना होगा, नाम ही काफी। और मेरा कैरेक्टर है इस नाटक में उभरते हुए गायक के गुरुजी का।
0: परफेक्ट कीमती जी। पर वैसे डालेंगे ना आप?
2: अरे जी जी बिल्कुल, मैं तो सिंगर ही बनना चाहता था।
0: ओ।
2: पर मोहम्मद रफी साहब ने कहा कि देख, तुझे तो एक्टिंग भी आती है और मुझे सिर्फ गाना आता है, तू क्यों मेरे पेट में लात मार रहा है? तू एक्टिंग करके कमा, था मुझे गाकर कमाने दे।

0: तो कुर्बानी दे दी मैंने मैडम, वरना आज मैं बहुत बड़ा कलाकार होता। हाँ
1: पता नहीं मोहम्मद रफी साहब का शुक्रिया हम कैसे अदा करें। शुक्रिया मोहम्मद रफी साहब आपका। वैसे जहे नसीब हमारे कीमती जी, आपकी कुर्बानी हमारे काम आ गई।
2: थैंक यू
1: सागर जी।
3: जी जी मैम,
1: आपकी टर्न है, लेवल दे।
3: हाँ जी। हेलो हेलो हेलो हेलो, मैं सुरेंद्र सागर। आज के नाटक में मेरा कैरेक्टर है उभरते हुए सिंगर के फादर का, यानी
1: वैसे मैं नोटिस कर रही थी कि आप लोग भी ना एक दूसरे को सही पकड़ते हैं। एक ने बोला एक बार हेलो, दूसरे ने बोला दो बार हेलो, तीसरे ने बोला वैसे बोलना तीन बार था, बोल दो बार गए हेलो, और चौथे कैरेक्टर ने चार बार बोला हेलो। भाई आप लोगों का तो जवाब नहीं है।
4: हेलो हेलो हेलो,
3: कीमती जी का सर आ गया जी हम सब पर।
1: वैसे सागर जी आप बहुत ऊंचा बोलते हैं, कई बार आपको बताया है, जरा हल्का सा माइक से दूर हो जाइए ना, थोड़ा सा अब बफ ना आए ना, ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें।
3: अब आने दीजिए ना मैम, वैसे भी आजकल काम तो आ नहीं रहा
1: है। वैसे ठीक है, कोई पंच मार रहे हैं आप, कुछ भी कर ले, लेकिन कीमती जी नहीं बन पाएंगे। चलिए तो फिर स्टार्ट करें। सचिन माइक पोजिशन, ओके ग्रेट, लेट अस स्टार्ट।
5: मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, मेरठ में मेरी मौसी है और जमुना पार में नानी है। अरे किसका बच्चा रो रहा है भाई?
6: अजी हमारा ही तो है।
3: अरे इसे चुप कराओ प्लीज, प्लीज इसे चुप कराओ, वरना मैं इसकी हस्ती दो पल में नहीं एक ही पल में मिटा दूंगा, खत्म कर दूंगा।
6: ओफो आपको शर्म नहीं आती जी अपने बच्चे के बारे में ऐसा कहते हुए? हाय हाय, ईश्वर करे हमारे बच्चे की हस्ती बढ़े, वो नामवर गायक बने।
3: अरे क्यों बने, गायक ही क्यों बने, अरे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सरकारी नौकर बने, पर गायक ही क्यों बने?
6: क्यों ना बने, मैं कहती हूँ क्यों ना बने। हाँ अजी, ये मेरे बचपन का सपना था, मैं गायिका बनना चाहती थी, पर आपने आपने मेरे ख्वाबों को कुचल कर रख दिया।
3: मैंने तुम्हारे ख्वाबों को कुचल कर रख दिया? कब, कैसे, कहाँ?
6: 20 अप्रैल 2001 को, जब तुम मेरे घर बारात लेकर आए थे।
3: अच्छा, तो तुम उस दुर्घटना की बात कर रही हो जिसका परिणाम ये पल दो पल का शायर है।
5: परदेसी परदेसी जाना नहीं, परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के सुन रहा परदेसी मेरे जाना नहीं,
3: परदेसी परदेसी आना नहीं।
5: क्यों नहीं आएंगे, आएंगे वो।
3: आके तो दिखा तू, मैं इसका काम ना तमाम कर दूं तो मेरा नाम। अरे गीता छोड़, छोड़ मुझे, अरे तुम छोड़ मुझे।
6: अरे हमें पकड़े ही कब है?
4: मम्मी देखो हम पापा मेरे गाने से कितना बर्न फील करते हैं, जलते हैं।
3: बेटा मैं कितना वितना नहीं, पूरा जल चुका हूँ अंदर तक। तो एक बात बताओ भाई, तुम तो डांसर बनना चाहते थे ना?
4: हाँ।
3: और तुम तो वो मुंबई गए थे, वो कौन सा कंपटीशन होता है वहाँ गए थे ना?
7: अरे सागर भाई, मैं भी मुंबई गया था।
3: अच्छा,
7: गाने के कंपटीशन में हिस्सा लेने। मैंने दो ट्रॉफी जीती थी।
3: दो?
7: हाँ।
3: दो क्यों?
7: पहले इसलिए कि मैंने गाना गाया, दूसरे इसलिए कि आगे से ना गाऊं।
1: कीर्ति जी क्या करते हैं आप, फिर से नाटक के बीच में अपना नाटक लेकर आ जाते हैं, ऐसा मत करिए ना प्लीज।
7: चलो सॉरी के लिए
3: मैं अपनी लाइन बोलूं,
7: सॉरी के लिए माफी चाहता
1: हूं। मैं फिर से क्यों देती हूँ, क्यों देती हूँ। स्टार्ट।
3: भाई तुम तो कंपटीशन में गए थे ना डांस वाले में, क्या हुआ उन्होंने धक्के देके वापस भेज दिया दिल्ली?
4: हाँ तो मुझे मतलब सुरों का ज्ञान नहीं था, कंपटीशन में गया था मैं डांस के, जब सुरों का ज्ञान नहीं होगा तो पैर पैर से डांस कैसे करूंगा मैं, कैसे स्टेप लूंगा। उन्होंने बोला कि जाओ पहले म्यूजिक को सीख के आओ, तो इसलिए मैंने गाना सीखना शुरू किया अपने डांस करने के लिए, समझे? हाँ। और मम्मी ये पापा ना मेरी बार बार बेइज्जती करते हैं, और वो इतनी बेइज्जती मत कराएगा ना मुझे, मेरी बेइज्जती बड़े बर्दाश्त नहीं है, मैं बता रहा हूँ मेरी बेइज्जती कर दूंगा।

0: अरे बेटा सचिन,
1: मम्मा
0: तुम इनकी चिंता छोड़ो ना, अब तो रियाज शुरू करो। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं खो ना जाए चेहरा।
2: ईश्वर ईश्वर उठा ले मुझे,
0: नहीं ईश्वर मुझे उठा ले,
2: मुझे उठा ले,
0: मुझे उठा ले,
2: मुझे उठा ले,
0: मुझे उठा ले,
2: मुझे उठा ले,
0: मुझे उठा ले।
2: ठीक है प्रभु, लेडीज फर्स्ट, उठा ले।
1: क्या बात कर रहे हो यार?
3: माँ वैसे एक बात बोलूं,
1: और कितना अच्छा गाते हैं, बस थोड़ा बहुत राग ऊपर नीचे हो जाता है, एक दो घंटे में ऐसा।
4: कट कट वो बोलने दो ना इनको, अपना डर लगा, आपके साथ तो वैसे चैना नहीं, बेचैना ही हो सकता है।
0: नहीं नहीं नहीं, आपने कहना है ना,
2: हाँ हो गया, भगवान इसको उठा ले, उसके बाद
0: आपने कहना है
4: शांति शांति शांति शांति शांति स्टार्ट।
2: ईश्वर उठा ले मुझे, उठा ले मुझे,
0: मुझे उठा ले,
2: मुझे उठा ले,
0: मुझे उठा ले,
2: मुझे उठा ले,
0: मुझे उठा ले,
2: मुझे उठा ले,
0: मुझे उठा ले।
2: ठीक है प्रभु, लेडीज फर्स्ट, पहले इसको उठा ले।
1: अरे भाई कहना नहीं रहना होता है, रहना रहना रहना।
0: अरे आपके साथ रहकर किसे चैन मिल सकता है, इंसान तो बेचैन ही रहेगा, रहना का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यस,
3: और मम्मा आप कितना अच्छा गाती हो, आपको पता है?
1: बस थोड़ा बहुत राग ऊपर नीचे, एक दो घंटे रियाज कराऊंगा और सब साफ, एकदम से गला साफ, मतलब आवाज साफ, बहुत बढ़िया। अच्छा मम्मी, वो मेरे गुरुजी आने वाले हैं, तो कुछ बढ़िया सा खाने को मंगवा लीजिए।
0: जैसे क्या?
2: जहर
0: अभी लाई
1: मम्मी। जहर जहर जहर पिज्जा का नाम क्यों होता है? अरे मैं बोल रहा हूँ, दो चार पिज्जा, दो चार सैंडविचेस एंड बर्गर्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स एंड थोड़ी बहुत आइसक्रीम मंगा लेना, है ना? एक्चुअली क्या है, उससे ना मेरा गला एकदम से ठीक हो जाता है रियाज, जब मैं करता हूँ ना गला बैठता है, आइसक्रीम खाता हूँ गला खड़ा हो जाता, तो एकदम से ठोस आवाज हो जाती है।
2: ये मेरी औलाद है क्या?
1: हाँ,
2: ये ऐसी क्यों है भगवान, लगता है मेरी किस्मत ही खराब है।
0: अजी कैसी बातें कर रहे हैं आप, अपने बच्चे के बारे में कोई ऐसे अनाप शनाप बोलता है क्या? हा? आपको नहीं पता जी, जिस गुरुजी ने मुझे सिखाया था ना, वही अपने सचिन को सिखा रहे हैं गाना
1: जी।
0: मुझे पक्का विश्वास है वो एक ना एक दिन हमारा नाम जरूर रोशन करेगा,
1: जैसे तुमने किया है।
0: मैं तो कर ही देती, पर वो 20 अप्रैल 2000 सॉरी डायरेक्टर साहिबा रिपीट।
4: क्या करती हैं आप गीता जी, अपनी अटेंशन में रहिए ना। देखिए रिपीट नहीं होता है, रीटेक हो जाता है। हाँ प्लीज प्लीज, हाँ
0: स्टार्ट करूँ?
4: हाँ करिए स्टार्ट।
0: मैं तो कर ही देती, पर 20 अप्रैल 2001 ने मेरी जिंदगी खराब कर दी।
1: बांसुरी बजाई, बांसुरी बजाई क्या तेरे मन भाई, राधे तूने बांसुरी बजाई।
2: अरे सर सर सर सर सर सर, राधे के तूने बांसुरी चुराई है, बजाई नहीं है।
4: मैं बीच में कहाँ से आ गई नाटक में, आप नाटक करिए ना। देखिए प्लीज प्लीज, यही है कि आपने इन्हें करेक्ट करना था, टोकना नहीं था, लेकिन मुझे रेफर नहीं करना था, स्क्रिप्ट पे जरा फोकस करिए ना सुरेंद्र जी।
2: सॉरी सॉरी सॉरी सॉरी सर, एक बार और लेते हैं सर,
4: एक मिनट
2: सर, एक बार
1: स्टार्ट। राधे तूने बांसुरी बजाई बजाई।
2: सर
1: ठीक है,
2: राधे के तूने बांसुरी चुराई है, बजाई नहीं।
1: जब तक मेरी फीस नहीं मिलती ना, बांसुरी राधे ही बजाएगी। ऐसे हु आर यू, आप कौन वाजे हैं?
0: चरण वंदना गुरु जी, चरण वंदना। ये मेरे पति देव है गुरु जी।
1: पति देव? नहीं, ये देव नहीं है, ये प्रतिभा के रास्ते में आए हुए अदेव हैं, असुर हैं। असुर वो नहीं होते जिन्हें हम राक्षस समझते हैं।

0: असुर वो होते हैं जिनके पास ना सुर का ज्ञान होता है ना सुर की समझ, और वो अपनी असुरी आवाज से दुनिया का सत्यानाश करते फिरते हैं, जैसे तुम्हारे ये पतिदेव। इन्हें जितनी जल्दी से हो यहाँ से हटा दो, वरना जैसे तुम कुछ नहीं बन पाए वैसे तुम्हारा बेटा भी कुछ नहीं बन पाएगा।
1: क्या
0: हो जाए?
2: नहीं
1: कट कट गीता जी, पता नहीं आप कहाँ गुम हो जाती हैं। नहीं नहीं नहीं करके थोड़ी बोलना है, नहीं कीजिए प्लीज, जोर से कहिए। ओके नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी।
3: सही पकड़े हैं गुरुजी। आप कहें तो सुपारी दे दूं क्या इनकी?
0: पहले मेरी फीस तो दे दे।
3: अरे
0: दो दिन हो गए मेरी फीस नहीं आई अभी तक।
4: मतलब ये रोज के पैसे लेते हैं?
2: जी मेरे गुरुजी ऐसे ही हैं, ये रोज के ही पैसे लेते हैं।
0: करेक्ट।
4: कितने पैसे लेते हैं?
2: अरे ज्यादा थोड़ी लेते हैं, बस एक घंटे के 5,000।
4: एक घंटे के 5,000?
2: अरे चिंता क्यों कर रहे हो, डिस्काउंट देते हैं अच्छा खासा। वो भी इसलिए क्योंकि मैंने इनसे गाना सीखा है, नहीं तो ये किसी को डिस्काउंट ना दे। एक पैसा भी कम नहीं करते।
4: अच्छा कितना डिस्काउंट देते हैं तुम्हारे गुरुजी?
0: 4,999 रुपए लेता हूँ डिस्काउंट के साथ। इससे ज्यादा क्या कम करूँ बताओ, इससे ज्यादा क्या कम करूँ बताओ, इससे ज्यादा क्या कम करूँ बताओ। अरे वाह, मैं तो खड़े खड़े गाना भी बना लिया मैंने तो। हूँ ना मैं जीनियस, मेरी कला को कब पहचाने?
3: आप तो पूरे 5,000 के लायक हैं, आप डिस्काउंट मत दीजिए। कि
4: जिस दिन आप लोगों के हाथ आ गए ना गुरुजी, उस दिन आप कई दिनों तक अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे।
0: क्या क्या क्या कहा तुमने?
2: अरे गुरुजी कुछ नहीं कुछ नहीं, इनका मतलब है कि आपने इतना ज्यादा डिस्काउंट क्यों कर दिया पूरे 1 रुपए का।
0: मैं गरीबों पर दया कर देता हूँ।
3: वैसे तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा गाता है,
0: ये बहुत आगे जाएगा, मेरा नाम रोशन करेगा, मेरा नाम करेगा रोशन, ये तुम्हारा राज दुलार।
3: मोल नहीं बोलता मैं भाई, बहुत ऊपर वाले का मत करे, थैंक यू। अच्छा मैंने ना एक बार गाना बनाया, लिखा भी है, कंपोज भी किया है,
0: सुनो।
3: सुना? मैं सुनाई देता हूँ, चलो।
0: शायद मेरी शादी का ख्याल।
1: स्टॉप, क्या कर रहे हो सचिन? कैरेक्टर से बाहर निकल आए।
3: क्यों?
1: शायद नहीं कहना आपने, शायद कहना है।
0: शायद,
1: हाँ। और ख्याल नहीं ख्याल कहना है, तलफ्फुज भी गलत होना चाहिए और सुर भी गलत होना चाहिए। प्लीज प्लीज,
3: अंदर का सिंगर जाग गया था मेरा।
1: हाँ नहीं वो मत जगाओ, एक मिनट
3: सो जा बेटा।
1: स्टार्ट।
0: शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है।
3: ना
0: मैं चाय पे बुलाया है।
3: कट कट,
0: नहीं बेटा नहीं, इसे ऐसे गाना है।
3: हाँ।
0: इसका राग समझो,
3: हाँ।
0: सुर समझो,
3: हाँ।
0: फिर गाओ।
3: हाँ।
0: सुरीले बनो,
3: हाँ।
0: बेसुरे नहीं,
3: हाँ।
0: मूड समझो,
3: हाँ।
0: अब गाओ जसो।
3: हाँ।
0: मैं गाता हूँ।
3: हाँ।

0: तुम्हें चाय पे बुला बुला बुलाया
1: क्या बात
2: बस
0: थैंक यू
2: भाई। ये गाना सावन कुमार जी ने 1983 में लिख दिया था।
1: ओ माय गॉड रियली। देखा गुरु जी मैं कितना टैलेंटेड हूँ कि मेरे पैदा होने से पहले ही मेरे गीत चोरी होने शुरू हो गए थे।
3: मैं बताओ ना मैं इतना टैलेंटेड।
4: अरे मुझ पर गया है ना इसलिए।
2: बेटा मेरे बेटा तू टैलेंटेड नहीं
1: है,
2: तू मानसिक रूप से बीमार है।
3: क्या बात कर रहे हो।
2: अरे तू सिर्फ ऑफसेट इंसान है, तेरा इलाज होना बहुत

0: मैं आज ही किसी साइकेट्रिस्ट से अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ।
1: अरे ना ना ना, आप अपने लिए अपॉइंटमेंट ले लो अंकल। आप अपने बेटे से जेलस हो? जेलस
0: सुन रही हो? ये मुझे अंकल कह रहे हैं
1: तो क्या कहूँ, क्या कहूँ भाई साहब? सचिन से ज्यादा मैं बड़ा थोड़ी हूँ। हिसाब करोगे तो हो सकता है कि मैं सचिन से छोटा ही निकलूं।
2: फादर, मुझे तो हंसी सुनाई नहीं दी तुम्हारी, जोर से हंसो ना प्लीज।
0: अच्छा अच्छा,
1: एक बार हिसाब करोगे तो मैं हो सकता है कि छोटा ही निकलूं सचिन से।
0: वाह जी वाह गुरु जी वाह। अच्छा है तो आप सचिन से भी छोटे, पर सचिन की माँ गीता को भी आप ही ने संगीत सिखाया है। वाह गुरु जी वाह।
1: इसमें हैरानी की क्या बात है अंकल, मैंने तो सिखाया है इसे भी और कईयों को सिखाया है कि क्या क्या नाम लू मैं तुम्हारे सामने। अरे ऐसे ऐसे नाम लूंगा कि तुम्हारी छिट्टी पिट्टी दिल हो जाएगी।
0: यमराज को भी आप ही ने सिखाया
1: है सचिन। देखो तुम घबराना नहीं, जो लोग प्रतिभाशाली होते हैं उनके उनको रोकने के लिए ऐसे अंकल पैदा होते हैं। बेटा तुम्हें रोका जाएगा, तुम्हारे हौसलों को तोड़ा जाएगा।
3: यस yes.
1: पर तुम रुकना नहीं।
3: नो no.
1: गाते रहना
3: जी,
1: गाते रहने जी। गाते रहे मेरा दिल
4: गा, मेरे मन गा, मेरे मन गा, मेरे मन गा।
1: मेरी फीस ला, दूसरा घंटा चालू हो गया, 4999 ट्रांसफर करा।
2: गुरु जी बस अभी करवाती हूँ। अच्छा सुनते हो, ट्रांसफर करो ना जल्दी से फोन पे, जल्दी करो।
1: हो गए सर। ठीक है, हाँ आगे आगे। अच्छा मैं चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे स्वाद रखना,
0: मार डाला
1: दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम याद रखना, चिट्ठी तारों में मेरा तुम सलाम रखना, मेरा तुम सलाम रखना, मेरा तुम सलाम रखना।
0: अरे मेरे 5000 का ख्याल रखना, मेरे 5000, 5000 मतलब 1.5 लाख रुपए महीना लेकर ये इंसान मेरे बेटे को गायक नहीं, दुनिया के संगीत को तबाह करने वाला जहरीला फनकार बना रहा है ये आदमी। तुम लोग बनने दे रहे हो? अरे रोको इसे, डॉक्टर को दिखाओ।
1: सचिन अपने पापा को डॉक्टर को दिखाओ, वरना ये उभरते हुए टैलेंट्स को आगे नहीं आने देंगे।
0: सर मैं सोच रहा हूँ क्या गुरुजी की इनको अपना गाना सुना दूँ, है ना, हो सकता है ठीक हो जाए।
4: सोचता हूँ कि वो इतने मासूम थे, सोचता हूँ कि इतने मासूम थे, लापता हो गए देखते देखते, लापता हो गए।
1: अरे बेटा आओ, बेटा बेटा बेटा बेटा बेटा मेरे, लापता नहीं है ये, क्या से क्या हो गए देखते देखते। आपको लापता करना है अंकल, इसीलिए शायद आपको पता नहीं है संगीत में कितनी पावर है, शक्ति है। दीप जल जाते हैं, बारिश आ जाती है, तूफान आ जाते हैं, आप भी लापता हो सकते हैं। चलो सचिन गुरु हो जाओ शुरू, एक साथ गाते हैं ठीक है?
0: अरे गुरु जी चरण स्पर्श, आज पहली बार आपके साथ गाने का मौका मिल रहा
1: है। ऑल द बेस्ट। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, लापता हो गए देखते देखते।
4: सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, लापता हूँ गए देखते देखते।
0: क्या बात है गुरु जी,
1: वाह थैंक यू। मेरे पत्थर से जिनको बनाया था सनम, वो फना हो गए देखते देखते।
0: वो गुरु जी पत्थर क्या क्या मतलब आपने चुनाए?
1: मैं बताता हूँ बेटा, तीसरा घंटा
0: से जिनको बनाया सनम, कहता
1: है मेरी एक सुन ले, तीसरा घंटा होने वाला है 4999 ट्रांसफर करा जल्दी से, अपने पापा से बोल इस बारे।
4: मैं लाता था हो गया देखते देखते।
2: अभी सुनो, पैसे तो ट्रांसफर कर दो फिर लापता हो जाना। हाँ ट्रांसफर कर दो जी, सुन रहे हो? सुनते हो?
4: हेलो
2: हो गए गुरु जी, हो गए।
5: वाह भाई वाह, मजा आ गया। वैसे बहुत अच्छी रिहर्सल थी, अब फाइनल टेक लेते हैं। सोच

0: देखते आज क्या हो गए देखते देखते हजार खो गए देखते देखते क्या हो गए देखते देखते
1: आज के नाटक का शीर्षक था रेडियो का रंगमंच। यहां गुरुजी की भूमिका में थे
0: कीमती आनंद रखता है सफाई नहीं डालता गंद।
1: उभरते हुए कलाकार की भूमिका में थे
0: सच इन झूठ आउट मतलब सचिन कथुरिया।
1: सचिन की माँ की भूमिका निभा रही थी
2: गीता वर्मा
1: जो यहाँ से सीधे शॉपिंग के लिए जाएंगी।
2: सेल खत्म न हो जाए देखते।
1: सचिन के पिता की भूमिका निभाई
0: सुरेंद्र सागर 5000 खो गए देखते।
1: और मैंने भूमिका निभाई नाटक की डायरेक्टर की मैं हूँ निरुपमा वर्मा। झेलती रह गई देखते देखते क्या से क्या हो गया देखते
0: और अब आप भी घर आइए देखते देखते देखते देखते।
3: धन्यवाद।
4: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत नाटक रेडियो का रंगमंच के संपादित अंश। लेखिका थी सुनीता अग्रवाल, निर्देशन काजल सूरी, भाग लेने वाले कलाकार थे कीमती आनंद, सुरेंद्र सागर, निरुपमा वर्मा, सचिन कथोरिया और गीता वर्मा।
5: श्रोता अभी आपने सुना रेडियो नाटक रेडियो का रंगमंच। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीत मालिका।

0: चुनावी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतमाली का। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब से कुछ ही पलों में सुने समाचार, पहले हिंदी फिर अंग्रेजी और उसके बाद उर्दू में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन नीक्स को तलब कर भारतीय नागरिकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के कदमों पर जानकारी दे रहे हैं।
2: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और

0: यादगार है। नवम्बर 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात बित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात बित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उपमंत्री विनित रवान कोलितोवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की 2 संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
1: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
0: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्ष के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
3: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत के प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
2: देश में 2014 में स्टार्टअप की संख्या लगभग 350 थी, अब 2,35,000 से अधिक स्टार्टअप और 131 यूनिकॉर्न है। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारत अब स्टार्टअप के मामले में विश्व का तीसरा प्रमुख देश है।
4: पिछले 12 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों, जैसे स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत, अटल इंक्यूबेशन सेंटरों की स्थापना, फंड ऑफ फंड्स की व्यवस्था तथा अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे कदमों ने भारत के उद्यमिता परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। आज देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम डीप टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, रक्षा, कृषि प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे विविध क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुका है। शिखर सम्मेलन में जिन स्टार्टअप्स को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा उनमें मेडेव प्लस भी शामिल है। भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के अंतर्गत आयोजित यह सम्मेलन दोनों देशों के बीच उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने का प्रयास है। आकाशवाणी समाचार के लिए नीस फ्रांस से शैलेश मेनन जी की रिपोर्ट के साथ सत्यन अख्तर।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
1: बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने ड्रोन, सीसीटीवी और आधुनिक निगरानी प्रणाली जैसी तकनीकों का उपयोग कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरी यात्रा के दौरान शिविर स्थलों पर प्रबंधों की लगातार निगरानी करेंगे। उन्होंने तीर्थयात्रियों के पंजीकरण, रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और आपदा प्रबंधन सहित सभी जरूरी सेवाओं के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने मौसम की मौजूदा स्थितियों और पूर्वानुमान के अनुसार तीर्थयात्रियों के जत्थों की आवाजाही को नियंत्रित करने के भी निर्देश दिए। यह भी कहा गया कि यात्रा से जुड़े सभी स्थानीय लोगों और जानवरों का पंजीकरण किया जाए और उन्हें QR कोड वाले पहचान पत्र जारी किए जाएं। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाढ़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है।
2: जमीन हैंडओवर करने का काम कर दिया, डेली हैंडओवर हो रहा है। अब तो 100 किलोमीटर के आसपास की जमीन हम लोग हैंडओवर कर दिया है। नॉर्थ बंगाल में कुछ एरिया जो चिकन लेग से लगा हुआ है उसमें फेंसिंग का काम BSF चालू भी कर दिया है। हम लोग समयबद्ध तरीके से भी पूरा करने का काम करूंगे। देश की सुरक्षा का सवाल है।
0: कैबिनेट सचिव डॉक्टर TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनः परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनः परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। नीट पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच NTA ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। CAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए careerairforce.gov.in या ascat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि असैन्य जहाज पर जानलेवा हमला और खतरनाक साधनों का उपयोग गंभीर चिंता का विषय है और ये बात अमरीका राजनयिक को बताई गई। इसी तरह के हमले में जहाज तैनात 3 भारतीय मारे गए। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इससे पहले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। एक रिपोर्ट। पश्चिम एशिया के लिए ये नई कूटनीतिक कोशिश बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप के हमले रद्द करने की घोषणा से कुछ समय के लिए ये उम्मीद जगी थी कि इलाके में बड़े टकराव को टाला जा सकता है। हालांकि ईरान का कहना है कि किसी भी अंतिम समझौते को मंजूरी नहीं मिली है और कई बड़े मुद्दे अब भी नहीं सुलझे हैं। मुख्य अड़चनों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम, रोकी गई संपत्ति की बहाली और हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जुड़ी भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। भले ही बातचीत करने वाले पर्दे के पीछे काम कर रहे हो, लेकिन पूरे इलाके में सैन्य गतिविधियां जारी हैं, जिससे ये खतरा बना हुआ है कि कोई भी गलत कदम कूटनीतिक प्रगति को तेजी से पटरी से उतार सकता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी। इस बीच अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होर्मुज जलदमरू मध्य में भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया है। उनका ये बयान भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मिक्स को तलब कर हमलों का कड़ा विरोध करने के बाद आया है। दक्षिण कोरिया की अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग यून को भी इस मामले में 30 वर्ष की सजा सुनाई गई है। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल

0: में चीनी ताइपे की चेन सू यू को हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जोगोविना से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। 10वां आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप आज से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच रात 11 बजे से इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वोत्तर क्षेत्र बिहार केरल माहे ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में तेज वर्षा की आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पश्चिम बंगाल बिहार और ओडिशा तथा झारखंड में और आगे बढ़ गया है। कल दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश कोंकण और गोवा में बिजली चमकने और तेज हवा चलने की संभावना है। अगले 2 दिनों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जम्मू कश्मीर तमिलनाडु पुदुचेरी कराईकाल और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने की सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, this is Akashwani and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi highlights government's efforts to further women-led development across diverse sectors. Home Minister Amit Shah says government is fully committed to ensure highest level of security and smooth pilgrimage experience to devotees of Amarnath Yatra. Fencing work begins in border areas of West Bengal, says Chief Minister Shubhendu Adhikari. New Delhi summons U.S. Chargé d'Affaires Jason Meeks to lodge strong protest over U.S. strikes on commercial vessels carrying Indian mariners. Seoul court sentences former South Korean President Yoon Suk-yeol to 30 years in prison over drone incursions into North Korea and abuse of power. And in badminton, PV Sindhu storms into women's singles semi-finals of Australian Open tournament in Sydney. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said, the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development, and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra. Mr. Shah directed for creating impregnable multi-layered security grid along the pilgrimage route with the coordinative efforts of the Central Armed Police Forces, Jammu and Kashmir Police and all security agencies. Our correspondent reports that the Amarnath Yatra will begin on 3rd of July and conclude on the 28th of August.
2: UN Home Minister emphasized to further strengthen the security framework with extensive use of modern technologies such as drones, CCTV surveillance and advanced monitoring systems. Mr. Shah added that the senior officers of CAPF and the Jammu and Kashmir Police will continuously monitor arrangements at campsites throughout the pilgrimage route.

बजकर 45 मिनट पर आज आप सुनेंगे सादत हुसैन खान कवाल और साथियों से कवाली। आगे खबरें शब के 12 बजे नष्ट की जाएंगी। 12 बजकर 10 मिनट पर क्लासिकी मौसीकी के बज में आज आप सुनेंगे सितार पर बजाया हुआ राग तिलक कमोद, फनकार होंगे उस्ताद इरशाद खान। आखिरी शब प्रोग्राम के तहत चंद सदाबहार फिल्मी नगमे हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। शब के 12 बजकर 30 मिनट पर 12 बजकर 50 मिनट पर खबरें नष्ट की जाती हैं और इसके साथ ही रात के 1 बजे हमारी तीसरी और आखिरी मजलिस की नशात इख्तिताम पजीर होंगे। सामने ये था मुख्तसर तारुफ आज की तीसरी मजलिस में पेश किए जाने वाले प्रोग्रामों के हवाले से। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: मीडियम वेव्स 1071 मेगाहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है गैर फिल्मी गजलों का प्रोग्राम एक फनकार। इस प्रोग्राम के तहत लीजिए सामिन समात फरमाइए छाया गांगुली की आवाज में चंद गैर फिल्मी गजलें।
1: गायकी का ये अंदाज अभी तक छाया हुआ है। कई नए नए फनकारों ने इस अंदाज को बरकरार रखा है, जैसे छाया गांगुली,

0: शाइन अभी आप चंद्रवाल फिल्म गजलों से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। आज की हमारी फनकार थी छाया गांगुली, यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शब के 9:45 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नश्र की जाएंगी।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुतनव्वे शोबों में ख्वातीन की क़यादत वाली तरक्की को मजीद मुस्तहकम करने की हुकूमत की कोशिशों को उजागर किया है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत अमरनाथ यात्रा के लिए की जाने वाली तैयारियों के लिए इंतहाई आला दर्जे की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने और उन्हें यात्रा का एक बिला रुकावट तजुर्बा फराहम करने के तहत मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि मगरबी बंगाल के सरहदी इलाकों में बाड़ लगाने का काम शुरू हो गया है। वजारत खारजा ने आज अमरीका के शॉर्ट डी अफेयर को तलब किया और भारतीय मल्लाहों को ले जा रहे कमर्शियल जहाजों पर अमरीकी बहरी फोर्सेज के जारी हमलों के से मुतालिक सख्त एहतजाज दर्ज कराया। सियोल में एक अदालत ने जनूबी कोरिया के साबिक सदर यून सुक यूल को शुमाली कोरिया में ड्रोन कार्रवाई करने और अपने अख्तियार का गलत इस्तेमाल करने पर 30 साल कैद की सजा सुनाई है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट के खवातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज इस बात को उजागर किया कि मालियाती शमूलियत और एंटरप्रेन्योरशिप से तालीम, हिफ्जान सेहत, सफाई सुथराई, मकानात, खेलकूद, साइंस और हुक्मरानी तक खवातीन तमाम मुतनव्वे शोबों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि उभरते हुए शोबों जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी में खवातीन की बढ़ती हुई शराकत मौके के नए दर खोल रही है और मुल्क भर में तरक्की के मंजरनामे की काया पलट कर रही है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि पिछले 12 बरस में एनडीए हुकूमत ने खवातीन की क्यादत वाली तरक्की को मजीद बढ़ाने का काम किया है और ये सभी शोबों में नुमाया है। वजीर आजम ने मजीद कहा कि हुकूमत अपनी मदद आप ग्रुपों को सरगर्म तौर पर तावुन दे रही है जो खवातीन को माली एतबार से आजाद बनाने में अहम रोल अदा कर रहे हैं। जनाब मोदी ने भारत की नारी शक्ति के साइंस, खला और इख्तिराआत जैसे शोबों में नुमाया होने वाले असरात पर खुशी का इजहार किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत अमरनाथ यात्रा के लिए जाने वाले यात्रियों के लिए इंतहाई आला दर्जे की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने और यात्रियों को बिना रुकावट तजुर्बा फराहम करने के तहत मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। जनाब शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने की गरज से नई दिल्ली में आला सतह की एक मीटिंग की सदारत करते हुए ये बात कही। मीटिंग के दौरान उन्होंने हिदायत दी कि मरकजी मसला पुलिस फोर्सेज, जम्मू कश्मीर पुलिस और तमाम सिक्योरिटी एजेंसियों के मुश्तरक कोशिशों के साथ यात्रा के पूरे रास्ते पर नाकाबिले तस्खीर कसीर सतही सिक्योरिटी ग्रिड की तामीर की जाए। वजीर मौसूफ ने जदीद टेक्नोलॉजी जैसे ड्रोन, सीसीटीवी से निगरानी और जदीद तरीन निगरानी के निजामों को वसी पैमाने पर इस्तेमाल करते हुए सिक्योरिटी के पूरे फ्रेमवर्क को मजीद मुस्तहकम करने की जरूरत पर जोर दिया। वजीर दाखिला ने कहा कि यात्रियों के रजिस्ट्रेशन, रिहाइश, सेहत देखभाल, कुदरती आफात की सूरत में बंदोबस्त और तमाम दीगर जरूरी सहूलतों को यकीनी बनाने के लिए खातिर खा इंतजाम किए जाएंगे। फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा

सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के डायरेक्टर जनरलों ने मीटिंग में शिरकत की। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को शुरू होगी और 28 अगस्त को खत्म होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी यूरोप के दो मुल्कों फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे के पहले मरहले के तहत 14 जून को फ्रांस के शहर नीस का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का यह दौरा खुसूसी अहमियत का हामिल है क्योंकि इस साल फरवरी में फ्रांस के साथ अपने ताल्लुकात को खुसूसी आलमी स्ट्रेटेजिक साझेदारी में बदलने के बाद सदर इमैनुअल मैक्रों के साथ जनाब मोदी की यह पहली दोतरफा मुलाकात होगी। जनाब मोदी नीस से स्लोवाकिया रवाना होंगे। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म G7 छोटी कॉन्फ्रेंस के लिए फ्रांस के एवियों वापस लौटेंगे, जहां भारत आलमी खत्ते जुनूब की सरकर्दा आवाज के तौर पर शिरकत करेगा। मगरबी बंगाल के सरहदी इलाकों में बाड़ लगाने का काम शुरू हो गया है। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने मरकज में एनडीए हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने के मौके पर कोलकाता में मुनक्किद एक प्रोग्राम में मीडिया को आज ये इत्तला दी। जनाब अधिकारी ने कहा कि लोग भारत बांग्लादेश सरहद पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीनें दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन लोगों को मुनसिफाना कीमत देकर मगरबी बंगाल की हुकूमत आम आदमी की जमीनें ले रही है और इन जमीनों को बीएसएफ के हवाले कर रही है। वजीर आला ने कहा कि जमीन के मुंतकली का यह अमल जारी है और इस प्रोजेक्ट को कौमी सलामती का एक मामला करार दिया। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि सरहदों पर बाड़ लगाने का काम इंतहाई अहमियत का हामिल है ताकि दरअंदाजी को मुकम्मल तौर पर रोका जा सके। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी काबिना के सेक्रेटरी डॉ टी वी सोमनाथन ने आज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह के साथ एक मीटिंग में नीट के दोबारा होने वाले इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लिया। जायजे के दौरान जनाब सोमनाथन ने तमाम मुतालिका फरीकैन के दरमियान गहरे तालमेल के साथ बिला रुकावट, शफाफ और महफूज दोबारा इम्तिहान मुनक्किद किए जाने को यकीनी बनाने की जरूरत पर जोर दिया। इधर एनटीए ने इस माह की 21 तारीख को होने वाले नीट यूजी 2026 के दोबारा होने वाले इम्तिहान के लिए इम्तिहान के दौरानिये में 15 मिनट का इजाफा कर दिया है और इसे 180 मिनट से बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया गया है। वजारत खारजा ने आज अमरीका के शॉर्ज डी अफेयर को तलब किया और खलीज ओमान में भारतीय मल्लाहों को ले जा रहे कमर्शियल जहाजों पर अमरीकी बहरी फोर्सेज के जारी हमलों के ताल्लुक से सख्त एहतजाज दर्ज किया। इन हमलों के नतीजे में पहले ही 3 भारतीय बाशिंदों की जानें तलफ हो चुकी हैं। अमरीकी एलची को नई दिल्ली में वजारत खारजा ने अमरीकी उमूर के एडिशनल सेक्रेटरी ने तलब किया। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि उसने एक बार फिर शहरी जहाज जिरानी के खिलाफ इंतहाई मोहलिक कुव्वत के इस्तेमाल पर अपनी गहरी तश्वीश से वाकिफ कराया है। वजारत ने कहा कि इस तरह की कार्रवाइयां नाकाबिल कबूल हैं और एक मुश्किल वक्त में एक हिसास इलाके में बैन अवी सरहदी समंदर में कारोबार के तहफ़ सलामती और इस्तेकाम को कमजोर करती हैं। अमरीका के शॉर्ज डी अफेयर से दरख्वास्त की गई है कि वह अपने हुकाम को भारत की सख्त तश्वीश से वाकिफ कराएं और इस बात को यकीनी बनाएं कि खित्ते में कार्रवाई में शामिल अमरीकी फोर्सेज शहरियों की जिंदगी के नुकसान की रोकथाम के लिए सभी जरूरी इकदाम करें। यह दूसरी मरतबा है कि अमरीकी एलची को वजारत खारजा में तलब किया गया है। भारत के 3 मल्लाह जिनके बारे में इब्तदाई इत्तला मिली थी कि वह लापता हैं, उनके बारे में तस्दीक हो चुकी है कि वो एक हमले में अपनी जानें गंवा बैठे हैं। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज ईरान पर इल्जाम लगाया कि वो अबनाए हुरमुज से रवाना होने वाले भारतीय जहाजों पर ड्रोन हमले कर रहा है। सोशल मीडिया पर जारी पोस्ट में जनाब ट्रंप ने इन वाकयात को कतई तौर पर नाकाबिल कबूल करार दिया। उनका यह बयान भारत की जानिब से अमरीका के शॉर्ज डी अफेयर जेसन मीक्स को तलब किए जाने और खलीज ओमान में भारतीय मल्लाहों को ले जा रहे कमर्शियल जहाजों पर अमरीकी बहरी फौजों के जारी हमलों पर सख्त एहतजाज दर्ज कराने के बाद सामने आया है। मगरबी एशिया में लड़ाई को रोकने की सिफारती कोशिशें आज भी नतीजा खैज साबित नहीं हुई। ईरान ने ऐलान किया कि उसने अमरीका के साथ किसी मुजवजा माहदे पर अभी तक कोई कतई फैसला नहीं किया है। यह बयान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान की बराह रास्त तरदीद है जिसमें सदर ट्रंप ने कहा था कि कुछ ही दिन में एक बड़ी कामयाबी मिलेगी। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि किसी कतई माहदे के बारे में या दस्तखत किए जाने की कोई तकरीब मुनक्किद होने के बारे में बात करना कबल अज़ वक्त है। अलबत्ता उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि मुज़ाकरात के ज्यादातर मतन को मुसव्वदे की शक्ल दी गई है। सियोल की एक अदालत ने जनूबी कोरिया के साबिक सदर यून सुक यूल को आज 30 साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें शुमाली कोरिया के साथ

मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट जिल्द को तरोताजा और जवान रखने में मदद देते हैं। ये जिल्द की खलियात की मरम्मत करते हैं और कुदरती चमक पैदा करने में माविन साबित होते हैं। बालों के लिए भी मुफीद है, खासतौर पर खवातीन क्यों नहीं चाहेंगी। आम में मौजूद विटामिन ए बालों के नशोनुमा में अहम किरदार अदा करता है। इसके इस्तेमाल से बालों को जरूरी गजाइत मिलती है और उनकी सेहत बेहतर रहती है। सामिन, ये थी एक मालूमात। उम्मीद करते हैं कि बातें आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको किसी तरह का कोई मसला है या कोई दवा आपकी चल रही है तो अपने डॉक्टर से जरूर रजू कीजिएगा, वही आपको बेहतर मशवरा देंगे। उम्मीद करते हैं ये बातें आपको पसंद आई होंगी। अपना ख्याल रखिए और दुआ में हमें याद रखिये।

0: डी वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है मुशायरा।
1: सभी सामईन की खिदमत में मोहम्मद अली कमाल का पुरखलूस आदाब। सामईन, अल्फाज को तरतीब देकर वजन के साथ पेश करने को ही शायरी नहीं कहा जा सकता, बल्कि शायरी में बुलंद ख्याली और रमजियत भी जरूरी है। यानी जो बात शेर में कही गई है उसका लहजा शायराना हो। जाहिरी तौर पर जो शेर का मफहूम समझ में आ रहा है उसके हकीकी मानी उससे किसी कदर बुलंद हों और कारी या सामी उसको अपने बेदार जहन से फौरन समझ जाए कि शेर में जो बात कही गई है वो किन मानी में कही गई है। यही शेर की खूबी है। ये भी हकीकत है कि शायरी एक ऐसा फन है जिसे किसी को सिखाया नहीं जा सकता, बल्कि ये जज्बात और एहसास के दबाव के नतीजे में किसी शख्स पर इल्हाम की शक्ल में उतरती है। वो जज्बात खुशी और मसर्रत के भी हो सकते हैं और अफसुर्दगी के भी। समीन, आइए सुनते हैं मुशायरा। आज के मुशायरे की निजामत कर रहे हैं नौमान शौक।
2: आकाशवाणी के इस मुशायरे में हस्बे मामूल हम चंद मोतबर और मकबूल शुअरा के साथ अपने स्टूडियो में मौजूद हैं। आज जो हजरात और खातून यहां मौजूद हैं, तशरीफ फरमाए हैं, उनके अस्माए ग्रामी हैं अलीना इतरत साहिबा, डॉक्टर कौसर मजहरी साहब और जफर मुरादाबादी साहब। मैं सबसे पहले गुजारिश करता हूं अलीना इतरत साहिबा से कि वो अपने कलाम से सामीन को नवाजें। अलीना इतरत साहिबा
3: जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक गजल के चंद अशआर पेश करती हूँ। दूर तक फैल गई सबकी जुबां तक पहुंची ये।
2: दूर तक
3: फैल गई सबकी जुबां तक पहुंची बात, तब जाके मेरे वहमो गुमा तक।
4: बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मतलब है, क्या कहें।
2: बहुत
3: बहुत शुक्रिया। बात तब जाके मेरे वहमो गुमा तक पहुंची और प्यास ने मुझको तो बस मार ही डाला था मगर। प्यास ने मुझको तो बस मार ही डाला था मगर कशिशे जीस्त मेरी आबे रवा तक पहुंची।
2: बहुत खूब।
3: और खाक जब खाक से टकराई तो एक शोर उठा।
2: बहुत उम्दा मिसरा है।
3: खाक जब खाक से टकराई
2: तो एक शोर उठा।
3: जान जब जान से गुजरी तो अमा तक।
4: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा,
2: बहुत खूब,
4: वाह वाह,
3: बहुत शुक्रिया।
4: सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
3: जान जब जान से गुजरी तो अमा तक पहुंची और धड़कनों में तेरी आमद से वो झनकार हुई। धड़कनों में तेरी आमद से वो झनकार हुई। धड़कनों में तेरी आमद से वो झनकार हुई। लब खुले भी नहीं और बात बयां तक।
4: सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह।
3: लब खुले भी नहीं और बात बयां तक पहुंची।

0: धड़कनों में तेरी आमद
1: नामत से
0: से वो
1: वो झनकार
0: झनकार
1: हुई।
0: हुई, धड़कनों में तेरी आमद से वो झनकार हुई, लब खुले भी नहीं और बात बयां तक
1: बया तक
0: पहुंची।
1: पहुंची।
0: मेरी आंखों से मेरे ख्वाब चुराने वाला,
1: वाह,
0: मेरी आंखों से मेरे ख्वाब चुराने वाला, मेरी आंखों से मेरे ख्वाब चुराने वाला पूछता है कि मेरी नींद कहाँ
1: कहां
0: तक
1: तक पहुंची
0: पहुंची।
1: है।
0: बहुत
1: बहुत
0: शुक्रिया, बहुत
1: बहुत
0: शुक्रिया।
1: उम्दा।
0: पूछता है कि मेरी नींद कहाँ
1: कहां तक
0: तक
1: पहुंची है।
0: पहुंची। और आखिरी शेर के, कोई तो शय थी अलीना जो उन आंखों से चली,
1: वाह, कोई
0: कोई
1: तो
0: तो
1: शय
0: शय
1: थी
0: थी
1: अली।
0: अलीना जो उन आंखों से चली, दिल में पेवस्त हुई और लबे जां तक पहुंची।
1: पहुंची, क्या कहने।
0: दिल में पेवस्त हुई और
1: और
0: रगे
1: लबे
0: जां
1: जहां तक
0: तक पहुंची।
1: पहुंची।
0: कोई तो शय थी अलीना जो उन आंखों से चली, दिल में पेवस्त हुई और रगे जां तक पहुंची।
1: पहुंची, वाह वाह
0: बहुत शुक्रिया। और अगर इजाजत हो तो दो तीन शेर तरन्नुम में पेश कर देती हूँ।
1: वाह।

0: बहुत बहुत उम्दा कलाम, गजलें और तरन्नुम दोनों अली नायत्रत साहिबा भी अपने कलाम से नवाज रही थी। और अब मैं दस्तबस्ता गुजारिश करता हूँ डॉक्टर कौसर मजहरी से कि अपने कलाम से नवाजें। डॉक्टर कौसर मजहरी,
1: बहुत शुक्रिया। गजल का मतला है, मुलाजे कीजिए। ये कयामत का जो मंजर सा बना रखा है, ये कयामत का जो मंजर सा बना रखा है, शोरिश इश्क ने हंगामा उठा रखा है।
0: क्या कहने, क्या कहने,
1: शोरिश इश्क ने हंगामा उठा रखा है। ये जो कुछ लोग हैं खाशाक से उड़ते फिरते, ये जो कुछ लोग हैं खाशाक से उड़ते फिरते, उनकी खातिर जरा शोला सा बचा रखा है।
0: क्या कहने, क्या कहने, बहुत उम्दा।
1: उनकी खातिर जरा शोला सा बचा रखा
0: है।
1: ये जो कुछ लोग हैं खाशाक से उड़ते फिरते,
0: क्या कहने,
1: उनकी खातिर जरा शोला सा बचा रखा है। जौहरी हम भी हैं ये तुमसे बता देते हैं, जौहरी हम भी हैं ये तुमसे बता देते हैं, इसलिए अश्क भी दामन में छुपा रखा है।
0: बहुत
1: बहुत शुक्रिया। इसलिए अश्क भी दामन में छुपा रखा है। इस फसूं साज मोहब्बत को अलमनाकी से, इस फसूं साज मोहब्बत को अलमनाकी से, तुमको मालूम है किस तरह बचा रखा है।
0: बहुत बहुत
1: इस फसूं साज मोहब्बत को अलमनाकी से, तुमको मालूम है किस तरह बचा रखा है। तुम तकाजाए चमन करके तो देखो प्यारे, तुम तकाजाए चमन करके तो देखो प्यारे,
0: क्या कहने,
1: सफ़े दिल को लहू रंग खिला रखा है।
0: बहुत खूब।
1: तुम तकाजाए चमन करके तो देखो प्यारे,
0: बहुत खूब,
1: सफ़े दिल को लहू रंग खिला रखा है। ताकि दुनिया मिले मुझसे तो जरा झुक के मिले, ताकि दुनिया मिले मुझसे तो जरा झुक के मिले, बस ही सोच के इस कद को घटा रखा है।
0: बहुत
1: बहुत शुक्रिया। ताकि दुनिया मिले मुझसे तो जरा झुक के मिले, बस ही सोच के इस कद को घटा रखा है। आखिरी शेर है कि उसने आकर ये सराहने मेरे सरगोशी की, उसने आकर ये सराहने मेरे सरगोशी की, तुमको क्या हो गया क्या हाल बना रखा है।
0: बहुत खूब।
1: तुमको क्या हो गया क्या हाल बना रखा है। और ये एक दूसरी गजल कीजिए कि हमको मालूम है क्या होती है ये हुर्मत खाक, हमको मालूम है क्या होती है ये हुर्मत खाक, जान से जी से चुकाते हैं हमें कीमत खाक।
0: बहुत खूब।
1: हमको मालूम है क्या होती है ये हुर्मत खाक, जान से जी से चुकाते हैं हमें कीमत खाक।
0: बहुत
1: ये शेर के जाम है ताजे शही का पर नहीं कुछ मालूम, जाम है ताजे शही का पर नहीं कुछ मालूम, मौत आए तो मुकद्दर में वही तुर्बत खाक। मौत आए तो मुकद्दर में वही तुर्बत खाक। और ये देखिए कि जब वजू के लिए मिलता नहीं पानी वानी, जब वजू के लिए मिलता नहीं पानी वानी, उस घड़ी होती है मोमिन को फकत हाजत खाक। उस घड़ी होती है मोमिन को फकत हाजत खाक। जब वजू के लिए मिलता नहीं पानी वानी, जब वजू के लिए मिलता नहीं पानी वानी, उस घड़ी होती है मोमिन को फकत हाजत खाक। उस घड़ी होती है मोमिन को फकत हाजत खाक। ये बदन खाक से है खाक में मिल जाना है, ये बदन खाक से है खाक में मिल जाना है, हमको भी चाहिए हर लम्हा करें इज्जत खाक। हमको भी चाहिए हर लम्हा करें इज्जत खाक। जब जमीन फटती है इंसान को निगलने के लिए, जब जमीन

0: मेरा भाई भी इसलिए आती है वैसी ही नजर शिद्दत खाक। मकता है कि चाक चौबंद बहुत रहना है कौसर अब के, चाक चौबंद बहुत रहना है कौसर अब के, वरना उठने के नहीं हमसे तो अब तोहमत खाक। चाक चौबंद बहुत रहना है कौसर अब के, वरना उठने के नहीं हमसे तो अब तोहमत खाक। और ये नज्म है गजल के फॉर्म में कहना चाहिए। जमी से आसमान तक, मकीन से मकान तक, जमी से आसमान तक, मकीन से मकान तक, जो कुछ समझ ना आ सका तो एक दिया जला दिया, जो कुछ समझ ना आ सका तो एक दिया जला दिया। अजीब सा ख्याल था, ख्याल पाए माल था, अजीब सा ख्याल था, ख्याल पाए माल था, मगर वही ख्याल था तो एक दिया जला दिया, मगर वही ख्याल था तो एक दिया जला दिया। निशान राह खत्म थे कि गुम रही में कैद थे, निशान राह खत्म थे कि गुम रही में कैद थे, न कुछ पता जो चल सका तो एक दिया जला दिया। सिसक सिसक के मर गए, जो मर गए किधर गए, सिसक सिसक के मर गए, जो मर गए किधर गए, सुना अजल का जमजमा तो एक दिया जला दिया। सुना अजल का जमजमा तो एक दिया जला दिया। जहां तलक ये रात है हमारी बात बात है, जहां तलक ये रात है हमारी बात बात है, सुना किसी का फैसला तो एक दिया जला दिया।
1: बहुत
0: सुना किसी का फैसला तो एक दिया जला दिया। ये रात क्या डराएगी, ये खुद ही लौट जाएगी, ये रात क्या डराएगी, ये खुद ही लौट जाएगी, अंधेरा जब भी आ गया तो एक दिया जला दिया।
1: बहुत
0: अंधेरा जब भी आ गया तो एक दिया जला दिया। और एक छोटी भर में गजल है, छोटी सी है। लम्हा लम्हा सोच रहा हूँ,
1: लम्हा
0: मैं भी क्या इंसान बना हूँ।
1: क्या बात,
0: मतलब है कि लम्हा लम्हा सोच रहा हूँ मैं भी क्या इंसान बना हूँ, देखूं तो अब कौन आता है, देखूं तो अब कौन आता है, रस्ते ही में बैठ गया हूँ।
1: बहुत
0: देखूं तो अब कौन आता है, रस्ते ही में बैठ गया हूँ। कबो रस्ते पर आया है, कबो रस्ते पर आया है, कब से तो मैं सोच रहा हूँ। कबो रस्ते पर आया है,
1: कब से तो
0: मैं सोच रहा हूँ, जिस जानिब तुम देख रहे हो, जिस जानिब तुम देख रहे हो, उस जानिब मैं देख चुका हूँ। जिस जानिब तुम देख रहे हो, उस जानिब मैं देख चुका हूँ। और ये शेर के, सूरज छुपते ही सोया था, सूरज छुपते ही सोया था, सूरज ही के साथ उठा हूँ।
1: क्या क्या,
0: सूरज छुपते ही सोया था,
1: सूरज ही के साथ
0: उठा हूँ। तुम गिरदाब को देख रहे हो, तुम गिरदाब को देख रहे हो, साहिल से मैं आन लगा हूँ। तुम गिरदाब को देख रहे हो, साहिल से मैं आन लगा हूँ। और ये मकता है कि कौसर कौसर कहते रहना, कौसर कौसर कहते रहना, मैं भी तुमको देख रहा हूँ। कौसर कौसर कहते रहना, मैं भी तुमको
1: देख रहा
0: हूँ। लम्हा लम्हा सोच रहा हूँ, मैं भी क्या इंसान बना हूँ।
1: बहुत खूब, बहुत खूब।
0: नज्म, उसका उनवान है आशुफ्ता मिजाजी। मैं तेरे तर्ज़े तगाफुल की कसम खाता हूँ, अपनी आशुफ्ता मिजाजी को फरोजा कर दूँ। मैं तेरे तर्ज़े तगाफुल की कसम खाता हूँ, मैं अपनी आशुफ्ता मिजाजी को फरोजा कर दूँ। ये मताए गमे उल्फत ही मेरा हासिल है, अपनी बेलौस मोहब्बत को कहाँ ले जाऊँ। ये जो अखियार को आहिस्ता खिरामी तेरी, इशरत बेजा बहम करती है सब कहते हैं, इशरत बेजा बहम करती है सब कहते हैं। फिर तो अच्छा है जमाने से चुरा लूं आंखें, फिर तो अच्छा है जमाने से चुरा लूं आंखें, कोई पूछे तो बताऊं कि नहीं कुछ भी नहीं, कोई पूछे तो बताऊं कि नहीं कुछ भी नहीं। अपनी बेताब निगाही की कसम खाता हूँ, अपनी बेताब निगाही की कसम खाता हूँ। तुमको देखूं तो चमक जाए ये बेनूर हयात, तुमको देखूं तो चमक जाए ये बेनूर हयात, पर तेरे तर्ज तगाफुल से ये खौफ आता है, क्या मुझे खश्म की आंखें भी तेरी देखेंगी।
1: बहुत
0: पर तेरे तर्ज तगाफुल से ये खौफ आता है, क्या मुझे खश्म की आंखें भी तेरी देखेंगी। मेरी जानिब जो कभी तेरी नजर उठ जाए, मेरी जानिब जो कभी तेरी नजर उठ जाए, अपनी आशुफ्ता मिजाजी को फरोजा कर दूं, मैं तेरे तर्ज तगाफुल की कसम खाता हूँ।
1: बहुत बहुत उम्दा। अभी हम डॉक्टर कौसर मजहरी से उनकी नज्में और गजलें सुन रहे थे, नहायत उम्दा कलाम। और अब इस मुशायरे के आखिरी शायर जनाब जफर मुरादाबादी साहब।

0: सब पर है मेरा जाहिर और बातिन खुला हुआ, तेरी तरह नकाब के अंदर नहीं हूं मैं, और इम्काने रोजगार पे कायम है जिंदगी, इम्काने रोजगार पे कायम है जिंदगी, कैसे कहूँ शराब का महवर नहीं हूं मैं, इम्काने रोजगार पे कायम है जिंदगी, कैसे कहूँ शराब का महवर नहीं हूं मैं। और खास तौर से पेश करता हूँ कि यूं सरसरी निगाह की ठोकर से मत परख, यूं सरसरी निगाह की ठोकर से मत परख, है दीदावर तो देख के पत्थर नहीं हूं मैं, यूं सरसरी निगाह की ठोकर से मत परख, यूं सरसरी निगाह की ठोकर से मत परख, है दीदावर तो देख के पत्थर नहीं हूं मैं, है दीदावर तो देख के पत्थर नहीं हूं मैं, सुनता था बादे मौत है कोई बताए क्या, सुनता था बादे मौत है कोई बताए क्या, जीते जी पुल सिरात के ऊपर नहीं हूं मैं, सुनता था बादे मौत है कोई बताए क्या, जीते जी पुल सिरात के ऊपर नहीं हूं मैं, और खुशबू की तरह मैं भी कसीरुल जिहाद हूं, खुशबू की तरह
1: मैं भी
0: कसीरुल जिहाद हूं, सिर्फ एक रास्ते का मुकद्दर नहीं हूं मैं,
1: बहुत
0: खुशबू की तरह मैं भी कसीरुल जिहाद हूं, सिर्फ एक रास्ते का मुकद्दर नहीं हूं मैं, और क्यों मेरी समत बढ़ते चले आ रहे हैं लोग, क्यों मेरी समत बढ़ते चले आ रहे हैं लोग, सर्दी की रुत में धूप का मंजर नहीं हूं मैं, क्यों मेरी समत बढ़ते चले आ रहे हैं लोग, सर्दी की रुत में धूप का मंजर नहीं हूं मैं, और परवाज है वहां न जहां कोई जा सके, परवाज है वहां न जहां कोई जा सके, ये और बात साहिबे शह पर नहीं हूं मैं, परवाज है वहां न जहां कोई जा सके, ये और बात साहिबे शह पर नहीं हूं मैं, और सरकश भंवर भी है मेरे दरियाए फिक्र में, सरकश भंवर भी हैं मेरे दरियाए फिक्र में, कुछ ठहरे पानियों का शनावर नहीं हूं मैं, सरकश भंवर भी हैं मेरी दरियाए फिक्र में, कुछ ठहरे पानियों का शनावर नहीं हूं मैं, ऐ कोहे वक्त तू भी रहा मेरे जेरे पा, ऐ कोहे वक्त तू भी रहा मेरे जेरे पा, गो देखते मैं तुझसा कदावर नहीं हूं मैं,
1: देखता
0: ऐ कोहे वक्त तू भी रहा मेरे जेरे पा, ऐ कोहे वक्त तू भी रहा मेरे जेरे पा, वो देखने में तुझसा कदावर नहीं हूं मैं, वो देखने में तुझसा कदावर नहीं हूं मैं, आहों से दिल का दर्द बरहना हुआ तो क्या, आहों से दिल का दर्द बरहना हुआ तो क्या, सब ढक लूं ऐसे जब्त की चादर नहीं हूं मैं,
1: बहुत
0: आहों से दिल का दर्द बरहना हुआ तो क्या, सब ढक लूं ऐसे जब्त की चादर नहीं हूं मैं, सब ढक लूं ऐसे जब्त की चादर नहीं हूं मैं, बस अब निगाहों दिल में तुझी को बसा लिया, बस अब निगाहों दिल में तुझी को बसा लिया, दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं, बस अब निगाहों दिल में तुझी को बसा लिया, दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं। और मकसद पेश करता हूं गजल का कि मैं भी था एक शराब मगर आजकल जफर, मैं भी था एक चराग मगर आजकल जफर, हूँ जद में आंधियों की मुनव्वर नहीं हूँ मैं,
1: बहुत
0: मैं भी था एक चराग मगर आजकल जफर, हूँ जद में आंधियों की मुनव्वर नहीं हूँ मैं, दरबार शहरयार का खूगर नहीं हूँ मैं, जो सर्ग निगू रहे वो सुखनवर नहीं हूँ।
1: बहुत खूब, बहुत खूब, डॉक्टर जफर मुरादाबादी साहब अभी अपने कलाम से नवाज रहे थे। आज की इस शेरी महफिल में जिन शुआरा ने शिरकत की वो हैं अलीना इतरत, डॉक्टर कौसर मजहरी और डॉक्टर जफर मुरादाबादी। इस मुशायरे का यहीं अख्तिताम होता है।
2: सामिन, अभी आप सुन रहे थे मुशायरा, निजामत के फराइज अंजाम दे रहे थे नौमान शौक। अब अपने मेजबान मोहम्मद अली कमाल को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।

भावनगर यवतमाल से राहुल मनवर सरला मनवर और बेबी प्रियांशी। नेट मेधा अलका मेधा आप हैं गांव नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुलरकर रतनमाला सुलरकर और कुमकुम सुरलकर और पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत श्वेता भगत किसुतासु। सिद्धार्थनगर देरापुर भावली से गजानन अली नवदीप अली और सुशील अली। आप दोस्तों की पसंद आपकी नजर।

आइए सामिन अब सुनते हैं खुमार बारावंग की का लिखा ये नगमा है, जिसकी तर्ज बनाई है शौकत गुलहिना शादनी फिल्म बरादरी से। आवाज आप समझ गए होंगे तलत महमूद की। प्रश्न क्या है आप दोस्तों ने? गार्डन रोड पैटर्न 6, बाबा साहेब सागर ज्योति नाम है, ज्योति सागर और शुभम

कृष्णा गढ़ के प्रशांत शिंदे और सुशील शिंदे, आप हैं रुजदार चौक पंधरपुर सिटी से, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम रबिया शेख और शेख रहीमुन्ना, गोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा और पूजा परिहार, प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा मध्य प्रदेश से आनंद जोशी, तनुजा जोशी और ध्रुवी जोशी, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी और रियाज रिफाकत, बलारशाह से प्राची सूरज लोढ़े और एकलव्य लोढ़े, और इस नगमे को पसंद किया है कुमार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले और अंकित दले ने। नितिन मचानी, रमेश मचानी और भारती मचानी उदयपुर राजस्थान से, और वाइल्ड फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण और अंजू श्रीवास्तव। सुनने के ख्वाहिशमंद एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट और निखिल कांगड़ा, और महमूद मदनी, अयूब मुल्ला जी और याकूब मुल्ला जी का भी ईमेल हमें मिला इस नगमे के लिए। वैष्णो कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक मुश्ताक अहमद और मोहम्मद शादाब खत्री, सैयद मसरूर, शाना हसन और नाजिया इब्राहिम सहारनपुर से, पंचकूला सेक्टर 9 से अश्विनी चुग और गोविंद चुग का भी ईमेल हमें मिला, और आप हैं फजल का पंजाब से भूषण खेरा, विश्व खेरा और विशाल खेरा, युवा मंजिल गिरिडीह झारखंड से हिना सावरी, आयजल इमाम और मोहम्मद हसन इमाम, परमिला गंज अलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई वर्मा और अतुल कुमार वर्मा, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम सबीर रही और मेरा जहां आप हैं आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। डेगाडेगा बस्तर छत्तीसगढ़ से शिव प्रसाद देवदास, मोहित कुमार देवदास और कुमारी युक्ति देवदास, और ये नाम जनाब मंगल बाजार कटिहार से रफी रहमान और बेगम शमा रफी, गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डेनी पवार और मनीष पवार का ईमेल हमें मिला इस नगमे को सुनना चाहते हैं आप, और विजय मौविया, कविता मौविया और पेंटर बाबू रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से। इशरत जहां, मास्टर अजहर खान और अजीम खान वारली मुंबई से, और अकोला महाराष्ट्र से गजानन कुंभार, पद्मावती कुंभार और खांची पीर, उदयपुर से जब्बार मोहम्मद, नजीब खान और मंजू, जैसा मैंने सुनी अपनी पसंद का ये नगमा फिल्म बारादरी से आवाज तलत महमूद की।

सुनते हैं दाग फिल्म से ये नगमा, लता मंगेशकर की आवाज में, नगमा निगार शैलेंद्र, तर्ज बनाई है शंकर जयकिशन ने, और इंतजार है आप सभी दोस्तों को इस नगमे का। बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी और भव्य कुमारी, और बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुजीत रमेश साहू। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताईगुंडाने और हीरामन शिंदे। कृष्णा कॉलोनी हांसे से सुभाष योगी, राजू मिगलानी और बब्बू डब्बू। मोताला बाजार से बब्लू ठेकेदार, शेख सगीर और वजीर। मंसूरी रेडियो लिसनर क्लब बाजार रोड मंगीसापुर से ये हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुल निशा और सबीता। कुछ नाम मिल रहे दोस्त। और हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोरखे, नंदा बोरखे और उत्तम जमदारे। और शांतनगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल और सहराज सपकाल। पेड़ा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारादेवी विश्वकर्मा और सोनाली विश्वकर्मा। गांधीबाग अकोले से रमेश कटंकर, वैशाली कटंकर और इस नगमे को सुनना चाहे जयराज पलोट। राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती भट्ट और जस्मीन भट्ट। अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजा बेगम अंसारी और मोहम्मद सादिक अंसारी। मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर यमेकर, प्रमोद यमेकर और प्रदीप यमेकर। कल्पना मदन झा मानव अमैंग 27 निर्मला अपार्टमेंट नरौली फाटक विराट वापी गुजरात से। और साईनगर अरबी महाराज से नरेंद्र मिर्गे, प्रियादर्शन मिर्गे और डॉक्टर प्रियंका काल पांडे। अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, गव्या मल्होत्रा का भी ईमेल हमें मिला, इस नगमे को आप पसंद करते हैं। और तहसील रोड गंज ढुंडवाड़ा से कैच राही गुड़िया बेगम और वकील प्रेमी। नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और निसार सलमानी आप हैं धनौली तेलीवाला से, और इस नगमे को सुनना चाहे जामिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल और दीपक जायसवाल। आप दोस्तों की पसंद, आपकी नजर।

आरती रानी, पुरानी विलायती चरवादा छत्तीसगढ़ से डॉक्टर नशात अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदुन सिद्दीकी और शाहनवाज अहमद सिद्दीकी, जवानगर उदयपुर से बाबू भाई भारती देवी भी इस नगमे को पसंद करते हैं, रेल नगर राजकोट से धनेश सेजपाल और विहान कुंत, ग्राम पचुनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंसोलिया, बंगाली पंजा मध्य प्रदेश से प्रकाश रामभड़े, भारती रामभड़े और काशी निवास नागपुर से हर्षल रामभड़े, वैष्णवी रामभड़े, गांव लोहरगढ़ ठाकुरवाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह और राजदीप सिंह। आप दोस्तों का शुक्रिया। सुनिए अपनी पसंद का ये नगमा मुगल आजम फिल्म से, तलत महमूद माफ कीजिएगा, लता मंगेशकर की आवाज में।

सामने इरशाद प्रोग्राम की अगली पेशकश सत्ता बाजार फिल्म से ये दो गाना लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजों में। इस नगमे की मौसीकी तरतीब दी है कल्याण जी, आनंद जी ने। पसंद किया है आप सभी दोस्तों ने इस नगमे को। गांव बेगवा तहसील पूना महाराष्ट्र से सदाशिव थोरात, कविता थोरात और शिला थोरात। आतिश रेडियो नेशनल क्लब बिशनपुर गिरिडीह झारखंड से इंतजाम आतिश तारा परवीन आतिश डॉक्टर मोहम्मद आसिफ रजा और दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासिन अंजान सावा नवाज और शरीफ नवाज। रेलवे रोड गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी नाजमा बेगम नाज और बेबी फातिमा गाजी। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी भलिया से श्रीमती उषा राय, ओम प्रकाश राय और हैप्पी राय। मंदी चक भागलपुर बिहार से दिलीप कुमार सोनी और रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा और निशांत वर्मा। दौड़ी भाटापाड़ा से कैर साहू, आकाश और कमलेश साहू और इस नगमे को पसंद किया है। पश्चिम थोक गंडवारा से मनोहर लल्ला पीरजादा, नसरी मिर्जा और अरबाज शहबाज। शहबाजपुर कला कस्बा पाप बड़ा जिला मुरादाबाद से मजहर हुसैन अंसारी, बेगम रईसा नाज और बेटा मुजक्किर बाबू। गाना थाना पंजाब से हरजिंदर सिंह छिंदा, जसवीर जस्सी और सीता साथ में गीता। खान मंजिल गंज डुंडवारा से आगा खान आगा, बेगम निदा खान और बेबी अमल खान। राजनगर कांति निकेतन से कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, रुद्र गुप्ता और आशाना पापन। मुंबई से मोहम्मद मुजीब शेख, जाना अनिवा शेख और बेबी अनिरा शेख। राहट गांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से दिलीप रमेकर, हर्ष रमेकर और अक्षय रमेकर। दिलावर खान जीना बानो अलीजा नायब आप हैं रघुवी नगर से। एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना पप्पी, करण खुराना, लब्बे और अरब खुराना। मित्र नगर बीड शहर महाराष्ट्र से विकास बंसोडे, रेखा बंसोडे और अदिति बंसोडे। सहारनपुर से आशा नारंग, सोनाली नारंग और सुरेश नारंग। कोड़ी सेक्टर 5 सुरेन नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोनी चौहान और कल्पित चौहान। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया और रजत भाटिया। अनिल खुसरू रोड गंज डुंडवारा से डॉक्टर दबीर हुसैन, बेगम शबम अनवार और भुवन प्रकाश गौतम। और इस नगमे को सुनना चाहे आपने भी अरमा बांद्रा आर्मा कोट मुंबई ईस्ट से शाहिन परवीन सोनम, मारिया आयत शेख और मोहम्मद अलीफ शेख। गुजरात गांधी ग्राम से परवीन सोनी, कलावती सोनी और प्रथम सोनी भी पसंद करते हैं इस नगमे को। कटर रोड वाशी महाराज से मास्टर विठल सुरेश, सुषमा सुरेश और प्रीधि सुरेश। छत्तीसगढ़ पलाड़ी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा और निखिल वर्मा ने भी सुना चाहे इस नगमे को। और जनाब नगर निगम वार्ड 28 नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी बिहार से अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम और बहुरूबी नवसीम। आप दोस्तों का शुक्रिया, आपकी पसंद, आपकी नजर।

ये सामने आप सुनते हैं जहां रफीम से तलत महमूद की आवाज में ये प्यारा सा नगमा आपकी तर्ज बनाई है मोहन ने, बोल है राजेंद्र कृष्ण के, पसंद किया है आप सभी दोस्तों ने। हयात कॉलोनी अलरिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल और मोहम्मद अकमल, गोकुलधाम राजकोट से मयूर देवा शरदा और पंकज का भी ईमेल हमें मिला इस नगमे के लिए, और राज कमल रेडियो लिसनर क्लब अष्टी जिला जालना मराठवाड़ा से, नाम दोस्त आपने क्या लिख दिया चलो मैं देखूंगा, बाबू सिंह धीमान, रवनीत मिशु और बलजिंदर कौर धीमान का ईमेल हमें मिला है, आप हैं मुख्तसर पंजाब से ऐशबाग, लखनऊ से रानी गुप्ता, मुकेश गुप्ता और रश्मि नीलम गुप्ता, नागचुंग रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार डावर, खुश नसीब अब्दुल हक डावर और जियाउल हक डावर, रेडियो की आवाज ग्रुप मधुबनी बिहार से एक झाजी दुर्गा प्रसाद सैनी और शेख, ये काम आप गलत कर रहे हैं, ये नाम कहीं और से होता है दोस्त, बुरुआ के नगर श्रीरामपुर से मनु जेठवा, हर्षा जेठवा और तमराम एयरफोर्स चेन्नई से शाहिद अली, इफत फारूकी और विद्या हिफ्जा, कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता और निहारिका, और गांव डाकघर निमाबाद जिला जिंद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर और गुरप्रीत सिंह। गांव फ्रांसी स्टार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी। और ये है रिंग रोड नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा, भावना वर्मा और सुब्रत चौधरी कोलकाता से, आप तिलक महमूद के शहदाई, तो सुनिए तलत महमूद की आवाज में ये नगमा फिल्म जहां आरा से।

ये सामने आप सुनते हैं रेजियोग्राफी से ये नगमा लता मंगेशकर की आवाज में नगमा निगार शकील बदायूनी तर्ज बना ये नौशाद ने पसंद किया है आप सभी दोस्तों ने इस नगमे को। निजोगढ़ जय विहार से शाहरुख फारूक और शबनम, प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा मध्य प्रदेश से आनंद जोशी, तनुजा जोशी, ध्रुवी जोशी और मजनू का टीला से कमर बलूजा, मधु बलूजा और सागर बलूजा, महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से रमेश नचानी, भरत नचानी, विनीत नचानी, दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से शिवानी, प्रियंका सिन्हा और अभय कुमार सनातनी और श्रीमती मुन्नी देवी शाह, छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा और निखिल वर्मा, सौड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागपुर सूरज कुमार और आवास विकास कॉलोनी कासगंज से पवन गौर, तन्मय पूर्वी गौर और शेष आशीष गौर। नातागंज बदायूं से शरीफ अहमद सैफी और बेगम रेशमा सैफी और इस नगमे को पसंद किया। भक्ति रोड अकोला से सुशील देवी मंदुकर और सदानंद मंदुलकर, सामीन सुनिए अपनी पसंद का ये आखिरी नगमा फिल्म राजीव बाबा से और इस नगमे के साथ ही आज का तामिल प्रोग्राम खत्म करने के अपने मेजबान मोहम्मद इमरान को दीजिए इजाजत।

सामीन अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम तामिल इरशाद, यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। इस वक्त हमारी नशात मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर दस्तयाब है। वक्त हो चुका है कवालियों का, तो लीजिए सुनिए सादत हुसैन खान कवाल और साथियों से कवाली।

न्यूडी वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर दस्तियाब हैं। वक्त हो चुका है सदाबहार फिल्मी नगमों के प्रोग्राम आखिरी शब का। पेश हैं चंद सदाबहार फिल्मी नगमे।

0: मेरा घर उजाड़ा, लुट गया बहुत सारा।
1: हम अभी आप सुन रहे थे केएल सहगल और साथियों की आवाजों में ये नगमा फिल्म बांगड़ा से लीजा सुनी लता मंगेशकर के गाया हुआ ये नगमा फिल्म है टैक्सी ड्राइवर। और इस नगमे के साथ ही आज का आखिरी शो प्रोग्राम खत्म करने की दीजिए इजाजत।

ये आकाशवाणी है। अब आप हबीब रहमान से खबरें सुनिए। वजारत खारजा ने कल अमरीका के शोज डे अफेयर जैसन मीफ को तलब किया और भारतीय मल्लाहों को ले जा रहे कमर्शियल जहाजों पर अमरीकी बहरी फोर्सेस के जारी हमलों से मुतालिक सख्त एहतजाज दर्ज किया। मगरबी एशिया में लड़ाई को रोकने की सफारती कोशिशें कल भी नतीजा खेज साबित नहीं हुई। ईरान ने ऐलान किया कि उसने अमरीका के साथ किसी मुजवजा मुआहदे पर अभी तक कोई कतई फैसला नहीं किया है। सियोल में एक अदालत ने जनूबी कोरिया के साबिक सदर यून सुक योल को शुमाली कोरिया में ड्रोन कार्रवाई करने और अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने के लिए 30 साल कैद की सजा सुनाई। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट के खवातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल्स में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। वजारत खारजा ने कल अमरीका के शोज डे अफेयर जैसन मीक्स को तलब किया और खलीज ओमान में भारतीय मल्लाहों को ले जा रहे कमर्शियल जहाजों पर अमरीकी बहरी फोर्सेस के जारी हमलों से मुतालिक सख्त एहतजाज दर्ज किया। इन हमलों के नतीजे में पहले ही 3 भारतीय बाशिंदों की जानें तल्फ हो चुकी हैं। अमरीकी एलची को नई दिल्ली में वजारत खारजा ने अमरीकी उमूर के एडिशनल सेक्रेटरी ने तलब किया। वजारत ने एक बयान में कहा है कि उसने एक बार फिर शहरी जहाजरानी के खिलाफ इंतहाई मोहलिक कुव्वत के इस्तेमाल पर अपनी गहरी तशवीश से उन्हें वाकिफ कराया। वजारत ने कहा है कि इस तरह की कार्रवाई नाकाबिले कबूल है और एक मुश्किल वक्त में एक हसास इलाके में बैनुल अक्वामी समंदरी सरहद में कारोबार के तहफ्फुज सलामती और इस्तेहकाम को कमजोर करती है। अमरीका के शोज डे अफेयर्स से दरखास्त की गई कि वो अपने हुक्काम को भारत की सख्त तशवीश से वाकिफ कराएं और इस बात को यकीनी बनाएं कि खित्ते में कार्रवाई में शामिल अमरीकी फोर्सेस शहरियों की जिंदगी के नुकसान की रोकथाम के लिए सभी जरूरी इकदाम करें। यह दूसरी मरतबा है कि अमरीकी एलची को वजारत में तलब किया गया है। भारत के 3 मल्लाह जिनके बारे में इब्तदाई इत्तला मिली थी कि वो लापता हैं, तस्दीक हो गई है कि वो एक हमले में अपनी जानें गंवा बैठे। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल ईरान पर इल्जाम लगाया कि वो अपनाए हुरमुज से रवाना होने वाले भारतीय जहाजों पर ड्रोन हमले कर रहा है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में जनाब ट्रंप ने इन वाकयात को कतई तौर पर नाकाबिले कबूल करार दिया। उनका यह बयान भारत की जानिब से अमरीका के शोज डे अफेयर्स जैसन मीक्स को तलब किए जाने और खलीज ओमान में भारतीय मल्लाहों को ले जा रहे कमर्शियल जहाजों पर अमरीकी बहरी फौज के जारी हमलों पर सख्त एहतजाज दर्ज कराने के बाद सामने आया है। इससे कबल दिन में ईरान ने कमर्शियल जहाजों पर अमरीकी हमलों की मजम्मत की थी और इन्हें हलाकत खेज करार दिया और वाशिंगटन पर लाकानूनियत पर मबनी कार्रवाई में मुलव्विस होने का इल्जाम लगाया था, जिससे आलमी अमन और समंदरी सरहद की सलामती को खतरा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक बयान में ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने भारतीय बाशिंदों की हलाकत पर ताजियत का इजहार किया और बैनुल अक्वामी बरादरी से जोर देकर कहा कि इसके लिए जिम्मेदारी तय की जाए। मगरबी एशिया में लड़ाई को रोकने की सफारती कोशिशें कल भी नतीजा खेज साबित नहीं हुई। ईरान ने ऐलान किया कि उसने अमरीका के साथ किसी मुजवजा मुआहदे पर अभी तक कोई कतई फैसला नहीं किया है। यह बयान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान की बराह रास्त तरदीद है, जिसमें उन्होंने इससे पहले कहा था कि कुछ ही दिन में एक बड़ी कामयाबी मिलेगी। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि किसी कतई मुआहदे के बारे में या दस्तखत किए जाने की कोई तकरीब मुनाकिद होने के बारे में बात करना कबल अज वक्त है। अलबत्ता उन्होंने इस बात की तस्दीक की मुदाकरात के ज्यादातर मतन को मुसव्वदे की शक्ल दे दी गई है। इंतहाई हसास मामलात में से एक मामला हुरमुज के मुस्तकबिल के मुतालिक है। सफारतकारी की उम्मीदों के बावजूद कशीदगी अब भी बढ़ी हुई है, क्योंकि अमरीकी फोर्सेज ने मुबैना तौर पर आबनाए हुरमुज के नजदीक ईरान के 2 ड्रोन्स को मार गिराया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल इस बात को उजागर किया कि मालियाती शमूलियत और इंटरप्रेन्योरशिप से तालीम, हिफ्जान सेहत, सफाई सुथराई, मकानात, खेलकूद, साइंस और हुक्मरानी तक ख़वातीन तमाम मुतनव्वे शोबों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट पर जारी एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि उभरते हुए शोबों में जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी में ख्वातीन की बढ़ती हुई शराकत मौके के नए दर खोल रही है और मुल्क भर में तरक्की के मंजरनामे की काया पलट कर रही है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि पिछले 12 बरस में एनडीए हुकूमत ने ख्वातीन की क्यादत वाली तरक्की को

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत के प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। यह परिसर डॉ APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी मिसाइल प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने में प्रगति की भी समीक्षा की। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्र में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में यह जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के उत्तरी क्षेत्र के किसानों और कृषि क्षेत्र को विशेष सहायता देने का आश्वासन दिया है। इस क्षेत्र में आलू और चाय का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। राज्य के कृषि विपणन, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री दिलीप घोष ने सिलीगुड़ी में आयोजित एक संगोष्ठी में कहा कि राज्य सरकार यहां के किसानों के कल्याण पर विशेष ध्यान देगी। विदेश मंत्रालय ने भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मिक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों का कड़ा विरोध किया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय दल शामिल था। पी सिंधु ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21 रन से हराया। अब सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Tanvi Gupta.

सहगल साहब की आवाज में अभी ये मधुर गीत आपने सुना। आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म हमराही से, मोहम्मद रफी साहब की मधुर आवाज में।

आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। अभी आप सुन रहे थे सुमन कल्याणपुरी की आवाज में ये मधुर सा गीत। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुनहरे, जिसमें आज आपके साथ मैं हूं मनोज। आइए श्रोताओं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म दर्द से उमा देवी की मधुर आवाज में।

अगला गीत आइए श्रोताओं सुनते हैं, फिल्म एक थी लड़की से लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, जीएम दुरानी और साथियों की मधुर आवाज में।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी ये गीत आपने सुना फिल्म महल से। आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म आग से, मुकेश साहब की आवाज में।

श्रोताओं, ये गीत अभी आपने सुना सुधा मल्होत्रा की आवाज में फिल्म भाई बहन से। किन कारणों से हम आपको शमशाद बेगम की आवाज में वो गीत नहीं सुनवा सके थे, उसके स्थान पर हमने आपको ये गीत सुनवाया। इसी के साथ गीत सुनहरे कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म आवारा से मुकेश साहब की आवाज में।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति

0: एनुअल मैक्रॉन कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत के प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। गृहमंत्री ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। यह परिसर डॉ APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने में प्रगति की भी समीक्षा की। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। इस बीच NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में यह जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मिजोरम में राज्य की एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। सत्ताधारी जोरम पीपल्स मूवमेंट ने अपने प्रवक्ता के ललतलुआ अंगकेमा को उम्मीदवार बनाया है, जबकि मुख्य विपक्षी मिजो नेशनल फ्रंट ने अधिवक्ता और लेखक जोंगथान संगीव हमार को मैदान में उतारा है। मतदान 18 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। इसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना होगी। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र बिहार, केरल, माहे, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के उप हिमालय क्षेत्रों में भी आज तेज बारिश की आशंका है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण और गोवा में आज बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। आज राजस्थान, झारखंड और मध्य प्रदेश में आंधी की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said, the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development, and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully

आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। समय हुआ है रात्रि के 2:10 और ये समय है आपके मनपसंद कार्यक्रम गीत बहार का। श्रोताओं, गीत बहार कार्यक्रम में आप सुनते हैं नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक। आइए सुनते हैं सबसे पहला ये गीत फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से, लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाज में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं के बढ़ते भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशन को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें

0: लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। यह परिसर डॉ APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने में प्रगति की भी समीक्षा की। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस बीच NTA ने 21 जून को होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। विदेश मंत्रालय ने भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि उन्होंने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की और खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने पर भारत का फिर से कड़ा विरोध जताया। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह के घातक हमले सर्वथा अनुचित हैं। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, बिहार, केरल, माहे, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के उप हिमालय क्षेत्रों में भी आज तेज बारिश की आशंका है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण और गोवा में आज बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Tanvi Gupta. Prime Minister Narendra Modi highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said, the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscapes across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra. The Yatra will begin on 3rd July and conclude on 28th of August. External Affairs Ministry has summoned Chargé d'Affaires of the United States, Jason Meeks, and lodged a strong protest regarding continuing attacks by U.S. naval

ये आकाशवाणी दिल्ली का एआईआर लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। श्रोताओं, समय हुआ है 3:10 ये कार्यक्रम ये समय होता है बहुत ही सुंदर खूबसूरत कार्यक्रम का। जी हाँ, गीत गजल। आज मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त ललित कुमार। तो आइए सुनवाते हैं आज के कार्यक्रम की पहली और खूबसूरत बेहतरीन बेहतरीन गजल। जी हाँ, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। या दोस्तों, फॉरएवर जगजीत सिंह, हिट ग्रेटेस्ट गजल। जी हाँ, जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की बेहतरीन आवाज में शानदार खूबसूरत गजल। आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम गीत गजल की पहली सुंदर खूबसूरत गजल।

यह सो वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन गजल। जी हाँ, जाग दर्द इश्क जाग, वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन गजल अभी आप सुन रहे थे। साथियों, आज मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त ललित कुमार। कार्यक्रम चल रहा है गीत गजल। अभी आप सुन रहे थे हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की बेहतरीन आवाज में शानदार रचना। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गजल की ओर। यह गजल आ रही है बहुत ही सुंदर और बेहद खूबसूरत गजल, और गजल हमने काटी है तेरी यादों में रातें अक्सर। जी हाँ दोस्तों, हमने काटी है तेरी यादों में रातें अक्सर। हरिहरन साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाज में सुंदर बेहतरीन रचना। गीत जानिसार अख्तर के हैं। और जी हाँ दोस्तों, और रिकॉर्डिंग की बात करें तो वो है टी सीरीज रिकॉर्ड्स और टिप्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। तो आइए सुनते हैं एक और शानदार बेहतरीन गजल हरिहरन साहब की आवाज में।

यहाँ साथियों बहुत ही सुंदर बेहतरीन और खूबसूरत गजल, क्या कहें इस गजल के बारे में, वाकई बहुत ही शानदार बेहतरीन। फिर सावन की रुत पवन चली, तुम याद आए, फिर तुम याद आए, वाकई बहुत ही लाजवाब अनमोल खूबसूरत गजल अभी आप सुन रहे थे। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गजल की ओर, चित्रा सिंह की बेहतरीन आवाज में शानदार लाजवाब अनमोल गजल, दिल ही तो है। जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही प्यारी बेहद खूबसूरत गजल अभी आप सुनेंगे। और बताते हैं कि ये जो गजल है वाकई बहुत ही शानदार है, बेहतरीन है। गुलजार्स और मिर्जा गालिब के द्वारा ये सुंदर बेहतरीन रचना है। चित्रा सिंह की आवाज है और लिरिक्स मिराज गालिब के हैं। तो आइए सुनते हैं शानदार गजल।

वाह क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही सुंदर बेहतरीन खूबसूरत गजल। गजलों की एक अलग छाप होती है, पहचान होती है। वाकई बहुत ही शानदार बेहतरीन गजलों का समावेश बन रहा है जी दोस्तों। वाकई बहुत ही शानदार, लाजवाब, अनमोल, बेहद खूबसूरत गजलें। बढ़ते हैं एक और शानदार बेहतरीन गजल की ओर। यह गजल आ रही है बहुत ही सुंदर और बेहद खूबसूरत गजल। जी हाँ दोस्तों, ये गजल अपने आप में बेहद अनमोल है। जिंदगी चंद सवालों के सिवा जी हाँ और कुछ नहीं। मैनल जैन की आवाज में सुंदर और बेहद खूबसूरत गजल आ रही है और संगीत से सजाया है जयदेव गोसाई और कुणाल परमार ने, और गीत मिलिंद और

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर खूबसूरत गजल अभी आप सुन रहे थे। बढ़ते हैं एक और बेहतरीन गजल की ओर। जी दोस्तों, आती जाती हर मोहब्बत, एक शानदार बेहतरीन नगमा।

चलो सभा के आते जाते मोहब्बत है, चलो फिर सही कोई बात नहीं। वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन गजल अभी आप सुन रहे थे। आइए एक और खूबसूरत गजल सुनवाते हैं, बहुत ही शानदार गजल।

0: साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।
1: लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम नाद ब्रह्म। नाद ब्रह्म में नाद ब्रह्म के अंतर्गत आज आप सुनेंगे एस बाला चंदर के मोहन नारायणी वीणा वादन में मोहन नारायणी राग पर आधारित रचना।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 23वीं तिथि, तदनुसार 13 जून सन 2026 सुबह के 4:53 और 4 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से थोड़ी देर में ठीक 5 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 5:05 पर आप अंग्रेजी में समाचार सुन सकते हैं। 5:10 पर समय होगा कार्यक्रम आओ योग करें का। आओ योग करें कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे योग तितली अभ्यास क्रिया और दीर्घ श्वास प्रेक्षा। 5:20 पर आप सुन सकते हैं देशभक्ति गीत और 5:30 पर समय होगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी का। 6 बजे आप पुनः हिंदी में समाचार सुनेंगे और 6:05 पर अंग्रेजी में। पर समय होगा भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का और 6:40 पर आप कार्यक्रम चिंतन सुन सकते हैं। 6:45 पर समय होगा रामचरितमानस बालकांड के भाग 85 का और 6:55 पर आप संस्कृत समाचार सुन सकते हैं। 7 बजे समय होगा हिंदी समाचारों का और 7:05 पर अंग्रेजी समाचारों का। 7:10 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम संगीतिका और 7:30 पर समय होगा कार्यक्रम गीतों भरी का। 8 बजे आप सुनेंगे हिंदी समाचार हिंदी समाचारों का कार्यक्रम समाचार प्रभात और 8:15 पर आप सुन सकते हैं अंग्रेजी कार्यक्रम का गुड मॉर्निंग न्यूज।
1: गोविंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान।

चेत आवे, चेतावन का सदका सर्ब सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिबा, तहां तहां रच्छे आरे आयता। देग तेग फतेह, विरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय, खालसे जी के बोल।

0: के जिया बजन कोई पहला पानी जीव है जित हरिया सब कोई सुत क्यों कर रखी है सुत पवे सोए नानक सुत के बना उतरे ज्ञान उतारे तोय महला पहला
1: मन का सूतक लोभ है जेवा सूत कूड़ अखी सूत वेखना परतरे पर तन रूप कनी सूत कन पहला इतबारी खाए नानक हंसै दमी बदे जम पर जाए महला पहला सबो सूतक भरम है

हर गल सुनावे हर नाम की सो लगे गुर सिख मन मिठा हर घर गए गुर सिख पहनाइए जिना मेरा सतगुर तुठा जन नानक हर

0: की सारी है। जो आया सो चल से सब कोई आई वारी है। जिसके जी प्राण है क्यों साहिब मनोविसारी है। अपना हाथी अपना आपे ही काज सवारी है। काज सवारी है
1: थोड़ी आपे ही करना कियो कल आपे ही सारी है। देखे पिता अपना धर्म चिप की सारी है। जो है सो चल से सब कोई आई वारी है। जिसके जी प्राण है क्यों साहिब मनोविसारी है। अपना अपना आपे ही काज।